FM 103.7 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। आज सोमवार है, शक संवत 1948, आश्विन मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 12 अक्टूबर 2026। इस समय सुबह के 8:55 होने वाले हैं। हमारी आज की सभा अब प्रारंभ होती है।

से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्रोताओं, सुबह 9:20 पर सुनिए दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस। उसके बाद वंदना कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा 9:20 पर। एल्बम सॉन्ग, जी हाँ, गैर फिल्मी गीतों का यह कार्यक्रम होगा सुबह 9:40 पर, और सुबह 10 बजे आप सुन सकेंगे गाने पुराने ज़माने के, और उसके तुरंत बाद 10:10 10:30 पर सुनिए गाने नए तराने नए।

शाम 5 बजे युवाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा और शाम 5:30 पर कार्यक्रम महिला जगत में सुनिए भेंट वार्ता, वायरल बुखार कारण लक्षण और बचाव, जिसमें डॉक्टर अशोक झारवाल से बात करेंगे मोहम्मद शरीफ छिपा। 6:05 का समय रहेगा फिल्म संगीत का और कार्यक्रम माटी के स्वर होगा 6:20 पर। शाम 7 सुनिए कार्यक्रम खेती बाड़ी और शाम 7:30 का समय रहेगा कार्यक्रम उमंग का। दिल से सोशल मीडिया पर आधारित फिल्मी गीत आप सुन सकेंगे रात 8:00। रात 8:30 का समय रहेगा विविधा के अंतर्गत झलकी का हमने टीवी खरीदा। रात 9:00 सुनिए दर्द भरे फिल्मी गीत। रात 9:25 पर एक विशेष कार्यक्रम में सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लोक सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में कार्यक्रम श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा। जी हां, समय का ध्यान रखें, रात 9:25। FM एंड 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। सुबह के 9:00 वाले हैं। अब हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के युवाओं में दुनिया की उभरती चुनौतियों का नए और बेहतर समाधान देने की क्षमता। जोधपुर में बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास तरंग शक्ति का आज समापन। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के पहले चरण में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के लिए नामांकन के दो दिन शेष। और कोटा में राष्ट्रीय दशहरा मेले का भव्य शुभारंभ।

0: समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं में दुनिया की उभरती चुनौतियों का नए और बेहतर समाधान देने की क्षमता है। चेन्नई में जय गोपाल गरुड़िया हिंदू विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया आज नई चुनौतियों के समाधान खोज रही है और उन्हें पूरा विश्वास है कि भारत के युवा इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दौर युवाओं का है, उनके नए विचार और कड़ी मेहनत भारत के साथ साथ दुनिया का भविष्य भी तय करेंगे। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि ज्ञान हासिल करने के साथ उसे व्यवहार में लाना भी जरूरी है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से बड़े सपने देखने, नए तरीके से सोचने और निडर होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया।
1: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखें, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
0: केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्ष 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प में युवाओं को नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाने का आह्वान किया है। श्री यादव कल अलवर के राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय में सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट का लोकार्पण करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि युवाओं ने हमेशा राष्ट्र निर्माण में विशेष भूमिका निभाई है और युवाओं की भागीदारी के बिना विकसित भारत का संकल्प पूरा होना असंभव है। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय का जीवन अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ समाज से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। अच्छी शिक्षा से विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य मजबूत होता है, वहीं खेलकूद शारीरिक विकास को बल देते हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि दिन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में यातायात की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। पुलिस ने बताया कि मौजूदा हालात को देखते हुए दिल्ली के कुछ इलाकों और रास्तों पर यातायात को दूसरे रास्तों पर परिवर्तित किया जा सकता है। प्रभावित होने वाले रास्तों में मिंटो रोड, मंडी हाउस का गोल चक्कर, गुरु नानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर और अन्य शामिल है। यातायात पुलिस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलें। इस बीच सुरक्षा कारणों से नई दिल्ली में 6 मेट्रो स्टेशनों पर आवाजाही आज शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। जोधपुर में चल रहे बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास तरंग शक्ति का आज समापन होगा। 26 सितंबर से शुरू हुए इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाओं ने भाग लिया। कई अन्य देशों की वायुसेनाओं ने ऑब्जर्वर के रूप में सहभागिता की है। युद्धाभ्यास के दौरान विभिन्न देशों की वायुसेनाओं ने संयुक्त हवाई अभियानों का अभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास में F-35 लाइटनिंग 2, राफेल और F-16 सहित कई आधुनिक लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। युद्धाभ्यास का उद्देश्य मित्र देशों की वायुसेनाओं के बीच परिचालन समन्वय बढ़ाना, संयुक्त सैन्य अभियानों की क्षमता विकसित करना और आधुनिक हवाई युद्ध की चुनौतियों से निपटने के लिए अनुभव साझा करना है। तरंग शक्ति के माध्यम से भारतीय वायुसेना को मित्र देशों की वायुसेनाओं के साथ प्रशिक्षण और सामरिक सहयोग मजबूत करने का अवसर मिला है। ये अभ्यास भारत के बढ़ते रक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय सैन्य साझेदारी की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के पहले चरण के तहत जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के लिए नामांकन के अब 2 दिन शेष हैं। प्रत्याशी आज और कल सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने नामांकन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। नामांकनों की जांच 14 अक्टूबर को जबकि नाम वापसी की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर निर्धारित की गई है। इस दिन दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 22 अक्टूबर को सुबह दोपहर 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। दूसरे चरण में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए 28 अक्टूबर को मतदान होगा। तीसरे चरण में 3 नवंबर और चौथे चरण में 14 नवंबर को मतदान कराया जाएगा। सभी चरणों में मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित है। वहीं पंच और सरपंच पदों के लिए पहले चरण में 24 अक्टूबर, दूसरे चरण में 30 अक्टूबर, तीसरे चरण में 5 नवंबर और चौथे चरण में 16 नवंबर को मतदान होगा। इन पदों के लिए मतगणना मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर की जाएगी। भरतपुर जिले के वैर क्षेत्र में पूर्व विधायक अतर सिंह बढ़ाना का कल निधन हो गया। वे वैर के भूंडा गांव में स्थित उनके क्रैशर पर थे, उसी दौरान कल देर शाम कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। घटना में पूर्व विधायक और उनके अंगरक्षक गगन शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को वैर के उप जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद अतर सिंह बढ़ाना को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया। जयपुर में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं अंगरक्षक गगन शर्मा को भरतपुर रेफर किया गया है। कोटा में राष्ट्रीय दशहरा मेले का कल भव्य शुभारंभ हुआ। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने ध्वज फहराकर मेले की शुरुआत की। इस दौरान रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़े गए और आतिशबाजी की गई। इस अवसर पर मेले की आधिकारिक वेबसाइट का लोकार्पण भी किया गया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री दिलावर ने कहा कि कोटा का दशहरा मेला लोक आस्था और एकता का प्रतीक है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी के समन्वित प्रयासों से इस मेले को और अधिक आकर्षक बनाया जाएगा। यहां विरासत और विकास का अद्भुत समन्वय दिखाई देगा। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन आज मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। राज्य के विभिन्न माता मंदिरों में विशेष धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। जैसलमेर के तनोट माता मंदिर में दर्शनों के लिए राज्य के अलावा अन्य स्थानों से भी लोग पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि दर्शनार्थियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं।
2: तनोट माता मंदिर का संचालन सीमा प्रहरियों के हाथों में है। नवरात्र पर्व पर देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सीमा सुरक्षा बल द्वारा निःशुल्क भोजनशाला चलाई जा रही है। दर्शनार्थियों के लिए पेयजल व चिकित्सा के भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। मेले के दौरान प्रतिदिन 3 आरतियां की जा रही है। भोजनशाला में सीमा प्रहरी द्वारा अपने हाथों से भक्तगणों को भोजन करवाया जा रहा है। वहीं देश के कोने कोने से आने वाले भक्तों के लिए सीमा सुरक्षा बल द्वारा धर्मशाला का भी संचालन किया जा रहा है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
0: वहीं हनुमानगढ़ के भद्रकाली मंदिर में आस्था और भक्ति का अनूठा माहौल देखने को मिल रहा है। सुबह बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। उधर पल्लू कस्बे के ब्रह्माणी मंदिर में भी बड़ी संख्या में भक्तगण पहुंच रहे हैं। बारा जिले के प्रमुख माता मंदिरों कृष्णाई मंदिर, गुगोर माता मंदिर, नगरकोट माता मंदिर सहित अन्य मंदिरों में सुबह विशेष पूजा अर्चना के साथ आरती की गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के युवाओं में दुनिया की उभरती चुनौतियों का नए और बेहतर समाधान देने की क्षमता। जोधपुर में बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास तरंग शक्ति का आज समापन। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के पहले चरण में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के लिए नामांकन के 2 दिन शेष। और कोटा में राष्ट्रीय दशहरा मेले का भव्य शुभारंभ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। सुबह के 9:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस।

अगस्त्य मुनि के एक परम ज्ञानी शिष्य थे सुतीक्ष्ण। उन्हें ये विश्वास नहीं होता था कि उन्हें भक्ति, वैराग्य अथवा ज्ञान कुछ भी प्राप्त है। चित्रकूट से पंचवटी जाते हुए श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण के दर्शन जब मुनि सुतीक्ष्ण को प्राप्त हुए तो अपने आश्रम में ले आकर उन्होंने अनेक प्रकार से अपने आराध्य की पूजा अर्चना की। फिर भी उन्हें संतोष नहीं होता था कि वे किस प्रकार प्रभु की विनती करें। नील कमल के समान श्रीराम का शरीर है, जिस पर मुनियों जैसा वेश और सिर पर जटाओं का मुकुट सुशोभित है। सुतीक्ष्ण की कामना है कि मोहरूपी वन को भस्म करने वाली आग तथा संत रूपी कमलों के वन को प्रफुल्लित करने वाले सूर्य के समान प्रभु सदा मुनिगण की रक्षा करें। संशय रूपी सूर्य को ग्रसने के लिए प्रभु गरुड़ हैं। अत्यंत कठोर तर्क से उपजने वाले विषाद का वो परिष्कार करते हैं। यद्यपि उनका निर्मल, व्यापक तथा अविनाशी रूप भक्तों के हृदय में सदा निवास करता है, फिर भी मुनि सुतीक्ष्ण प्रभु के वनवासी रूप को ही अपने हृदय में बसाना चाहते हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस एफएम एंड 107.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। सुबह के 9:20 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का ये पहला भजन नरेंद्र चंचल की आवाज़ में।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील विल हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

0: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
1: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
2: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
3: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: सीपी ग्राम्स सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम,
5: ये है हर भारतीय नागरिक की शिकायत पर त्वरित कार्यवाही की गारंटी का पोर्टल। सीपी ग्राम्स एक ऐसी विश्वसनीय प्रणाली जो प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाती है
4: और सुशासन के हर स्तर पर अधिकारियों के जवाबदेही सुनिश्चित करती है। सीपी ग्राम्स, संवेदनशील, असरदार, जवाबदेह। आज ही लॉगिन करें सीपी ग्राम्स।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वंदना कार्यक्रम FM एंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। सुबह के 9:40 हुए हैं, आइए सुनते हैं एल्बम सॉन्ग।

श्रोताओं, ये सॉन्ग अभी आपने सुना अल्ताफ राजा की आवाज़ में, और आइए आप सुनते हैं एल्बम सॉन्ग का ये अगला गीत सोनू निगम का गाया हुआ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एल्बम सॉन्ग FM एंड 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। सुबह के 10 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत, जिसमें अभी आप सुनेंगे गाने पुराने ज़माने के। तो कार्यक्रम का ये पहला गीत हमने लिया है फिल्म सपने से, और इसमें आवाज़ है हेमा सरदेसाई की।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम,
1: जी
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: इन्वेस्टिंग का पार्ट।

गाने पुराने ज़माने के श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम FM एंड 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागवार का चिरमी चैनल है। सुबह के 10:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने नए तराने नए। कार्यक्रम का ये पहला गीत फिल्म शहरशाह से, जिसमें आवाज़ है जुबिन नौटियाल और अश्विन कौर की।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: फिल्म बैंड बाजा बारात और ये गीत आप सुन रहे हैं सलीम मर्चेंट और सुनिधि चौहान का गाया हुआ।

0: नेहा, तू इतनी रिलैक्स लग रही है आजकल, क्या सीक्रेट है यार?
1: सीक्रेट नहीं, स्मार्ट मूव है। मैंने लिया है LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान।
0: ओ रियली, क्या स्पेशल है इसमें?
1: देख, छोटी बचत से बड़ी सेविंग होती है और इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। इसमें गारंटीड एडिशंस मिलते हैं, एडिशनल सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलता है 3 अट्रैक्टिव ऑप्शंस के साथ, और तो और ऑटो कवर भी है। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये प्लान केवल महिलाओं के लिए है, एक्सक्लूसिव।
0: वाह, मुझे भी लेना है यार LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान।
1: तो अभी विजिट करें LIC.in या अपनी नजदीकी LIC शाखा में संपर्क करें। LIC, हर पल आपके साथ।

0: खुदा किसी को बनाता है ना तो उसमें कुछ खास बात होती है, लेकिन खुदा ने अदा को बनाया इसीलिए वो खास बात खुदा में है।
1: ये हैं जॉनित गांधी और अमित मिश्रा फिल्म डिशुम में।

0: दम लगा के है ईशा। अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत सोनू निगम और साधना सरगम का गाया हुआ। इसी के साथ ही हमारा गाने नए तराने नए कार्यक्रम समाप्त होता है। एफएम एंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। दिन के 11 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
1: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग।

हम सुन रहे थे ये नगमा चंदन दास की आवाज़ में, और इसे चंदन दास ने ही संगीतबद्ध किया, निदा फाजली के बोल।

0: हम सुन रहे थे सजदा एल्बम से यह नगमा, जिसे गाया और संगीतबद्ध किया जगजीत सिंह ने और बोल लिखे निदा फाजली ने। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
2: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
1: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
2: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
1: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
3: हम सब ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
4: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
3: ICU में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
4: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
3: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: हम सुन रहे थे नगमे को जिसे लिखा निदा फाजली ने और गाया जगजीत सिंह ने। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
2: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
1: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

हम सुन रहे थे महबूब एल्बम से तलत अजीज की आवाज में निदा फाजली के बोलों को, जिसे संगीतबद्ध किया है तलत अजीज ने ही। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में अगला नगमा, जो कि है इजहार एल्बम से। सुरेश वाडकर और साधना सरगम ने इसे गाया है, निदा फाजली ने इसे बोल दिए हैं और कल्याण जी आनंद जी ने संगीत।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

हम सुन रहे थे कतील शिफाई और मुमताज राशिद के द्वारा लिखे गए इस नगमे को, जिसे गाया और संगीतबद्ध किया है पंकज उदास ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में अगला नगमा, जिसे पंकज उदास की आवाज में हम सुनने वाले हैं।

0: वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग।
3: तुझसे दूर है जा

0: हम सुन रहे थे ये गीत प्यार के गीत एल्बम से शुभा मुद्गल की आवाज में, जिसके गीतकार हैं अनिल पांडे और संगीतकार हैं संदेश शांडिल्य। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
2: देना साथ मेरा ओ हम नवा,
1: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
1: सुबह 8:15 और दिन में 2 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम है रंग तरंग।

0: हम सुन रहे थे शीशा एल्बम से यह नगमा जिसे मधुश्री ने गाया, गीतकार माया गोविंद और सीन ब्रदर्स ने इसे संगीतबद्ध किया।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ।

0: समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती ही पार्वती ही पार्वती।
4: और कार्यक्रम रंग तरंग समाप्त होता है यहीं पर। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
5: रंग तरंग
6: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक की गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे बड़े वायदे किए हैं।
7: Our Constitution has made expensive promises.
8: हमारे संविधान ने हर नागरिक को सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये उन लोगों की आवाज बनता है जो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते। आयोग शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना भी खुद कार्रवाई कर सकता है।
6: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि मानवाधिकारों का सीधा संबंध मानवीय गरिमा से है और इनमें स्वास्थ्य सेवा, भोजन, आवास, आजीविका और स्वच्छ पर्यावरण तक पहुंच शामिल है। उन्होंने बताया कि आयोग ने पिछले 33 वर्ष में 24 लाख से अधिक मामले दर्ज किए और 23 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं।
9: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पिटीशन, किसी भी, कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप जो उनकी समस्या है उसका हम अपनी तरफ से उसकी सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
6: इंडिया ब्लॉक की मुलाकात की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी और उन्होंने कल रात ही इसका जवाब दे दिया था। उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी। दिल्ली मेट्रो ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से नई दिल्ली में 6 मेट्रो स्टेशनों पर आवाजाही आज शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। ये स्टेशन है पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय और 12 खंभा रोड। इन स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार मिंटो रोड, मंडी हाउस का गोल चक्कर, गुरु नानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर और अन्य मार्ग प्रभावित रहेंगे। पुलिस ने कहा है कि लोग प्रभावित इलाकों से अनावश्यक यात्रा करने से बचें। दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुर्गा ई ऑटो योजना शुरू करने जा रही है। दुर्गा यानी ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर। योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। घरेलू कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडार पिछले महीने की 29 तारीख से 1,80,00,000 टन से ऊपर स्थिर बना हुआ है। कोयला मंत्रालय ने बताया कि 10 अक्टूबर को कोयले का भंडार 1,82,00,000 टन से अधिक था। मंत्रालय ने कहा कि स्थिरता बिजली संयंत्रों की दैनिक खपत के अनुरूप कोयले की आपूर्ति को दर्शाती है। जिन संयंत्रों में कोयले का भंडार कम है उनकी आपूर्ति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित तीसरी पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट मांगरोल को आज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये कार्यक्रम मुंबई स्थित नौसैनिक शिपयार्ड में आयोजित किया गया। ये एक सुरंग रोधी जहाज था। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ निर्मित मांगरोल युद्धपोत डिजाइन, निर्माण और उन्नत हथियारों तथा सेंसरों के एकीकरण में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवरात्र के दूसरे दिन देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर एक संदेश में उन्होंने कहा कि नवरात्र का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा को समर्पित है। माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या, त्याग और संकल्प की प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री ने कामना की कि माँ ब्रह्मचारिणी सभी को साहस और आत्मसंयम का आशीर्वाद दें। घरेलू शेयर बाजार आज सुबह आधे प्रतिशत से अधिक की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 561 अंक गिरकर 71,911 पर, जबकि निफ्टी 149 अंक गिरकर 22,372 पर पहुंच गया। इंदौर में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का चौथा मैच 14 अक्टूबर को हैदराबाद में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में।

नजर से फूल चुनती है नजर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता।

0: हम सुन रहे थे गीत आहिस्ता आहिस्ता फिल्म से, जिसे गाया आशा भोसले और अनवर ने, निदा फाजली के बोल और संगीत खयाम का।
1: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
2: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
3: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
4: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
6: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
5: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
6: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
5: पर रेरा तो शहरों में।
6: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
5: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

0: हम सुन रहे थे देव फिल्म का यह गीत विजेता पंडित की आवाज में, जिसे लिखा निदा फाजली ने, आदेश श्रीवास्तव ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
2: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
1: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल।

हम सुन रहे थे ये गीत नाखुदा फिल्म से। लता मंगेशकर, नितिन मुकेश की आवाज़ों में, गीतकार निदा फाजली और संगीतकार खयाम। आइए सुनते हैं अगला गीत सपने टू फिल्म से। संजीवनी भेलांडे की आवाज़ में अनुज कपूर ने इसे संगीतबद्ध किया और बोल हैं निदा फाजली के।

0: की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में अगला गीत, हरजाई फिल्म से, जिसे लिखा है निदा फाजली ने, संगीतबद्ध किया है राहुल देव वर्मन ने और गाया है लता मंगेशकर ने।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है

0: हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

भाई हमें यूं देखना, ऐसा ना हो बदनाम हो जाए। ये मुमकिन है, इसी का कल मोहब्बत।

0: हम सुन रहे थे ये गीत चाहत फिल्म से, कुमार सानू की आवाज में अनु मलिक के संगीत के साथ, जिसे बोल दिए निदा फाजली ने। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी।
1: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
1: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
1: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: कुछ लिखा,
1: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। आइए सुनते हैं एक और गीत निदा फाजली की कलम से निकला हुआ, जिसे संगीतबद्ध किया है आदेश श्रीवास्तव ने, जगजीत सिंह, अलका याग्निक की आवाजों में, और फिल्म है तरकीब।

0: प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।
1: शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: यह आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, एफएम एंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन का एक बजने वाला है। अब हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किए जाएंगे।

रायपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर आज न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि मानवाधिकार आयोगों को शिकायतों की जांच करनी चाहिए और व्यवस्था की कमियों की पहचान करके ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन मुद्दों पर आमतौर पर ध्यान नहीं दिया जाता उन पर संस्थागत स्तर पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने भरोसा जताया कि आयोग मानवाधिकारों की सुरक्षा को मजबूत करना जारी रखेगा और न्याय, गरिमा तथा जवाबदेही को बढ़ावा देगा। उन्होंने बताया कि आयोग ने पिछले 33 वर्षों में 24 लाख से अधिक मामले दर्ज किए और 23 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा आज जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश भर की कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स से संवाद करेंगे। इस दौरान महिला सुरक्षा और महिला पुलिस पेट्रोलिंग व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने पर चर्चा होगी। संवाद के दौरान कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स की कार्यप्रणाली, सक्रियता और कार्यों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जरूरत पड़ने पर त्वरित पुलिस सहायता उपलब्ध आने पर जोर दिया जाएगा। एडीजी लता मनोज कुमार ने बताया कि संवाद का उद्देश्य प्रदेश में महिला सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के साथ ही पुलिस की प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करना है। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन आज मां दुर्गा के स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। राज्य के विभिन्न माता मंदिरों में विशेष धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया पर एक संदेश में कहा कि नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा को समर्पित है। मां ब्रह्मचारिणी तपस्या, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने मां से सभी को साहस और आत्मसंयम का आशीर्वाद देने की कामना की। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में राज्य स्तरीय अमृता हाट मेला आयोजित किया जा रहा है। कल से शुरू हुए और 20 अक्टूबर तक चलने वाले इस मेले में विभिन्न जिलों के लगभग 170 महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री की जा रही है। मेले में हैंडीक्राफ्ट, कशीदाकारी, लाख की चूड़ियां, पेपर मेशी आइटम, सलवार सूट, अचार, मुरब्बा और मसाले सहित अन्य हस्त निर्मित उत्पाद उपलब्ध है। महिला और बाल विकास विभाग की शासन सचिव पूनम ने बताया कि राज्य के विभिन्न महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री के लिए बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हर साल ये मेला लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि महिला अधिकारिता विभाग का लक्ष्य हस्तशिल्प से जुड़ी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उनका सशक्तिकरण करना है। प्रदेश में सक्रिय हुए नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई स्थानों पर मौसम में बदलाव आया है। पिछले 24 घंटों में बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर सहित कई इलाकों में बारिश हुई। बीकानेर जिले के लूणकरणसर में ओले भी गिरे। बारिश और ठंडी हवा के चलते तापमान में गिरावट आई है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य में एक और मौसम तंत्र सक्रिय होने के आसार हैं। इसके प्रभाव से अगले कुछ दिनों तक बीकानेर संभाग के साथ ही शेखावटी क्षेत्र में मौसम प्रभावित रह सकता है। कल बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर और चूरू में बादल छाने तथा कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। विभाग ने 13 से 15 अक्टूबर तक संबंधित क्षेत्रों के लिए आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 139वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम के माध्यम से

0: विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 23 अक्टूबर तक स्वीकार किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM 103.7 MHz पर। दिन के 1:05 हुआ है। आइए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
2: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
3: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
4: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
5: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

हम सुन रहे थे ये गीत सरफरोश फिल्म से, जगजीत सिंह की आवाज में निदा फाजली के बोल और संगीतबद्ध किया जतिन ललित ने। आइए बात करते हैं कार्यक्रम सुरीला सफर में। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हंसकर हर गम भुलाती है माँ, मैं रोता हूँ तो सीने से लगाती है माँ, बहुत दर्द दिया है जमाने ने मुझको, सब कुछ झेल कर सिखाती है माँ। दोस्तों, किसी भी मुश्किल का किसी को हल नहीं मिलता, शायद घर से कोई अब माँ के पैर छू कर नहीं निकलता। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि माँ एक नाम या रिश्ता नहीं, पूरा संसार इस एक नाम में समाया है, जब पास होती है तो लगता है हमें किसी बात की चिंता नहीं, मेरे साथ हमेशा रहेंगी, हम उनसे रूठते हैं मनाते हैं, जी भरकर बात नहीं कर पाते, लेकिन उनके जाने के बाद खुद को असहाय महसूस करते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे हमें बहुत मजबूत बनाकर चली जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आइए सुनते हैं इस माँ के नाम एक गीत।

दादी माँ फिल्म के इस गीत को हम सुन रहे थे मन्ना डे और महेंद्र कपूर की आवाजों में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और संगीतबद्ध किया रोशन ने। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है सुरीला सफर। हमारे श्रोता बहुत सुंदर कमेंट करते हैं और वह लिखते हैं कि माँ वो है जिसके पास लौटकर आज भी मन बच्चा बन जाना चाहता है, जिसकी गोद में दुनिया की सारी थकान भूल जाते हैं और जिसकी आवाज सुनकर तो लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। सच तो यह है कि माँ घर में हो तो घर सिर्फ घर नहीं सुकून बन जाता है, और आप, मैं, हम सभी सदा ही उसी सुकून की तलाश में रहते हैं, है ना? तो चलिए बताइएगा कि इस गीत के गायक कलाकार कौन है, और सुनिए ये गीत सुकून की तलाश में।

0: सही कहा आपने, बहुत सुंदर चित्रण है इस गीत में गर्मी सर्दी बरसात दिल की चाहतों का। और आप सभी ने सही पहचाना, भूपेंद्र गायक कलाकार भूपेंद्र हैं। गुलजार की कलम से निकला यह गीत है, मदन मोहन का संगीत है और फिल्म है मौसम। हम बात कर रहे हैं माँ की, कार्यक्रम सुरीला सफर में। लेकिन बात करते करते सुन लेते हैं ये संदेश।
1: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
2: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
1: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सुरीला सफर। आपने संदेश भेजे हैं बड़े सुंदर से। एक ने लिखा है कि हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि माँ नाम से ही खुशी का हर पल सा है। आज मैं खुद माँ हूँ, लेकिन अगर कोई डांट दे या कोई कुछ कह दे या दुख का पल हो तो बस माँ की याद आती है और खूब रो लेती हूँ, लेकिन उसे बताती नहीं कि मैं उसे याद करके रो रही थी। ये तो जिसकी माँ है उसके हृदय की बात है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि सर्वोच्च इबारत माँ शब्द, सारे शब्द इस शब्द के आगे फेल हैं, सब कुछ इसी शब्द में समा गया है। बिल्कुल सही। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि माँ अपने आप में विश्व सी होती है, जिसमें हमारे हर प्रश्न का हल होता है। जिनके माँ होती है वो भाग्यशाली होते हैं, लेकिन जिनके माँ नहीं होती वो जानते हैं। सही बात है। हमने हमारी इबारत में भी लिखा है कि दिल फुर ढूंढता है फुर्सत उसकी ही गोद में, सुकून का बस एक ही ठिकाना रहा है, वो इतनी दूर क्यों जाती है जीवन से, रब से शिकायत का यही पिटारा रहा है। चलिए सुनिए अगला गीत और बताइएगा इस गीत के संगीतकार कौन है।

हम सुन रहे थे ये गीत जिसे लिया हमने अदालत फिल्म से। बड़ी खूबसूरत सी गीत को हमने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, और आप सबने सही पहचाना संगीतकार मदन मोहन। हम बात कर रहे हैं माँ की, और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इंसान कितना भी अरबपति खरबपति अमीर हो जाए, दुनिया की हर चीज खरीद सकता है, लेकिन इसे संसार में वो एक चीज नहीं खरीद सकता, वो है माँ और पिता। इंसान कितनी भी बड़ी उम्र का क्यों ना हो जाए, परंतु अपनी माँ के लिए वो हमेशा बच्चा ही रहता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि माँ वह पहला नाम है जो बचपन से लेकर जीवन की हर दहलीज तक उनका प्यार हमें संभल देता है। माँ जिसकी गोद में हर उम्र में सुकून मिलता है, और नवरात्र में जब माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करते हैं तो एहसास होता है कि माँ केवल ममता की मूर्त ही नहीं बल्कि साहस, शक्ति और आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। ये बात भी सही है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जगत जननी माँ जगदम्बा का आगमन हमारे घर हमारे दिलों में हुआ है, और पूरी भक्ति के साथ सकारात्मक ऊर्जा के साथ हवन की सुगंध पूरी फिजाओं में तैर रही है। हमारे एक और श्रोता बताते हैं कि हर माँ सोते हुए अपने नन्हे शिशु पर लगातार नजर रखती है और उसे जान से बढ़कर प्यार करती है। आगे चलकर इसी तरह से त्रैलोक की जननी आदिशक्ति माता रानी से भी अनुभूति मिलती है। अज्ञान की नींद में समाए हम भक्तों को जगाती हैं और उनके सपनों को संजोए रखती हैं। तो चलिए हम सुनते हैं अगला गीत। इस गीत को सुनते हुए आपको बताना है ये गीत किस फिल्म से है, और ये जरूर बताइएगा कि ये फिल्म आपने कब कहाँ कैसे देखी थी। बताइएगा जरूर, सुनिए ये गीत।

हम सुन रहे थे ये गीत विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाजों में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत को संगीतबद्ध किया। हमने आप सबसे पूछा कि ये किस फिल्म का गीत है, तो आप सबने बताया कि ये त्रिमूर्ति फिल्म का गीत है। किसी ने बताया कि उन्होंने करतारपुर में देखी, किसी ने बताया भोपाल में देखी, किसी ने कहा अभी तक नहीं देखी। सबकी अलग अलग बातें थी, तो सबकी अलग अलग बातों को स्वीकार करते हैं। और एक बात हमारे एक श्रोता ने लिखी जो बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने बड़े अच्छे से लिखा कि शहर आकर पढ़ने वाले भूल गए कि किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। बात तो बड़ी छूने वाली है और सच भी है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि बचपन में निबंध में लिखते थे कि चलो चलो माँ सपनों के गांव में, कांटों से दूर कहीं फूलों के गांव में। तब समझ नहीं आया, लेकिन अब समझ आया कि माँ जहाँ होती है वहाँ सपनों का गांव बसता है, वहाँ सिर्फ प्यार दुलार होता है और खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। बिल्कुल सही बात है। अब एक प्रश्न आप सबसे आ रहा है मन में जो पूछा जाए, प्रश्न ये है कि आपने अपनी माँ की किस ख्वाहिश को पूरा किया है, या कोई ऐसी ख्वाहिश है जो आप पूरी नहीं कर पाए, जरूर से बताइएगा। माँ इस धरती का आधार होती है, अपने अपनी माँ को बहुत सारा प्यार दीजिएगा और बताइए ऐसी कौन सी ख्वाहिश थी माँ की जो पूरी नहीं की, या ऐसी कौन सी ख्वाहिश थी जो पूरी करके आप प्रसन्न हो गए।

हम सुन रहे थे ये गीत एबीसीडी टू फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज में। मयूर पुरी ने इसे लिखा और संगीतबद्ध किया सचिन जिगर ने। हमने आपसे पूछा था कि ऐसी कोई ख्वाहिश जो आप अपनी माँ की पूरी कर पाए या नहीं कर पाए, परंतु उसके पहले हम ये संदेश पढ़ते हैं कि हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि कहते हैं भगवान सभी का ख्याल नहीं रख सकते, इसीलिए उन्होंने इस दुनिया में माँ का निर्माण किया। बिल्कुल सही बात है। हमारे एक और श्रोता बताते हैं कि उनकी मां की अंतिम ख्वाहिश थी कि उनका सत्कार जगन्नाथपुरी धाम में हो और उन्होंने यह कार्य किया, उसके लिए आपका आभार। अपनी मां की हर बात को पूरा करना हम बच्चों का कर्तव्य होता है ना। तो हमारे एक और श्रोता बड़ी अच्छी बात लिखते, कहते हैं हमें लगता है कि हमने अपनी माँ की हर ख्वाहिश पूरी की है, क्योंकि हमारी माँ जब भी हम कुछ करते थे तो कहती थी कि बस यही तो मैं चाहती थी। सच बात है, माएं ऐसी ही होती हैं, हम जो कह दें उन्हें लगता है कि बस वही सही है, और माँ इतना प्यार जो करती है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि द टाइम इज द बेस्ट हीलर बट नॉट इन केस ऑफ मदर, एज द टाइम पासिस आई मिस माई मदर मोर डे बाई डे। सच कहा आपने कि कहते हैं कि समय एक अच्छा हीलर होता है, लेकिन माँ के केस में नहीं होता। जब समय गुजरता है तो माँ को और याद करते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सब रिश्ते पैसों के बने हुए हैं, पर माँ के रिश्ते का कोई मोल नहीं है। हमारे एक और श्रोता ने कथा लिखी कि हम छोटे थे, एक ही कंघी थी, जब माँ को बाल झाड़ना होता था तो उसे बहुत टाइम लगता था, क्योंकि माँ के बाल बहुत बड़े थे, स्कूल जाते समय समय हो जाती थी, और माँ को मुकेश जी भी पसंद थे, तो हमने बर्थडे पर सारे भाई बहनों ने पैसे इकट्ठा करके माँ को कंघी और मुकेश जी का कैसेट दिया था, और माँ खुशी के मारे रोने लगी थी। क्या बढ़िया बात है, माँ बहुत सुंदर चीज है। हमारे श्रोता ने इसी बात को लिखा है, और हमारे श्रोता उन्हें लिखा है कि मेरी बेटी अच्छा इंसान बने और मेरी तरह विद्यादान का काम करे, और उनकी यही ख्वाहिश थी और यह इच्छा मैंने पूरी की है। कितनी बढ़िया बात है कि आप सभी अपनी माओं की इच्छाओं को पूरी कर पा रहे हैं और करते जा रहे हैं।

और जिनके पास उनकी माँ है उन्हें तो यह कार्य अधिकार से करते रहना चाहिए। हमारे श्रोता लिखते हैं कि माँ कहती थी जिंदगी में सफल हो ना हो लेकिन एक अच्छा इंसान बनो, और उसी पर चलकर हम आज आगे बढ़ रहे हैं। कितनी बढ़िया बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि माँ जैसा दुनिया में ना कोई है ना कोई होगा, माँ ममता का सागर है। बिल्कुल सही बात है। और हमारे और सारे श्रोता बहुत सारी बातें लिख रहे हैं, हम ये सारी बातें बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हम सुनवाते हैं आपको अगला गीत। ये बड़ा प्यारा सा गीत है, और बस इतना बता दीजिए इस गीत के संगीतकार कौन है, ये आप बताइए और सुनिए ये गीत।

हम सुन रहे थे पिया का घर फिल्म से यह गीत किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल से सजा हुआ, और हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस संगीतबद्ध किया। हमारे बहुत सारी बातें हमारे श्रोताओं ने लिखी है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि माने जिस तरह से हम लोगों को घर गृहस्थी में पाला है, उस समय कोई और होता तो पता नहीं कैसे करता, वह सब उन्होंने ही किया है। बिल्कुल सही बात है, माँ सब संभाल लेती है ना। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि माँ बहुत बीमार थी, इलाज कराना था, दिल्ली लेकर आए थे और सेवा किए, मुझे पुणे जाना पड़ा और सेवा नहीं कर पाए। रहता है मलाल दिल में, कोई बात नहीं। हमारे एक श्रोता ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि माँ की कितनी महिमा है यह हर किसी को मालूम है, पर देखकर, समाचारों में पढ़कर, सुनकर बहुत दुख होता है कि बुढ़ापे में कुछ औलाद अपने माँ पिता को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। बात ये भी बिल्कुल सही है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बढ़िया गाना है, जीवन और जीवन की जीत पर लिखा है, संभवतः संगीतकार रविंद्र जैन है। नहीं, आप यहाँ पर त्रुटिवश है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसे संगीतबद्ध किया है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि माँ कितनी अच्छी होती है ना, बच्चे की हर बात, हर ख्वाहिश जान लेती है और ख्वाहिश को पूरा करती है। जी, हमारे श्रोता लिखते हैं कि माँ वैसे कई बार मेरे घर आई थी, लेकिन वो उनके घर आना चाहती थी और वो आ नहीं पाई और अचानक से चली गई, ये दुख उनके मन में है। बिल्कुल सही है। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि साधारणतः अनेक बच्चों की माँ वृद्धाश्रम में होती है, वो 9 भाई बहन है, पर उन्होंने अपनी माँ को कभी कष्ट नहीं होने दिया। बहुत अच्छी बात है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मम्मी बिल्कुल छोटी सी ख्वाहिश पूरी की थी, उन्हें विविध भारती में स्वप्न चेहरे फूल से वाला गीत सुनना था, वो फरमाइश उन्होंने पूरी करवाई थी। ऐसे ही विविध भारती का साथ और आपका साथ बना रहता है, बहुत अच्छी बात है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि माँ की बात को सुनकर हम आगे बढ़े हैं और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब हम सुनते हैं अगला गीत, और ये जो अगला गीत है, आप अपने संदेश भेजते जाइए और साथ में बताइएगा कि ये जो अगला गीत है इसके गीतकार, संगीतकार और गायक। अब तीन उत्तर देने हैं, गीतकार, संगीतकार और गायक, तीनों के नाम बताने हैं। सुनिए ये गीत।

0: तो कभी छाँव।
1: हम सुन रहे थे ये गीत कभी धूप कभी छाँव। मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि ये गीत में गीतकार, संगीतकार और गायक तीनों के नाम बताइए। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि इस गीत के गायक हैं कवि प्रदीप, गीतकार हैं कवि प्रदीप और संगीतबद्ध किया है चित्रगुप्त ने। हमने हमारी इबारत में लिखा है कि ये जीवन है, यहाँ सुख दुख सब है, कहीं धूप कहीं छाँव मिलती है, तो चलो ना संग में मुस्कुराते हैं, यहाँ मुस्कुराने की फीस कहाँ लगती है। तो चलिए मुस्कुराते हैं इस गीत के साथ, और हो सके तो बताइएगा कि इस गाने में आपको किस गायक कलाकार की आवाज सुनाई दे रही है। सुरीला सफर का यह अंतिम गीत।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

श्रोताओं नमस्कार। एक समय की बात है, एक राजा युद्ध में हार गया और उसके सभी सैनिक मारे गए। अपनी जान बचाने के लिए वो गहरी गुफा में छिप गया। शत्रु सैनिकों ने गुफा के मुहाने पर एक बड़ा सारा पत्थर रख दिया। राजा अब गुफा के अंदर फंसा हुआ था, भूखा प्यासा और पूरी तरह से निराश। उसे लगा कि अब उसका अंत निश्चित है। तभी उसे अपनी मां की सीख याद आई कि बेटा, जब तक सांस है तब तक संघर्ष करते रहना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये बात याद आते ही राजा में नई ऊर्जा आ गई और उन्होंने गुफा से बाहर निकलने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी और फिर से सेना संगठित कर शत्रुओं को हराकर अपना राज्य वापस भी पा लिया। दोस्तों, यानी परिस्थिति चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जिस पल आप कोशिश करना छोड़ देते हैं, उसी समय आप वास्तव में हार जाते हैं। जब तक आदमी खुद से नहीं हार जाता, उसकी हार नहीं होती। हाँ, यानी अगर आप खुद से नहीं हारे तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको चाहकर भी नहीं हरा सकती। अब देखिए ना, एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, हार का मतलब सीखने का पहला प्रयास है। इसलिए असफल होने पर कभी हार नहीं माने। उनका ये भी कहना था कि पहली जीत के बाद आराम न करें, क्योंकि दूसरी हार किस्मत के भरोसे की बात कही जा सकती है। वे कहते थे, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलें।

निराश होने का मतलब है ये महसूस करना कि आप वो काम नहीं कर सकते जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रहे थे। हमारे अंदर वो ताकत है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। खुद पर भरोसा रखिए और रास्ता स्वयं बनाइए, क्योंकि हर काम आसान है, बस अंदर से एक आवाज आनी चाहिए। हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए, यही मायने भी रखता है। विश्वास रखें कि आप कर सकते हैं और आप आधी मंजिल हासिल कर लेंगे ये सोचकर। अगर हम शहीद भगत सिंह की बात करें तो उनके लिए हार मान जाने का मतलब अपने सिद्धांतों और देश के प्रति निष्ठा से समझौता करना था। भगत सिंह हार मानने या घुटने टेकने के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि एक क्रांतिकारी को मौत के फंदे पर भी सिर ऊंचा रखना चाहिए। उनके लिए हारना आत्मसमर्पण था। हालांकि हर नाकामी आपको सिखाती है कि अगली बार और बेहतर कैसे करना है। जब सब कुछ कठिन लगने लगे तब भी डटे रहना ही सफलता की कुंजी है। हार न मानने वाले ही अंत में सफलता पाते हैं और ये हम सभी जानते हैं।

दोस्तों, व्यक्ति को कभी अपनी जीत हो या हार, उसे लेकर मन में कोई भ्रम नहीं पालना चाहिए। व्यक्ति को जीतने से पहले न तो जीत और न ही हारने से पहले कभी हार माननी चाहिए। देखिए ना, हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी हार का सामना करता है। हाँ, लेकिन ये समझना जरूरी है कि हार किसी अंत का संकेत नहीं होती, बल्कि ये उस मोड़ का उदाहरण है जहाँ से नई शुरुआत संभव होती है। जीत के क्षणों में हम खुश हो जाते हैं, पर हार के क्षणों में हम परिपक्व होते हैं। हाँ, याद रखिए, हार के क्षणों में हम परिपक्व हो जाते हैं, और यही परिपक्वता भविष्य में हमारी विजय की असली वजह बनती है। याद रहे श्रोताओं कि आपके अंदर पनपने वाले विचार आपके अंदर संचालित होने वाली ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। जिस तरह के विचार आपके अंदर आएंगे, वैसा ही प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगा। जीत और हार सिर्फ आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, और अगर ठान लो तो जीत होगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हार मानना जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि वे मानते थे कि इंसान के भीतर असीम क्षमताएं हैं। उनका मूल मंत्र था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में हम समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारतीय नौसेना ने तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में खतरों से निपटने के लिए पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इंडिया ब्लॉक के साथ बैठक के अनुरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वार हर भारतीय नागरिक के लिए खुले। सर्वोच्च न्यायालय तक विपक्षी दलों के विरोध मार्च के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई। दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार शाम 4 बजे तक बंद। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों के लिए 3 नए स्थल निर्धारित किए। जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाया। और दिल्ली हरियाणा पंजाब तथा छत्तीसगढ़ में कल तक आंधी तूफान के साथ बिजली चमकने का पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई स्थित नौसैनिक शिपयार्ड में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित तीसरे पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट आईएनएस मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। स्वदेशी तकनीक से निर्मित इस युद्धपोत के नौसेना में शामिल होने से तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बियों का पता लगाने और उनसे निपटने में नौसेना को मजबूती मिलेगी। नौसेना के पश्चिमी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन की अध्यक्षता में कमिश्निंग समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री से निर्मित यह युद्धपोत भारत की इंजीनियरिंग क्षमता, तकनीकी प्रगति और राष्ट्रीय संकल्प को दर्शाता है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में पानी के भीतर मौजूद खतरों का पता लगाने और उनसे निपटने के लिए डिजाइन किया गया आईएनएस मंगरूल आधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस है। इनमें अभय हल माउंटेड सोनार, हल्के टॉर्पीडो, स्वदेशी पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर और मारीच उन्नत टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम शामिल है। वाटर जेट प्रोपल्शन वाले 3 डीजल इंजनों से संचालित यह पोत उथले पानी में तेजी से दिशा बदलने में सक्षम है। यह पानी के भीतर निगरानी, कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों और वॉरफेयर से जुड़े अभियानों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मंगरूल समुद्री गश्ती विमानों, हेलीकॉप्टरों और अन्य युद्धपोतों के साथ मिलकर पनडुब्बी से जुड़े खतरों का पता लगाने और उनसे निपटने में पूरी तरह सक्षम है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। इसमें हथियारों और तकनीक से लेकर वर्दी, उपकरण और प्रशिक्षण तक सभी क्षेत्र शामिल हैं। नई दिल्ली में आज भारतीय सेना और भारतीय खाद्य निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत अब अपनी रक्षा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा देश में ही तैयार कर रहा है।
3: आज आर्मी और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक पार्टनरशिप एमयू की साइनिंग भी और नेशनल सिक्योरिटी को इन्हांस करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। मॉडर्न वॉरफेयर में केवल वेपन्स, प्लेटफॉर्म्स और टेक्नोलॉजी ही महत्वपूर्ण नहीं है। आज के युद्ध केवल फ्रंट लाइन पर नहीं जीते जाते, युद्ध के पीछे सप्लाई चेन की मजबूती, स्टोरेज की क्षमता, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और टाइमली रिप्लेसमेंट की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक से गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे बड़े वायदे किए हैं।
4: हमारे संविधान ने हर नागरिक को सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये उन लोगों की आवाज बनता है जो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते। आयोग शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना भी खुद कार्रवाई कर सकता है।
1: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं।
5: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं, कोई भी पिटीशन किसी भी कोई भी चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
1: इंडिया ब्लॉक की मुलाकात की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी और उन्होंने कल रात ही इसका जवाब दे दिया था। उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी। दिल्ली में विपक्षी दलों के आज दोपहर में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए यातायात

0: निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने नागरिकों के विरोध प्रदर्शन और धरना आयोजित करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त वैकल्पिक स्थानों की पहचान के लिए एक समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का फैसला किया गया है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगा। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री गांधी ने कहा कि उन्होंने और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर चुनावों की निष्पक्षता को लेकर चिंता जताई है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने आज नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू की छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी मणिपुर से कांग्रेस सांसद डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भाजपा का दावा है कि 11 छात्राओं की शिकायतों की जांच के बाद विश्वविद्यालय ने अंगोमचा को उनके पद से हटा दिया था। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की कथित चुप्पी की आलोचना की।
1: स्मैश द पैट्रियार्की का हवाला देने वाले श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस के बाकी शीर्ष नेतृत्व तो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए। मैं पूछना चाहती हूँ राहुल गांधी जी से, क्या आप अपने इस मौन से बिमल अकोइजम जो आपके सिटिंग सांसद हैं उनके सेक्सुअल मिसकंडक्ट को कंडोन करते हैं? अगर स्मैश द पैट्रियार्की आपके लिए केवल एक चुनावी जुमला नहीं है तो बिमल अकोइजम जो आपके सिटिंग सांसद हैं उनके खिलाफ एक्शन लेके दिखाइए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि परस्पर जुड़ी इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग केवल कूटनीतिक विकल्प नहीं है बल्कि ये दुनिया की शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए रणनीतिक आवश्यकता है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि वैश्विक सहयोग का मूल मंत्र साझा हितों को पहचानना, उनका सम्मान करना और उन्हें सामूहिक कार्रवाई में बदलना है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसी वैश्विक समस्याओं से निपटने के लिए सामूहिक प्रतिक्रिया की जरूरत है।
2: I welcome our distinguished participants from friendly foreign countries. This diverse composition provides a unique opportunity for cross-national learning. That is the great importance of this course. Exchange of cross-sectorial perspectives and deeper understanding of national security and strategic issues.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहल से लोगों के जीवन में आए बदलाव के बारे में जानकारी दी जा रही है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। वर्ष 2015 से दुनिया भर में यह दिवस मनाया जा रहा है। इससे योग को वैश्विक पहचान मिली और शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति तथा संतुलित जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ी है।
4: योग से हमें वो आत्मविश्वास और मनोबल भी मिलता है जिससे हम संकटों से जूझ सकें और जीत सकें। योग से हमें शांति मिलती है, मानसिक शांति मिलती है, संयम और सहन शक्ति भी मिलती है।
3: केंद्र सरकार का आयुष मंत्रालय और विभिन्न संस्थान योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम, सामूहिक योग अभ्यास और प्रशिक्षण गतिविधियां आयोजित करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड का योग और अध्यात्म से गहरा संबंध है। ऋषिकेश विश्व भर में योग और ध्यान के प्रमुख केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। हिमालय और गंगा की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि देश विदेश के लोगों को यहां आकर्षित करती है। इसी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने योग नीति 2025 लागू की है। इसका उद्देश्य उत्तराखंड को योग और वेलनेस के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विकसित करना है। राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 5 नए योग केंद्र विकसित करने का लक्ष्य भी रखा है। इन प्रयासों से योग पर्यटन को बढ़ावा देने, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने, उत्तराखंड की योग परंपरा और वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में काम किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का संदेश है कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन जीवन का माध्यम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल और उत्तराखंड की समृद्ध योग परंपरा इस संदेश को दुनिया भर में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका

0: निभा रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: घरेलू कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडार पिछले महीने की 29 तारीख से 1,80,00,000 टन से ऊपर स्थिर बना हुआ है। कोयला मंत्रालय ने बताया कि 10 अक्टूबर को कोयले का भंडार 1,82,00,000 टन से अधिक था। जिन संयंत्रों में कोयले का भंडार कम है उनकी आपूर्ति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को एक बार फिर हमला किया गया। सऊदी अरब के नागरिक उड्डयन सामान्य प्राधिकरण के अनुसार घायलों की स्थिति और हमले में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इससे एक दिन पहले शनिवार को भी हवाई अड्डे पर हमला हुआ था। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि शनिवार को किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में घायल 11 भारतीय नागरिकों में से एक की मौत हो गई है। पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी भारतीय नागरिक की मौत पर दुख जताया। पाकिस्तान में संघीय सरकार द्वारा आपातकाल लागू करने और जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के नेतृत्व वाली प्रांतीय सरकार को निलंबित करने के बाद खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हिंसा बढ़ गई है। कई इलाकों में पुलिस की गोलीबारी और आंसू गैस के गोले दागे जाने की खबरें हैं। केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में कल वहां प्रदर्शन हुए। भारतीय शेयर बाजार में सितंबर माह के अंत तक म्यूचुअल फंड द्वारा 38,306 करोड़ रुपए का निवेश किया गया, जो पिछले माह की तुलना में 31% अधिक है। गोल्ड एक्सचेंज फंड में पिछले महीने की तुलना में 71.4% जबरदस्त तेजी देखी गई, जो 4,451 तक पहुंच गया। घरेलू शेयर बाजार दोपहर में गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। शेयर 617 अंक गिरकर 71,855 पर आ गया, जबकि निफ्टी 158 अंक गिरकर 22,363 पर था। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक बिजली चमकने के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिन में तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में भी ऐसी स्थिति रहने की उम्मीद है। आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। इस दिन तपस्या, त्याग और संकल्प की प्रतीक मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कामना की कि मां ब्रह्मचारिणी सभी को साहस और आत्मसंयम का आशीर्वाद दें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे वस्तु और सेवा कर जीएसटी भारत के कर सुधारों में परिवर्तनकारी भूमिका विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के जीएसटी नीति प्रकोष्ठ के आयुक्त गौरव सिंह शामिल होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय नौसेना ने तटीय उथले समुद्री क्षेत्रों में खतरों से निपटने के लिए पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इंडिया ब्लॉक के साथ बैठक अनुरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वार हर भारतीय नागरिक के लिए खुले। सर्वोच्च न्यायालय तक विपक्षी दलों के विरोध मार्च के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई। दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार शाम 4 बजे तक बंद। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों के लिए 3 नए स्थल निर्धारित किए। जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

हम सुन रहे थे श्रीमती 420 फिल्म से यह गीत, मोहम्मद रफ़ी शमशाद बेगम की आवाज़ों में। सुनेंगे हम मजरू सुल्तानपुरी के बोल और ओपे नैयर के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत, रानी रूपमती फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज़ है, भरत व्यास के हैं बोल और एस एन त्रिपाठी का है संगीत।

0: हम सब आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
1: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
0: आईसीयू में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
1: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
0: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

हम सुन रहे थे प्यासा फिल्म का यह गीत गीता दत्त मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में साहिर लुधियानवी के बोल और सचिन देववर्मन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला गीत तीसरी गली फिल्म से। हेमंत कुमार लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और चित्रगुप्त का है संगीत।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस

0: से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं तीसरी गली फिल्म से यह गीत हेमंत कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और चित्रगुप्त का है संगीत।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं अगला गीत सम्राट चंद्रगुप्त फिल्म से, लता मंगेशकर मन्ना डे की आवाजें हैं, हसरत जयपुरी के हैं बोल और कल्याण जी आनंद जी का है संगीत।

आइए चलते सदाबहार नगमे में सुनते हैं आखिरी गीत फागुन फिल्म से, आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, कमर जलालाबादी के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ। इस गीत के साथ आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: आंसू दे गया, ओए कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया।
1: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं।
1: हाँ।
2: और

0: हैं? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ओए कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है सखी सहेली, कीजिए बस कुछ पलों का इंतजार।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवीएफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सखी सहेली कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही देर में।

0: सखी सहेली सभी सुनने वालों को, सखियों को, सहेलियों को, सखाओं को, सभी श्रोताओं को और दीपा तुमको भी प्यार भरा नमस्कार और ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: बिल्कुल, सभी हमारी सभी सुनने वाली सखियों को, श्रोता भाइयों को, दीपा माहेश्वरी का, चंचल तुम्हें भी दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
0: और भी शुभकामनाएं मैंने तुम्हें दी, तुमने मुझे नहीं दी ना सुनने वालों को।
1: भाई देखो, दी ना, नमस्कार दिए ना भाई। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से अपने परिवार का, खुद का खूब अच्छा ध्यान रखिए।
0: और कल हम ये शुभकामनाएं क्यों दे रहे हैं भाई, कल से जो उत्सव की धूम शुरू है पूरे देश भर में।
1: जी हाँ,
0: और ये उत्सव है नवरात्रि का, जो पूरे 9 से 10 दिन तक देश में यूं ही कहते हैं ना, रंग बिरंगी रौनकें नजर आएंगी, खूब सारी लाइटें होंगी, खूब सारा नाच गाना होगा, पकवान बनेंगे, वहीं जो बहुत सारे लोग हैं उपवास करते हैं, जहां पूजा पाठ का महत्व है वहीं नाच गाने का महत्व है, उजाले का महत्व, बहुत सारे रंगों का महत्व।
1: और देखो ना, ये पूरे नवरात्रि के 9 दिन हर दिन को एक रंग समर्पित कर दिया गया है ना, जैसे आज का रंग है सफेद। पता है श्रुदा, आज इस ऑफिस में, यहाँ पर विविध भारती में ज्यादातर लोग सफेद कलर के कपड़े पहनकर आए, बड़े प्यारे लग रहे हैं, सब एक दूसरे को देखकर एक स्माइल दी। उसके अलावा बाहर भी जब हम घर से दफ्तर तक आ रहे थे तो बहुत सारे लोग सफेद या उसके कॉम्बिनेशन में कपड़े पहने हुए, और कई सारे लोग तो इन दिनों में चप्पल या कुछ किसी भी तरह का,
0: बिल्कुल चप्पल जूते भी नहीं
1: पहनते हैं, उस तरह के लोग भी दिखे। और जी हाँ,
0: उनकी अपनी मान्यताएं होती हैं, धारणाएं होती हैं, अपनी अपनी भक्ति करने के तरीके होते हैं लोगों के। बाकी सुबह का जो समय होता है ना, हर घर से, अमूमन हर घर से आरती की ध्वनियां नजर आएंगी, तो वहीं जब शाम के वक्त हम निकलते हैं तो जो बहुत बड़े बड़े गार्डन हैं या सोसाइटी हैं, बिल्डिंगे हैं, सब जगह पर बहुत ऊंची आवाज में जो गरबा के धुनें जलती रहती हैं, वहां थिरकते छोटे बच्चों से लेकर बड़ी उम्र तक के स्त्री पुरुष बच्चे सभी नजर आते हैं। और अभी जहां हम एक रंग में देख रहे हैं, वहां रंग बिरंगे रंग भी हमें नजर आएंगे, रंग बिरंगे परिधान में भी
1: जी,
0: और वहीं सफेद रंग में भी बहुत सारी महिलाएं पुरुष हमें नजर आएंगे। तो ये माहौल ही ऐसा होता है,
1: माहौल ही कुछ ऐसा है, खुशनुमा हो जाता है, सकारात्मक रहता है, हर जगह पॉजिटिविटी रहती है। और आप किसी को जानो या ना जानो, एक चेहरे पे मुस्कान जो हम एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं वो बड़ा प्यारा लगता है ना।
0: बिल्कुल, चाहे वो कहीं कीर्तन भजन चल रहा हो घर में, या शाम को गरबे का समय हो, हम जब देखते हैं ना भक्तिमय माहौल में और नृत्यमय उत्सवमय माहौल में हम डूब जाते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है, ऐसे माहौल को हम बनाए गीत सुने?
1: बिल्कुल, वो माहौल थोड़ा बना रहना चाहिए, है ना।

0: तो भाई दीपा, नवरात्रों की धूम तो है, लेकिन अब कार्यक्रम में आगे बढ़ना है नवरात्रि की बात के बाद में, तो हम बताएं कि आज किन विषयों पर हम बात करेंगे। तो छोटी छोटी सी कुछ आदतें होती हैं, हम सब में होती हैं, लेकिन जब उनमें बदलाव करना पड़ता है तो उनके जो परिणाम आते हैं वो बड़े होते हैं।
1: बिल्कुल, बदलाव कैसे? सकारात्मक बदलाव।
0: हाँ
1: भाई बदलाव तो कैसे भी हो सकते हैं। अब आप कहे कि भाई कोई दिन भर बहुत सक्रिय रहता है और अचानक से आलसी बन जाए, तो वैसे वाले बदलाव नहीं होने चाहिए।
0: जी
1: ये बदलाव पॉजिटिव वे में होने चाहिए, और तभी तो देखिए हम स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। और इसीलिए बात हम करने चले हैं, विश्व गठिया दिवस पे भी हम छोटी सी बात करेंगे
0: बिल्कुल, ये
1: उसके
0: एक
1: बारे
0: ऐसा
1: में,
0: रोग है
1: क्या
0: जिसे
1: जरूरी है
0: जी
1: जानना।
0: बिल्कुल, जब उम्र बढ़ती है तो सभी को कहीं ना कहीं ये जो गठिया है या अर्थराइटिस जिसे हम कहते हैं, इसकी समस्या आ ही जाती है। तो कैसे पहचाने, क्या बचाव करें, थोड़ी सी इस पर बात होगी। एक और खास दिवस है, वो है राष्ट्रीय स्वतंत्र विचार दिवस, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा होगी। और अभी सोमवार में हम ले रहे हैं छत्तीसगढ़ के व्यंजन,
1: जी
0: तो आज जिस खास व्यंजन की हम बात करेंगे, देखिए वैसे तो उपवास के दिन भी है नवरात्रि में, लेकिन जो उपवास नहीं कर रहे हैं, सब तरह से खा पी रहे, वो इन इन पकवानों का जरूर से मजा रहे। तो छत्तीसगढ़ में खासतौर पर जो चीजें बनाई जाती हैं उन्हीं में से एक है फरा, या इसे मुठिया भी कहते हैं, और एक है अंगाकर रोटी, इनकी बात आज होगी।
1: बिल्कुल, कैसे बनती है, क्या खास है, वो सब हम जानेंगे। और भाई कुछ मैं कहूं कुछ
0: कुछ तुम कहो बात तभी बनती है ना
1: हाँ
0: कि एक जना बोलता रहेगा ना, तो वो बात लगेगा कि भाई कितनी बकबक कर रहा है कि सामने वाले को मौका ही नहीं दिया।
1: बिल्कुल
0: लेकिन संवाद तभी होता है या बात पूरी तभी होती है जब दोनों पक्ष अपनी बात रखते हैं।
1: बिल्कुल। और अगर किसी एक को शिकायत हो तो जो सामने वाला है वो शिकायत को दूर कर दे। जैसे आज एक छोटी सी प्यार भरी शिकायत आई है हमारे एक श्रोता
0: क्या
1: भाई की
0: शिकायत
1: है
0: है भाई?
1: शायद, ये कि भाई इस आरंभ हो चुका है सप्ताह का, भाई देखिए हाँ आज तो सोमवार है और माता रानी का दूसरा नवरात्रा है, और आप ही देखिए ना सखी सहेली कार्यक्रम में नवरात्रों के विषय में कुछ भी नहीं है, उपवास पूजा पाठ या भोजन व्यंजन आदि विशेष तौर पर जो बातें की जाती हैं, और उनको लगता है कि ये तो माता बहनों का डिपार्टमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। माता का डिपार्टमेंट हर एक के लिए है, ये किसी खास तौर पे महिलाओं के लिए नहीं है, और नवरात्रों के उपलक्ष्य में एक विषय अवश्य होना चाहिए, तो ऐसा उन्हें लगता
0: चलिए,
1: है।
0: ये पूरा सप्ताह जो है वो नवरात्रि की धूम चलने वाली है। अलग से जो हमने विषय जिन पर चर्चा के लिए लिखे, वहां हमने नवरात्रि को नहीं लिखा किसी विषय को, लेकिन आगे आने वाले दिन में ये शामिल होने ही वाले हैं। और जब हमने शुरुआत की नवरात्रि की धूम से
1: नवरात्रि
0: कहीं
1: की धूम से की,
0: जी
1: और आपको देखिए ना एक सुंदर सा गीत सुना करके बिल्कुल उस भक्ति भाव में आप सब शायद सरोबार हो भी
0: जी
1: चुके
0: तो
1: होंगे।
0: हमारे श्रोता ने शिकायत तो की है, लेकिन कुछ लोगों को शिकायत भले हो मन में, लेकिन वो नहीं लिख पाए हैं, तो भी शिकायत उनकी दूर हो गई। और उन्होंने हमसे शिकायत की, कुछ उन्होंने कहा, कुछ हमने कह दिया, बात तभी होती है। और ये जो जुमला है ना कि कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, बात तभी बनती है दीपा, क्योंकि ये रिश्तों का पूरा व्याकरण है। हम सभी बोलना चाहते हैं और कोई हमें सुने, हम ये भी चाहते हैं। बोलने से गला हल्का होता है और सुनने से मन, कोई जब हमें सुनता है तो हमारा मन हल्का होता है। और बात तभी बनती है जब गला और मन दोनों पूरी तरह से हल्के हो जाते हैं। तो कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, इसका एक मतलब ये भी है कि आपस में बातचीत करना, अपने दिल की बात एक दूसरे के साथ साझा करना और संवाद का माहौल बनाना। ये केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं होता दीपा, बल्कि दो लोगों या दो पक्षों के बीच आपसी जुड़ाव और आपसी समझ की बात भी है।
1: बिल्कुल सही कहा, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। इसमें सबसे सुंदर पता है क्या शब्द है चंचल? हम।
0: क्या बात है, हाँ बिल्कुल सही
1: और
0: कहा
1: जब
0: तुमने।
1: तक मैं और तुम है ना, तो फिर देखिए बहस है, जहां हम आ गया वहां बात बन जाएगी, और बात को तुमने क्या किया से निकाल कर हम इसे कैसे ठीक करें, बिल्कुल इसमें तब्दील हो जाएगी, होगी या नहीं होगी।
0: बिल्कुल, और तब बात बन भी जाएगी। और दो लोगों के बीच जब संवाद होता है तो इसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति अपनी बात दूसरे की बात तक रखे, जिसे संवाद का संतुलन जो है वो बना रहे। आपसी जुड़ाव, आत्मीयता अक्सर रिश्तों, दोस्ती या प्रेम में इस्तेमाल होती है। और दो लोग जब अपनी भावनाएं, अपने सुख दुख और अपने अनुभव एक दूसरे के साथ साझा करना चाहते हैं, तो बात तभी बनती है।
1: बिल्कुल, क्योंकि एक दूसरे को सुनना और समझना दोनों जरूरी है। इसमें केवल कहने ही नहीं बल्कि एक दूसरे को ध्यान से सुनने और समझने पर भी जोर दिया जाना चाहिए, जिससे आपसी समझ और विश्वास मजबूत हो। अब देखो ना, आजकल संवाद का हाल कुछ ऐसा हो गया है चंचल कि एक बोलता है तो दूसरा इंतजार करता है
0: कि पहला
1: कब चुप हो ताकि वो अपनी बात शुरू कर दे। अब देखिए ये संवाद नहीं है, ये तो भाई मोनोलॉग हो गया है या नहीं दोस्तों? क्योंकि जो आपस में टकरा रहा है, मतलब बोलने ही नहीं दे रहा है अगर हाँ, दूसरे हाँ. को, तो फिर वो कैसे आपसी बातचीत हुई. और जब कोई अपनी बात कहना शुरू करता है उसके पहले ही हम ये तय कर लेते हैं कि सामने वाला गलत है, फिर चाहे वो कितनी भी अच्छी बात कहे हमें तो बस गलत ही लगने लगती है. ऐसे संवाद से बात करने के बजाय बिगड़ ही जाती है. तो जब भी बात कहो साफ कहो, लेकिन थोड़े मीठे अंदाज में कह दो.
0: और शब्दों के पीछे का दर्द भी कई बार हमें जब कोई बताता है तो हम उनसे अनसुना कर देते हैं. कोई हमसे बार बार कह रहा है कि तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है, हम उसके शब्द सुनते हैं लेकिन उसके पीछे छुपी हुई जो कुछ शब्द हैं जो हमें नहीं सुनाई दे रहे कि वो कहना चाह रहा है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है.
1: बिल्कुल.
0: ना कहकर भी उसने कहा लेकिन हम इन शब्दों को सुन नहीं.
1: कई बार क्या होता है ना, ऐसा होता है लोगों में कि वो प्रेम भरे शब्द बता नहीं पाते, बोल नहीं पाते, लेकिन उनके गुस्से में भी वो जो उनके प्रेम को हमें समझना पड़ता है.
0: जब कोई गीत या गजल बनती है ना तो उसमें चार चीजें चाहिए होती हैं, जब भी वो अच्छा लगता है, वो है लय, सुर, उसके शब्द और एहसास. इसी तरह से बात भी जब हम कोई करते हैं तो बात तभी बनती है, उसमें चार सुर होने चाहिए, ठहराव, सच्चाई, पारदर्शिता और विश्वास.
1: बिल्कुल. और जब हम ठहराव यानी मन को शांत कर लेंगे, वहां से बात शुरू करेंगे, तो गुस्से में कही की गई जो बात है ना, सच भी हो तो जहर लगने लगती है. लेकिन इसलिए जब आप जब आए तो 20-25 मिनट के लिए मौन हो जाएं, यानी आप कभी भी कहीं से बाहर से आ रहे हैं तो अगर यह गुस्से में है तो थोड़ा सा चुप रह जाइए. इससे होगा ये कि 90% बातें तो वहीं खत्म हो जाएंगी.
0: बिल्कुल.
1: गुस्से में, क्योंकि गुस्से में की गई बात और फिर देखिए वो बात का कहां बतंगड़ बन जाता, देर नहीं लगती.
0: और जब कोई बात अपनी हमसे कह रहा है तो सच्चे मन से उसे सुनना है. इसका मतलब ये नहीं कि हमारी आंखें मोबाइल पर हैं, चेहरा उसकी तरफ लगा हुआ है और हम उसकी बात को पूरी तरह से सुन ही नहीं रहे हैं. मतलब उसे दिखा रहे हैं कि हमने सुना लेकिन हमारा ध्यान या तो अपनी किसी और बात पर है, हमारे मोबाइल पर है, या उसे बीच में जब अगर हम टोक देते हैं उसकी बात को पूरा होने से पहले ही, तो वो अपनी बात कहने के लिए जो अपना मन हल्का करना चाहता है ना, वो पूरी तरह से नहीं हो पाता है. और एक ऐसा व्यक्ति जो हमें पूरी तरह से समझता है, हमारे मन के भीतर चल रही उथल पुथल को वो पूरी तरह से भांप लेता है और हमसे वो बात करता है. फिर भी अक्सर हम घुमा फिरा के कह देते हैं ना कि कुछ नहीं, सब ठीक है, लेकिन हमारे अंदर जो तूफान चल रहा है उसे वो हमें समझ लेता है. और कई बार बिना कहे ही वो बात संवाद जो है दोनों के बीच में हो जाता है.
1: बिल्कुल. क्योंकि देखिए ना, बात करने से ही बात बनती है, खामोश रहने से तो दूरियां पनपती है.
0: और इसीलिए दीपा, ना तुम चुप रहो ना हम चुप रहें, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, और जो उलझी है गांठ दिल में तो बातों ही बातों में वो सुलझे.
1: बिल्कुल. संवाद कोई जादू नहीं, आदत है चंचल, और आदत एक दिन में नहीं बनती. हम सब एक अच्छी शुरुआत करें कि हर रोज जब भी समय मिले किसी एक अपने से सिर्फ 5 मिनट बिना सलाह के, बिना जज किए, सिर्फ सुनने सुनाले वाली बातें करेंगे. करके देखिए, मन हल्का लगेगा, यकीन मानिए.
0: बिल्कुल. अब जब ऐसा करेंगे तो आपका मन हल्का हो जाए, हम भी यही चाहते हैं. और सुन लेते हैं गाना.

0: जब बात मन में रह जाती है ना तो उलझनें बढ़ जाती हैं, इसलिए मन की बात कह दीजिए और कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, ऐसा होना चाहिए। इसी पर एक बड़ा बहुत अच्छा संदेश आया है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि जहां एक ही बोले वो भाषण होता है, संवाद नहीं, जहां दोनों बोले और दोनों सुने वहां संवाद बन जाता है। बिना संवाद के मन बंद हो जाते हैं। कहने से मन हल्का होता है, सुनने से भी मन बड़ा होता है। और आज की सबसे बड़ी कमी यही कि सबको कहना है पर सुनना किसी का नहीं है। इसीलिए ये पंक्तियां हमें बराबरी का सम्मान सिखाती हैं कि ना तुम हमेशा सही ना हम हमेशा सही। इसीलिए घर में, रिश्तों में, समाज में अगर हम थोड़ा सुन लें, थोड़ा कह दें, तो आधी दूरियां, आधी लड़ाइयां खुद ब खुद मिट जाएंगी।
1: बिल्कुल सही कहा। और इसी तरह से एक और संदेश है, कह रहे हैं कि साझा अभिव्यक्ति, यानी कि कुछ बातें आपकी और कुछ बातें हमारी, रिश्तों में ताजगी और अपनापन बनाए रखती हैं। जब दोनों पक्ष अपनी बात खुलकर रखते हैं और एक दूसरे के मन की थाह ले लेते हैं, तब विश्वास की जड़ें और मजबूत होती हैं।
0: एक अन्य संदेश में लिखा गया है कि जहां ना शब्दों की कोई बाध्यता हो, ना भावनाओं पर कोई पहरा हो, बस मन हो, संवेदनाएं हो और एक दूसरे को सुनने और समझने का सुंदर सा सिलसिला हो।
1: बहुत बिल्कुल बहुत सुंदर कहा। और एक संदेश और है कि हम किसी से कुछ कहते हैं अपने दिल की बात, तो हमारी बात, हमारी बहुत सारी व्यर्थ जो नेगेटिव बातें वो निकल जाती है, पर हम सिर्फ कहें ही नहीं, अगला जो सुन रहा है उसकी भी कुछ बात सुने। परिवार में कुछ लोगों के प्रति कुछ ऐसे विचार आते हैं जो अच्छे नहीं होते, पर अगला कोई आपका दोस्त या प्रिय सुनकर और आपको सुझाव देता है, उन बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए।
0: एक अन्य संदेश में पढ़कर सुनाती हूँ, बड़ी अच्छी बात लिखी है कि एक तरफा बात अक्सर बोझिल हो जाती है और संवाद एक तरफा भाषण बनकर रह जाता है। साझा अभिव्यक्ति यानी कि कुछ बातें आपकी और कुछ बातें हमारी, तो ये अगर होगा तो रिश्तों में ताजगी और अपनापन बना रहेगा। जब दोनों पक्ष अपनी बात खुलकर रखते हैं, एक दूसरे के मन की थाह लेते हैं, तब विश्वास की जड़ें और भी मजबूत हो जाती हैं।
1: बिल्कुल। और एक संदेश कहता है कि जीवन केवल अपने हिस्से की बात कह देने का नाम नहीं है, बल्कि दूसरों को सुनने और समझने की कला भी है। जब हम कहते हैं कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, तो सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं रहता है।
0: तो भाई सिर्फ हमें ही नहीं कहना है, गीतों के माध्यम से भी बहुत कुछ कहा जाता है, तो सुने गीत।
1: चलिए चलिए।

0: हम भी आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, और एक अच्छा सा सुंदर सा संदेश है वो मैं पढ़कर सुनाती हूँ। हमारी एक सखी लिखती है कि आज विश्व गठिया दिवस है, मैं बहुत लंबे समय से इस बीमारी से ग्रसित हूँ। मैं सारा काम कर लेती हूँ, चल फिर लेती हूँ, अगर मैं एक दो दिन भी नहीं चली तो ये मेरे लिए बहुत ही दुखदायी हो जाता है। इसीलिए आप इसका सिर्फ एक ही इलाज है या परहेज है कि आप शरीर के अनुसार खाना खाएं, कुछ वात की चीज़ों से अपने आप को दूर रखें, शरीर को एक्टिव रखें, नियमित रूप से हल्का फुल्का व्यायाम करें, दुरुस्त दिनचर्या, सही खान पान इस रोग से निजात दिलाता है।
1: बिल्कुल सही कहा, एक सक्रिय मतलब फिजिकली एक्टिव लाइफ बहुत ज़रूरी है हर तरह की चीज़ के लिए, क्योंकि देखिए ना, गठिया एक रोग नहीं है बल्कि 100 से ज़्यादा बीमारियों का ये समूह है। इसमें जोड़ों में दर्द, सूजन, अकड़न आ जाती है। और अगर एक अनुमान के अनुसार हम देखें तो भारत में, हमारे देश में करीब 18 करोड़ से ज़्यादा लोग किसी न किसी तरह से इस गठिया से पीड़ित हैं। लेकिन होता यह है कि 70% लोग इसे बुढ़ापे का दर्द समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि ये बच्चों में भी हो सकता है।
0: बिल्कुल सही कहा दीपा, और कई तरह का गठिया रोग होता है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है, इसमें सबसे आम तौर पर ये सबसे आम है, और लगभग जब 40-45 की उम्र होने लगती है उसके बाद कूल और घुटनों में घिसाव पाया जाता है, तब ये दर्द उठते बैठते, जिसे इतना कमर में दर्द हो रहा है या घुटनों में चला फिरा नहीं जा रहा, उस तरह का होता है। इसी तरह से रूमेटाइड अर्थराइटिस है, जिसमें सुबह उठते ही हाथों में अकड़न सी महसूस होती है और 30 मिनट तक

0: मुट्ठी खुलने ना खुलने जैसी दिक्कत भी महसूस हो सकती है।
1: बिल्कुल
0: इसी तरह से गाउट भी एक गठिया का प्रकार है, जिसमें यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो पैर के अंगूठे में असहनीय दर्द होता है।
1: बिल्कुल। और इसी तरह से एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, ये युवाओं में सुबह कमर में जकड़न जैसी समस्या इसमें आती
0: तो
1: है।
0: बिल्कुल ये कतई ना
1: बिल्कुल
0: समझे कि ये बढ़ती उम्र में ही होता है, कई बार कम उम्र में भी ये समस्या आपको जकड़ सकती है।
1: बिल्कुल। और जब भी इस तरह के कोई लक्षण दिखाई देते हैं आप में या आपके परिवार के किसी सदस्य में, तो इसे बिल्कुल नजरअंदाज न करें। जैसे सुबह 30 मिनट से ज्यादा जोड़ों में जकड़न हो, 3 दिन से ज्यादा एक ही जोड़ में सूजन आना है, या बिना चोट के भी दर्द जोड़ों में बना अगर रहता है या बढ़ता जा रहा है, बुखार के साथ जोड़ों में दर्द होना, या चलने उठने बैठने इन सब में तकलीफ होना, इन सब लक्षण अगर ये है तो जो हड्डी रोग विशेषज्ञ है यानी रूमेटोलॉजिस्ट को जरूर दिखाना चाहिए। और
0: जी
1: देर करने से देखिए जोड़ जो है वो टेढ़े हो जाते हैं।
0: बिल्कुल, अपनी समस्या को समाधान करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए समय रहते बचाव ज्यादा अच्छा रहता है। और गठिया रोग से बचने के लिए, जैसे हमारे संदेश में भी लिखा गया था ना कि 30 मिनट, अगर आप ज्यादा समय ना कर सकें 30 मिनट टहल लीजिए, तैरना, साइकिल चलाना जैसे व्यायाम भी कर सकते हैं अगर आपकी शारीरिक क्षमता है तो। बढ़ते वजन को भी नियंत्रित करना जरूरी है, अगर लगातार आप देखें कि आपका वजन बढ़ रहा है तो वहीं उसे भी नियंत्रण करने की कोशिश करें। धूप में 15 मिनट तक विटामिन डी का सेवन कर सकते हैं, और जो सुबह के उगते सूरज की धूप होती है उसी में विटामिन डी होता है। ऐसा ना समझे कि सारा दिन में से कभी भी आप थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएंगे, विटामिन डी आपको
1: जी
0: मिलेगा। अदरक, हल्दी और या ओमेगा 3 वाली जो भी चीजें हैं, जिसमें अखरोट, अलसी ऐसी चीजें भी होती हैं, इन्हें अपनी नियमित खुराक में शामिल किया जा सकता है। और अकड़न होने पर थोड़ा सा ना गर्म सिकाई भी की जा सकती है।
1: बिल्कुल। और जोड़ों में दर्द रहता है ना चंचल, तो ठंडे पानी से ना नहाए इस तरह
0: जी
1: से हमेशा सलाह दी जाती है। और देर तक एसी में बैठे रहना, क्योंकि आजकल हर घर में ही तो देखिए एयर
0: हाँ
1: कंडीशन है ही, तो इसमें भी दर्द बहुत बढ़ जाता है। फिर पालथी मारकर घंटों बैठना या सीढ़ियां ज्यादा चढ़ना, ये सब में दर्द बढ़ सकता है, इससे आपको बचना चाहिए। दर्द होने पर बिना डॉक्टर की सलाह के दर्द का जो कोई भी पेन किलर लेना, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये समस्या को और बढ़ा सकता है।
0: ये सिर्फ जोड़ों के दर्द की बात नहीं है, आपको किसी भी तरह का दर्द होता है और उसमें अगर आपने बिना डॉक्टरी सलाह के पेन किलर लिया है तो उसके कोई साइड इफेक्ट भी आपको आ सकते हैं। इसीलिए जब भी कोई ऐसा दर्द हो, और खासतौर पर गठिया की हम बात कर रहे हैं, अर्थराइटिस की बात कर रहे हैं, तो चिकित्सकीय सलाह बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल। और दर्द अगर बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है तो पहले ही आराम, जो पहले क्या करना चाहिए, आराम तो उसका इलाज है ही, ये सोचकर बिल्कुल हिलना डुलना जो है बिल्कुल ना करें, ये उचित नहीं है।
0: बिल्कुल
1: और गठिया ला इलाज नहीं है देखिए, पर अनदेखा करना ये भी सही नहीं है।
0: बिल्कुल
1: सही समय पर सही जानकारी और व्यायाम से हम अपने रोजमर्रा के जीवन को बिल्कुल सामान्य रख सकते हैं।
0: और इसीलिए दर्द को अपना स्वभाव बिल्कुल मत बनने दीजिए। जोड़ हिलेंगे जीवन तभी मिलेगा। और इस तरह के विश्व स्तर पर जब भी कोई दिवस मनाए जाते हैं तो उनकी एक थीम रखी जाती है। इस बार इस दिन की थीम रखी गई है सही जानकारी बेहतर जीवन।
1: बिल्कुल। और अभी क्या करना चाहिए,
0: एक अंतराल का समय है।
1: चलिए।

0: श्रोताओं, विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं। और दीपा, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले गीत सुन लें।
1: चलिए।

0: गीत बहुत सुंदर था दीपा, और ऐसे गीत जब बजते हैं ना तो गठिया वटिया सब भूल के ना नाचने कूदने को झूमने को दिल करता है।
1: बिल्कुल।
0: इसी तरह जब रात को गरबा होता है ना, तब भी कितना भी दर्द हो रहा हो हाथ पैरों में, लेकिन जब वो थिरकते हुए हम पैर देखते हैं या ऐसा कोई गीत सुनते हैं ना, तो मन करता है कि थोड़ा सा चलिए चाहे दो राउंड
1: बिल्कुल,
0: लेंगे गरबा के हम, लेकिन हो जाए।
1: दिल जब खो जाता है तो किसी सखी को ही बताया जाता है ना।
0: और चलिए हम गठिया दिवस के बाद अब बात करते हैं एक और खास दिवस की, जो है राष्ट्रीय स्वतंत्र विचार दिवस।
1: बिल्कुल।
0: ये भी 12 अक्टूबर को मनाया जाता है, और ये दिन हमें याद दिलाता है दीपा कि सोचना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन किसी की दी हुई वस्तु नहीं है। ये स्वतंत्र विचार का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो भी मन में आया वो बोल दिया। बड़ों का अपमान करना, हर परंपरा को भला बुरा कहना, इसे विचारों की स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता।
1: जी, स्वतंत्र विचार का मतलब ये है चंचल कि किसी भी बात को आंख बंद करके ना मानना, सवाल पूछने की हिम्मत बिल्कुल रखना चाहिए। ऐसा क्यों, ये हम पूछ सकते हैं अपने बुद्धि, अपने अनुभव और सबूतों के आधार पर अपनी राय बनाना, और दूसरों को भी अपनी राय बनाने की जो है जब बना उसका सम्मान करना। अगर किसी की राय कुछ और है, हमारे सोच से अलग है, तो उसका सम्मान बिल्कुल करना
0: आज
1: चाहिए।
0: हमारे पास जानकारी तो बहुत है लेकिन सोच है वो बहुत कम है। सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारी सूचना जो हमें मिलती है हम उनको ही सच मान लेते हैं, और भीड़ का हिस्सा मानकर हम भी वही करने लगते हैं जो सारे लोग कर रहे होते हैं। और कई बार हमें ये भी डर लगता है कि इससे अलग सोचा तो लोग क्या कहेंगे।
1: ये बात तो बिल्कुल सही है, और इसलिए सुनो सबकी, करो अपने विवेक की, मानो वही जो बुद्धि को ठीक लगे। बुजुर्गों ने कहा है, सुनिए सबकी, करिए मन की। पर मन का मतलब जिद नहीं, विवेक है। स्वतंत्र विचार विद्रोही नहीं, ये जिम्मेदारी है, खुद के दिमाग का इस्तेमाल करने की हमारी जिम्मेदारी।
0: बिल्कुल सही कहा, और हमारी जिम्मेदारी ये है कि बातों के साथ साथ गीत का सिलसिला जारी रहना चाहिए।
1: चलिए।

0: चंचल
1: बोलिए।
0: देखो ऐसा लगता है ना कि भाई छोटी छोटी छोटी छोटी हम वो किस्सा कहानी जो पड़ी है, बूंद बूंद से जो घड़ा घड़ा जो भरता है
1: जी।
0: बस ठीक उसी तरह हमारी छोटी छोटी आदतें ही जीवन में बड़े बड़े बदलाव लाती
1: हैं। सही कहा। हम सब चाहते हैं कि हमारी सेहत अच्छी रहे, घर व्यवस्थित रहे, रिश्तों में मिठास बनी रहे, जीवन में खुशहाली आए, लेकिन इसके लिए हमेशा बदलाव करने की जरूरत नहीं होती है। छोटी सी शुरुआत भी बहुत बड़े परिणाम दे सकती है ना दीपा?
0: बिल्कुल सही कहा। तो देखो चलिए जान ही लेते हैं आपकी जिंदगी, ये जो रोजमर्रा की जिंदगी है इसमें कौन से छोटे छोटे बदलाव हम कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहले शुरुआत होती है अपनी सुबह से, अच्छी आदतों से हमें करना चाहिए। उठते ही मोबाइल देखने के ये जो आदत है उसके बदले में थोड़ा सा टहल लें, घर के अंदर ही ताजी हवा ले लें या हल्का सा बिल्कुल स्ट्रेचिंग वाली जो एक्सरसाइज होती है ना वो कर लें। और छोटी सी आदत ये देखो हमें दिन भर ऊर्जावान रहने में मदद कर सकती है।
1: इसके अलावा एक छोटा सा दूसरा बदलाव हम ये भी कर सकते हैं कि अपने खान पान में थोड़ा सा बदलाव ले आए, पर्याप्त रूप से पानी पिए, फल सब्जियां खाएं, जंक फूड का सेवन थोड़ा सा कम कर दें। अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए जरूरी ये नहीं कि हम सब कुछ एकदम से बदल दें, लेकिन छोटी छोटी सी आदतों से भी हम अपना सकते हैं। और मौसम में जो फल सब्जियां आते हैं उनको अपने आहार में जरूर से इस्तेमाल करना चाहिए।
0: बिल्कुल। और सही समय का हमें समय का जो है सही इस्तेमाल करना चाहिए। सोशल मीडिया पर कभी कभी होता है ना बेवजह समय बिताने लगते हैं, हम पता ही नहीं चलता कितना वक्त निकल जाता है। इसके बदले में हम कुछ समय किताबें पढ़ने में लगाना चाहिए कुछ समय को, और नई चीजें सीखने का या अपने शौक पूरे करने में भी हम व्यतीत कर सकते हैं अपना समय। और रोज के 15 मिनट भी धीरे धीरे अगर कुछ सीखा तो समझ लीजिए सच में बहुत कुछ सीखा।
1: एक छोटा सा संदेश इसके बारे में बड़ा अच्छा आया है कि छोटी आदतों में बदलाव करने से समय के साथ जीवन में बहुत बड़े सकारात्मक परिणाम आते हैं। जब आप रोजाना खुद को बेहतर बनाने की शुरुआत छोटी सी करते हैं तो बहुत महीनों या सालों में वो बदलाव बहुत बड़ा रूप ले लेता है। जैसे कभी कभी छोटी सी बचत बहुत बड़ी बचत बन जाती है, आपका अर्थ मजबूत होता है। सुबह 5 से 10 मिनट ध्यान या मेडिटेशन, हल्की सैर, छोटी छोटी ये आदतें हैं जो मानसिक शांति, सकारात्मक मानसिकता और बेहतर समय प्रबंधन लाती हैं। और ये छोटी सी जो बातें हैं वो जीवन में बहुत बड़ी खुशियां ले आती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। घर को भी

0: सुथरा रखने के लिए रोज केवल 10-15 मिनट अगर हम निकाल लें तो सच में देखो जो चीजें हैं वो व्यवस्थित रहेंगी। हर दिन ऐसा नहीं है कि लंबी चौड़ी, आज हम बोलते हैं ना कि संडे है अब आज हम सफाई करेंगे, अगर हर रोज भी थोड़ा थोड़ा समय निकाला तो घर आपका व्यवस्थित रहेगा।
1: एक छोटा सा संदेश है, लेकिन देखिए कितनी अच्छी बात लिखी कि रोज व्यायाम करना, सैर करना कुछ देर भी अगर आप करते हैं, रोज नहीं हो पाता तो समय के अंतराल पर करिए, लेकिन इसे पता लगता है कि धीरे धीरे शरीर जो है वो स्वस्थ होता जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और आर्थिक स्थिति को भी हम बेहतर बना सकते हैं छोटी छोटी आदतों से, जैसे गैर जरूरी खर्चों से बचें और खरीदारी से पहले सोच लें कि क्या सच में वो चीज हमें जरूरत है उसकी, क्योंकि फट से ऐसे ही ऑनलाइन ये जो क्लिक कर देते हैं हम
1: हाँ
0: बटन, उसके पहले जरा सा उंगली हटा लीजिए और सोच लीजिए, और धीरे धीरे यही छोटी बचत आपकी बड़ी बचत में तब्दील हो सकती
1: ऐसे
0: है।
1: ही एक संदेश कहता है कि जिंदगी में बड़े बदलाव लाने के लिए बड़े कदम उठाना जरूरी नहीं होता, कभी कभी छोटी छोटी आदतें, छोटे छोटे कदम, जैसे मीठा बोलना, समय की कद्र करना, दूसरों की मदद करना, ये भी हमारे जीवन को खूबसूरत बना देती हैं। बस छोटी सी शुरुआत है तो बड़ा बदलाव भी एक दिन जरूर हो जाएगा।
0: बिल्कुल। हम फिर आ जाते हैं अब एक और जरूरी आदत पर, सकारात्मक सोच की। समस्याओं से घबराने के बजाय उनका समाधान खोजने की हमें कोशिश करना चाहिए चंचल, और जीवन में मिली छोटी छोटी खुशियों का उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड यानी आभार व्यक्त नहीं करते, कम
1: हाँ
0: करते हैं जरा। छोटी सी ही बात क्यों ना सही कि मेरा भरा पूरा परिवार है, सब लोग मेरे साथ हैं, हम इसके लिए भी अपना आभार व्यक्त कर सकते हैं। और हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि एक ही दिन में सारी आदतें देखिए बदलने वाली नहीं है, इसकी कोशिश भी हमें करनी नहीं चाहिए। बस शुरुआत एक या दो छोटी अच्छी छोटी छोटी आदतों से करिए, नियमित रूप से उसे अपनाकर देखिए तो सही, आप निराश बिल्कुल नहीं होंगे।
1: एक छोटी सी आदत हमारी भी है कि हम बीच में गाने सुना देते हैं, वो हमें रोकनी नहीं
0: ये
1: चाहिए।
0: तो बहुत अच्छी आदत है।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो हैं हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
4: भाई हम बहुत बोल रहे हैं, हम कोई भी काम करें चाहे वो बोलने का हो या कोई शारीरिक श्रम हो, ऊर्जा कैसे मिलती है, हमें खाने से ऊर्जा मिलती है।
5: बिल्कुल सही
4: तो
5: का।
4: मेरे कहने का इशारा आप समझ गए कि अब कुछ खान पान की बात भी होनी चाहिए ना?
6: और हमारे यहाँ तो इतने विभिन्न प्रकार के देखो व्यंजन होते हैं, हम हर प्रदेश के व्यंजन को लाने की कोशिश कर रहे हैं और कितने तरह तरह के व्यंजन और रेसिपीज हमने सीखी भी है। आज छत्तीसगढ़ की हम सीख रहे हैं अंगाकर रोटी, ये एक पारंपरिक वहाँ के व्यंजन, प्रसिद्ध और पारंपरिक व्यंजन है। इसे सीधे आग के अंगारों पर पत्तों में लपेटकर पकाया जाता है, इसलिए इसे अंगाकर कहा जाता है। और इसे पान रोटी या पनपूर्वा रोटी भी कहते हैं क्योंकि ये पत्तों में लपेटी जाती है। लेना क्या है इसमें, पका हुआ चावल लेना है या बचा हुआ चावल भी आप ले सकते हैं, एक कटोरी चावल का आटा, एक कटोरी नमक अपने हिसाब से ले लीजिए, और केले के पत्ते या पलाश के आपको अगर मिल जाए तो वो वाले पत्ते, गोबर के उपले या लकड़ी के अंगारे अगर हो सके तो। बनाना कैसे, सबसे पहले पके हुए चावल को अच्छी तरह मसल ले, इसमें चावल का आटा और नमक मिलाकर नरम आटा गूंद ले। अब जो पत्ते आपने लिए हैं पलाश के या केले के पत्ते, उनको आपस में रखना है, आटे की मोटी लोई बनाकर पत्ते के इसके ऊपर रखना है और ऊपर से एक और पत्ता ढकना है। अब जो तैयार पत्ते वाली रोटी को जलते हुए कंडे या कोयले के अंगारे पर रखना है, ऊपर से भी आपको गर्म अंगारे डाल देना है। ये नहीं है तो फिर अब आप घर पे जो तवा है उसके ऊपर कर सकते हैं। और इस तरह से अगर आप करेंगे तो 15-20 मिनट तक पकने दीजिए और पत्तों की देखिए सौंधी सौंधी खुशबू रोटी में आ जाती है। पत्ते हटाकर गर्मा गर्म अंगाकर रोटी को टमाटर की पतली चटनी या घी के साथ परोसा जाता है वहां पर पारंपरिक रूप से।
4: बिल्कुल, ऐसे नए व्यंजन देखते हैं तो उनको जरूर एक बार ट्राई करना चाहिए। और अब हम सुन लेते हैं गीत, चलिए।

0: चंचल, हमसे तो बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा, फरा की जो व्यंजन विधि जल्दी से बता दो।
1: तो भाई देखिए, हमारे श्रोताओं ने इसकी व्यंजन विधि लिखकर भेजी है और वो ये भी बता रहे हैं कि फरा उनके यहाँ करवा चौथ पर बनाया जाता है, तो करवा चौथ भी आने वाली है, थोड़ा सा ही इंतजार रह गया है। लेकिन आगे उन्होंने ये भी लिखा है कि फरा तो जब भी मन करता है ना तभी ये बना लिया जाता है। इसके लिए चावल के आटे को सान कर उसकी लोई में चने की पिसी हुई दाल में नमक, मिर्ची, अदरक, ये जो चीजें, इनको बारीक काट लिया जाता है और इनको मिलाकर भरकर उबलते पानी में डालते हैं। कुछ ही देर में फरे हल्के होकर ऊपर आ जाते हैं, तैरने लगते हैं और थोड़े से कड़े हो जाते हैं, इनके जो ऊपर का आटे का कवर है वो थोड़ा सा कड़क हो जाता है। और फिर पानी से निकाल कर छोटे टुकड़ों में इन्हें काट कर हींग और जीरे से छौंका लगा लिया जाता है। फिर हरे धनिये की चटनी के साथ इनको खाया जाता है कि बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होती हैं। तो फरा जो है वो कई प्रांतों में बनाया जाता है, हर प्रांत में बनाने का तरीका जो है वो थोड़ा थोड़ा अलग होता है। चावल के आटे के साथ बहुत सारे लोग इसमें आटे के साथ भी बनाते हैं और जो ताजा चने की दाल को पीसकर बनाई जाती है, जो मसालों का इसमें प्रोपोर्शन है वो भी थोड़ा बहुत बदल जाता है। कुछ इसमें पीसा हुआ लहसुन अदरक भी डाल देते हैं, प्याज भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च आपको जरूरत के अनुसार, अगर जितना तीखा खाते हैं उसके हिसाब से डालिए या ना डालिए, तो ये बदलाव अपने हिसाब से किए जा सकते हैं। और फरा को कहीं कहीं मुठिया भी कहा जाता है।
0: अच्छा, एक संदेश और छोटा सा है कि हर रोज एक गुल्लक में कुछ रुपए जमा करते हैं तो एक अंतराल पर वही छोटी छोटी बचत से कितना पैसा अनजाने में जमा हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता।
1: बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह से हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे गाने जमा हो जाते हैं, लेकिन ये जो सुन रहे हैं ये है कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: घड़ी की सुइयां अभी हमें वक्त नहीं दे रही हैं कि हम और बातें करें, तो इजाजत ले लेते हैं सभी को।
1: बिल्कुल,
0: चंचल वर्मा
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर संदीप वर्मा से यूनुस खान की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप वर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका विविध भारती के स्टूडियो में
2: मुझे आमंत्रित करने के लिए। और बड़ा अच्छा लग रहा है, ये डॉक्टर्स के लिए नया एक्सपीरियंस रहता है ना तो।
1: अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की है और आप कहाँ के रहने वाले हैं संदीप जी?
2: मैं रहने वाला प्रयागराज इलाहाबाद, और पढ़ाई मैंने की है गोरखपुर मेडिकल कॉलेज से।
1: अच्छा अच्छा क्या बात है।
2: और उसके बाद फिर मैं दिल्ली मूव कर गया था, वहाँ पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज में था, सफदरजंग हॉस्पिटल में था। उसके बाद फिर मुंबई की तरफ रुख किया।
1: जी जी,
2: यहाँ पे मुंबई में बॉम्बे हॉस्पिटल है, बहुत प्राचीन हॉस्पिटल है, बहुत मशहूर और बहुत अच्छा काम होता है इंटेंसिव केयर का। तो वो फिर मैंने वहाँ इंटेंसिव केयर की ट्रेनिंग की।
1: आपने इंटेंसिव केयर को क्यों चुना अपने स्पेशलाइजेशन के लिए?
2: हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि जब मेडिकल की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमको लगता है डॉक्टर ऐसा होना चाहिए कि लाइफ सेवर हो जो।
1: हाँ,
2: और वो केसेस जितने भी हैं वो इमरजेंसी में ही आते हैं।
1: बिल्कुल।
2: तो ऐसा लगता था, मतलब डॉक्टर सबका रोल है, ऐसा नहीं है कि जो बाकी दूसरे डिपार्टमेंट हैं उनका सब एक टीम वर्क होता है, लेकिन वो डायरेक्ट जुड़ जाता है। अब इंटेंसिव केयर का डॉक्टर जो रहता है वो जब यंग होते हैं, आप जब तैयारी कर रहे होते हैं, डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हो, तो लगता है नहीं यार जान बचानी है कम से। तो वो एक था इंटरेस्टिंग मेरी तरफ से, ऐसा कि भाई चैलेंजेस रहते हैं, हर दिन आप एक नया चैलेंज देख रहे होते हैं, क्योंकि अभी भी मेडिकल साइंस बहुत तरक्की किया है लेकिन बहुत कुछ होना बाकी है अभी भी।
1: बिल्कुल।
2: तो वो है
1: एक चीज जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जब कभी भी कोई मरीज आईसीयू में जाता है तो परिवार में एक तरह से पैनिक हो जाता है कि आईसीयू में जाने का मतलब अमूमन ये माना जाता है कि जान बचने वाली नहीं है। एक इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट के तौर पर आप इन बातों को थोड़ा क्लियर कीजिए कि आईसीयू में जाने का मतलब बहुत पैनिक नहीं है, वहां से लोग लौट कर भी आते हैं।
2: नहीं नहीं नहीं सर, अभी तो हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं
1: जी,
2: और जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है। 100 में से 99 तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन हाँ 90 से ऊपर लोग वापस आते हैं। ये ऑब्वियसली कि आप किसी भी पेशेंट को, उसके सगे संबंधी को बोलेंगे कि भाई इंटेंसिव केयर यूनिट की जरूरत है, तो थोड़ा तो लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उतने डरने की बात नहीं है। और इस भ्रम की वजह से भी कि इंटेंसिव केयर यूनिट पर नहीं जाना चाहिए, हमको घर पे ही रख दो या हम वार्ड में ट्रीटमेंट लेंगे, ये कभी कभी समय बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर आप सही समय पे सही जगह पहुंच जाते हैं, ये हर फील्ड में है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: सही समय पे सही जगह पहुंच गए तो आपके बचने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और अब वो भी नहीं है कि पहले ऐसा कॉन्सेप्ट था कि लास्ट स्टेज में आईसीयू, ऐसा नहीं है। कभी कभी हम सिर्फ मॉनिटरिंग कि भाई इनके वाइटल्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर पल्स ऊपर नीचे हो रहा है, ऑक्सीजनेशन ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसमें एक क्लोज मॉनिटरिंग के लिए भी शिफ्ट करते हैं।
1: एक बहुत नॉर्मल परिस्थिति में, यानी बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति ना हो, सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए।
2: हाँ,
1: भी
2: आप उस तरफ ना जा पाए, नॉर्मल सिचुएशन को इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करने से एक बीच का एक रास्ता बना भी है कि ब्रेक कर दिया हमने।
1: हाँ,
2: एक पेशेंट थोड़ा सा बैड हुआ, उसको हमने इंटेंसिव केयर यूनिट में शिफ्ट किया और उसको स्टेबलाइज कर दिया, और 80-90% केसेस स्टेबलाइज हो जाते हैं सर।
1: आपसे बात करते हुए जाने क्यों मुझे कोरोना का समय याद आ गया, क्योंकि आईसीयू की इतनी बातें हुई उस वक्त की जो परिस्थितियां थी उन्हें तो याद करते हुए भी जरा डर लगता है।
2: बहुत बहुत
1: वो कितना चैलेंजिंग वक्त था आप लोगों के लिए, जो खासतौर पर आईसीयू स्पेशलिस्ट।
2: मेरे ख्याल से जो भी मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा है ना सर, उसके लिए तो मतलब शुरुआत के दौर में था कि कुछ पता ही नहीं था ना इस बीमारी के बारे में। ये था कि भाई कोरोना हुआ और वो नहीं बचेगा, और शुरू में मेडिकल साइंस को भी नहीं पता था, ट्रायल एरर हिट एंड ट्रायल चल रहा था, भाई ये दे दो ये दे दो। तो हमें याद है कि जो हमारा फर्स्ट टाइम जो हमने एक अलग से इसको बनाया, भाई कोरोना केयर यूनिट रहेगा, यहाँ पे अलग से पेशेंट रहेंगे, तो वो बहुत स्केरी था, क्योंकि हमको खुद भी नहीं पता था कि हमारा क्या होगा। हमारा मरीज है बट दुनिया को कुछ पता नहीं था कि किस तरफ हम जा रहे हैं,
1: हम एक अननोन राक्षस से लड़ रहे हैं।
2: हाँ हाँ, और बहुत अच्छे से हम लोगों ने उसको किया, ऐसा नहीं, हम लोगों ने बहुत जान बचाई, बहुत सी नहीं बचे वो तो उस पर क्या कमेंट किया जाए, लेकिन हिंदुस्तान ने बहुत अच्छे से किया उसको, हम लोग उस समय को निकाल पाए।
1: आपके लिए इमोशनली ये कितना मुश्किल होता है कि आप एक ऐसे डिपार्टमेंट से जुड़े हैं मेडिकल के जहां जाने बच भी जाती हैं और चली भी जाती हैं।
2: हाँ,
1: तो किसी पेशेंट को खो देना इमोशनली कितना बड़ा झटका होता है आपके लिए और रोजमर्रा की जिंदगी में कितना भारी पड़ता है।
2: जो भी हम लोग हैं तो इंसान ही ना
1: जी,
2: वो पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट वो फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी। और उससे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है, किसी को सगा संबंधी आप तो स्थिति में आ जाए तो उससे बड़ा नुकसान तो कुछ भी नहीं होता ना। तो बहुत एक दो साल हमको वही लग जाता है सीखने में कि बात कैसे करनी है, बैड न्यूज कैसे आपको सामने वाले को बताना है, वो टच बनाए रखे हुए, मतलब आप मशीन से तो बात नहीं कर रहे हैं कि भाई ऐसा हो गया अब नहीं हो सकता। उसके लिए भी एक हमारे जो सीनियर्स डॉक्टर से, वो आपको कभी रूड नहीं होना है, भाई आप सामान नहीं बेच रहे ना यार, इंसान की जिंदगी का सवाल है, तो बात भी हमारी हो जाए, उनको हम अंधेरे में भी नहीं रखे, वो भी बताना एक जरूरी होता है कि भाई कुछ कुछ बीमारियां हैं जिनका कुछ इलाज नहीं है। वो न्यूज देना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, रोज का चैलेंज है सर वो।
1: जी जी,
2: कि कैसे आप उस चीज को रखें कि अभी है तो है, कुछ चीजें आप नहीं बदल सकते
1: जी,
2: वो बताना तो होता ही है।
1: बिल्कुल, मैं समझ सकता हूं। अब बदलते वक्त के साथ भारत में जो आईसीयू फैसिलिटीज हैं उनमें किस तरह का बदलाव आया है? जब आप पढ़कर निकले थे तब से अब तक भी बहुत बीत गया,
2: आसमान जमीन का फर्क हो गया सर। और इसलिए मैं डॉक्टर में सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, कभी इग्नोर ना करें, सही बीमारी सही समय पर पकड़ आ गई तो मेडिकल साइंस हमारा इतना तरक्की कर गया है कि आप हर बीमारी में कम से कम एक लाइफ स्टाइल तो आपको अच्छी हम दे ही सकते हैं, भले वो कैंसर का ही मरीज क्यों ना हो। जो जानलेवा बीमारियां हैं, और आजकल खासकर आप देख रहे हैं हार्ट अटैक, अचानक डांस कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कभी कभी ये रहता है कि भाई जांच क्यों कर रहे हैं आप, दोनों चीजें हैं मैं मानता हूं कि भाई ओवर इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहे हैं, बट आप अगर हमारी तरफ बैठ के देखेंगे ना तो हमारे दिमाग में रहता है यार ये मेरे पास होके जा रहा है, कुछ बच ना जाए यार, यंग है, फिट है, एज अ डॉक्टर
1: कोई कमी ना रह जाए,
2: हाँ कल को बाद में आप सोचते हैं यार इसका ईसीजी कर लेते भाई, छोटी सी जांच। अक्सर आप देखते होंगे चेस्ट पेन 90% एसिडिटी है, हमारे हिंदुस्तान में तो हर चीज एसिडिटी रहती है
1: जी।
2: हाँ वो सर बड़ा पाव खा लिया था
1: जी,
2: मैं भी मानता हूं, लेकिन यार वो थोड़ा बेसिक तो चाहिए हमको कि ये चेस्ट पेन है वो एसिडिटी का है या कार्डियक है, ये जो हाथ पांव में कमजोरी है ये स्ट्रोक है या आपके नहीं सोने की वजह से है या ना खाने की वजह से, ये पहचानने के लिए जांच तो जरूरी है, बेसिक ये अवेयरनेस थोड़ा हमको आम पब्लिक तक भी फैलानी है, मतलब तो आपकी पहुंच गांव गांव कोने कोने में है,
1: तो ये पूरी दुनिया में।
2: हाँ हाँ, तो बहुत अच्छा माध्यम है ये कि बेसिक करवा लो यार, बेसिक जांच। और आजकल तो स्वास्थ्य केंद्र में भी हमारे भारत सरकार की तरफ से तो हर चीजें हैं कि आप बेसिक स्क्रीनिंग हो जाती है, कभी भी कमजोरी लग रही है 4-5 दिन ठीक है, उसके बाद लग रही है तो उसको इग्नोर मत कीजिए, छोटी सी जांच कर लीजिए। हम भी यही चाहते हैं कि वो जांच नॉर्मल हो, हम भी यही चाहते हैं, लेकिन बिना उसके ये थोड़ा है अभी, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, अवेयरनेस आ रही है बट अभी भी बहुत जरूरत है इसमें, खासकर जो इस तरह की जो हार्ट की बीमारी है, कैंसर है, ये बहुत अर्ली स्टेज में आ गया तो हम लगभग लगभग पूरा ही कंट्रोल कर सकते हैं।
1: आपने एक बहुत बड़ा और जरूरी मुद्दा उठाया कि हमको शरीर के संकेतों को पहचानना और पढ़ना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। गंभीर बीमारियों में वो कौन से संकेत हैं जो शुरुआती संकेत हो सकते हैं जिन्हें हम अपनी लाइफस्टाइल से जोड़ के इग्नोर करते हैं, इस बारे में थोड़ा तफसील से
2: बताइए। बहुत अच्छा सवाल पूछा सर आपने। देखिए नेचर ना आपको साइन सिम्टम सब देता है, नेचर किसी के साथ ऐसा बेईमानी नहीं करता है, हम लोग इग्नोर कर देते हैं वो अलग बात है। कोई भी अगर 6-7 दिन मान लीजिए आप थकान लग रही है तो 6-7 दिन, 7 का फिगर रखिए, 7 डेज का एक याद रखना बड़ा मुश्किल हो रहा हो, तो इस तरह जितनी क्रॉनिक बीमारियां हैं कि भाई कमजोरी लग रही है, कफ हो रहा है, खांसी हो रही है, वजन कम लग रहा है, नींद नहीं आ रही है, शहर में तो ठीक है दिल्ली मुंबई में है तो आप हॉस्पिटल्स में आप तुरंत, लेकिन छोटे जगह पे भी है ना, तो आसपास आजकल स्वास्थ्य केंद्र है वहां जाके डॉक्टर को बताइए जरूर। ये तो नॉर्मल जो सिम्टम है भाई, नींद नहीं आ रही है यार, भूख नहीं लग रही है, हो सकता है नॉर्मल ही होगा, लेकिन कभी कभी वो बहुत बड़ी बीमारी का संकेत भी रहता है। और कुछ चीजें जिसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी है, जितनी जल्दी हो उतने जल्दी डॉक्टर को संपर्क करना है, वो भी मैं, जैसे आपको चेस्ट पेन हो रहा है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रहा है, सिर्फ चेस्ट डिस्कम्फर्ट नहीं, आपके जॉज में पेन हो रहा है, आपके ईयर में पेन हो रहा है और आपको लग रहा है हेडेक हो रहा है और आपको लग रहा है थोड़ा सा ये नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। और आजकल खासकर स्ट्रोक में थोड़ा भी कहीं भी आपको कमजोरी, देखिए एक जनरल कमजोरी होना एक अलग बात है, लेकिन आपको किसी अगर विटामिन की कमी है तो सिर्फ दाएं हाथ में कमजोरी नहीं होगी, सिर्फ आपका बाएं उंगली में ऐसा कोई सेंसेशन जा रहा है तो विटामिन की कमी है, सिर्फ वहां नहीं होगा, ये स्ट्रोक का अर्ली साइन हो सकता है।
1: यानी एबनॉर्मेलिटीज पर ध्यान देना।
2: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इग्नोर नहीं करना किसी भी चीज को ना, हर चीज हम सिर्फ शरीर को ही इग्नोर करते हैं, बाकी दीवार से कहीं पानी टपक रहा है तो अरे यार पानी क्यों गिर रहा है, गाड़ी में हवा कम है, हवा का कम है, मोबाइल का ये स्क्रीन क्यों, लेकिन जिस शरीर के

0: सहारे हम सारी जिंदगी निकालते हैं ना, थोड़ा दिखाई ठीक है वो आंखों में लगता है चश्मा, वो इग्नोर करते हैं हम।
1: जो जरूरी बातें
0: हाँ
1: उनको
0: वो
1: इग्नोर
0: इग्नोर
1: करते हैं
0: करते हैं।
1: जी।
0: दांत में दर्द ठीक है यार, पर कभी कभी वो दांत दर्द हार्ट या कार्डियक का भी तरफ आप लेके जा सकता है, बट हम लोग थोड़े इंडियन लोग हैं ना, वो खाने पे डाल देते हैं। ये गलत नहीं है, होता है ऐसा नहीं, 60-70% वैसे ही रहता है, बट हाँ ये साइन है जो कि आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि यार ये पूछने में क्या जाता है। आजकल तो इतने सुविधाएं हैं, व्हाट्सएप है, हर आदमी कहीं ना कहीं से जुड़ा है, तो आप जो भी मेडिकल से जुड़े लोग हैं उनसे आप डिस्कस तो कर सकते हैं, वो आपको गाइड तो कर देंगे, है ना।
1: डॉक्टर साहब, ये बहुत जरूरी मुद्दे पर बातें हुई और सेहतनामा कार्यक्रम का एक बहुत जरूरी हिस्सा होता है गाने, तो यहां एक गाने का ब्रेक लिया जाए और आपकी पसंद का पहला गाना सुनवाया जाए।
0: हाँ ये जरूरी है, ये डॉक्टर लोग के लिए भी जरूरी है और मरीजों के लिए भी जरूरी है।
1: जी
0: तो किशोरदा का एक गाना जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये
1: जी
0: जीवन है इस जीवन का बहुत
1: देखिए,
0: बेहतरीन।
1: मुझे तो ये पता है कि आप गुनगुनाते हैं, तो ऐसे तो नहीं बच के जाइएगा
0: थोड़ा सा गुनगुना देते हैं।
1: जी।

0: संदीप, बातें हो रही हैं इंटेंसिव केयर की। मैं ये जानना चाहता हूं कि एक आईसीयू स्पेशलिस्ट की दिनचर्या क्या होती है, आप किस तरह से क्या काम करते हैं?
1: इसमें थोड़ा हमारा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, लेकिन ठीक है, आप डॉक्टर बने हैं
0: जी,
1: आप आर्मी हैं, आप डॉक्टर हैं, आप पुलिस वाले हैं, तो थोड़ा तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। रात की नींद जरूरी है।

0: है, लेकिन एक कॉल अगर किसी मरीज का आ रहा है तो आप उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं
1: तो किसी भी वक्त
0: किसी भी
1: मुस्तैदी
0: वक्त।
1: से जाना पड़ सकता
0: हाँ
1: है।
0: कुछ प्रोफेशन है ऐसे, डॉक्टर हुआ, आर्मी वैन हुए, पुलिस वाले हमारे हुए, ये इनका समय का क्या ही करेंगे सर,
1: जी जी बिल्कुल
0: बाकी लोग चैन से सोएं तो कोई तो जगेगा।
1: बिल्कुल
0: बट हाँ फिर भी हम डॉक्टर हैं हम लोग, तो हमें पता होता है कि उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो नींद कहाँ कैसे पूरी कर सकते हैं। और जैसे हर आदमी को चाहिए अपने दिनचर्या में थोड़ा योगा, थोड़ा एक्सरसाइज, खान पान का ध्यान रखना, सही वक्त पे सोना, सही वक्त पे उठना। और आजकल सबसे बड़ा ना फैक्टर हो गया है स्ट्रेस सर,
1: जी।
0: ये आप जब मेडिकल की किताबें पढ़ेंगे ना तो हर बीमारी के प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर में कहीं ना कहीं स्ट्रेस लिखा रहता है।
1: जी
0: दिल की बीमारी हो, वो दिमाग की बीमारी हो,
1: थायराइड हो,
0: थायराइड हो, इवन कैंसर, कोई भी स्ट्रेस में है उसको कोई भी बीमारी होने की संभावना ज्यादा है, ये आप मान के रखिए। और हर को ऊपर वाला कुछ ना कुछ देता है, कोई म्यूजिक है, कोई पेंटिंग करता है, कोई गार्डनिंग, कुछ ना कुछ एक शौक रखिए और अपने दिनचर्या में से 15 मिनट 20 मिनट निकालिए उस चीज के लिए, कम से कम डिस्कनेक्ट होइए ये स्ट्रेस से,
1: जी
0: वो बहुत जरूरी है सर। मेरे ख्याल से इंटेंसिव केयर यूनिट तक बात ही ना आए यार, बाहरी केयर कर लेते हैं।
1: जी, मतलब जीवन में एक शांत मन और एक स्वस्थ तन के लिए बहुत जरूरी है कि
0: बहुत
1: हम
0: बहुत
1: टेंशन से दूर रहें,
0: बिल्कुल
1: हम
0: बिल्कुल,
1: दबावों से दूर रहें।
0: वो जो WHO की डेफिनेशन आती है ना हेल्थ की,
1: जी
0: उसमें शारीरिक के साथ मानसिक स्वास्थ्य पे भी बहुत ध्यान दिया जाता है।
1: जी जी
0: आप स्ट्रेस में हैं तो आप कुछ भी एंजॉय थोड़ी ना कर पाइएगा,
1: बिल्कुल
0: आपका हेडेक हो रहा है तो आप कितनी भी अच्छी पिक्चर हो, कितने भी अच्छे गाने, आप एंजॉय तो नहीं कर सकते ना। किसी भी चीज को एंजॉय करने के लिए आपका स्वस्थ होना, किसी भी चीज को एंजॉय, पैसा भी है तो किस काम का, जो आप हमको ही देने के लिए रखे हैं, मतलब नहीं है ना। आप अपना
1: बिल्कुल
0: एज अ डॉक्टर तो सबको ये एडवाइस है कि अपने लाइफ स्टाइल पे, अपने दिनचर्या पे बहुत ध्यान रखें। और बहुत मुश्किल काम नहीं है सर,
1: जी जी
0: बहुत सिंपल ही, ऐसा कुछ आपको पहाड़ नहीं तोड़ना है। समय पे सोना है, समय पे खाना है, मानसिक तनाव से दूर रहने की कोशिश करना, दूर तो नहीं रह सकते, कोशिश कर सकते हैं, और ये बहुत जरूरी है सबके लिए, बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, बहुत सारी बातें अलग अलग मुद्दों पर हो रही हैं। और डॉक्टर संदीप, मैं ये चूंकि बारिश और बारिश के बाद के मौसम के ये दिन जहां पूरे देश में अलग अलग तरह के बुखार फैले हुए हैं जो
0: बिल्कुल
1: धीरे धीरे कई परिस्थितियों में गंभीर रूप ले
0: हाँ
1: लेते हैं और
0: बिल्कुल
1: आईसीयू तक मामला चला जाता
0: बराबर
1: है,
0: बराबर
1: इस मामले को जरा हमें समझाएं और इससे जुड़ी हुई सावधानियां बताएं।
0: हाँ, ये बहुत अच्छा, इस समय को देखते हुए बहुत रिलेवेंट है, क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा मलेरिया, डेंगू, जब भी बारिश होती है हमारे यहाँ तो बारिश का तो मौसम का एक अलग मजा है, लेकिन मजा तभी तक है जब आप स्वस्थ रहेंगे।
1: बिल्कुल
0: तो उसमें भी जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि किसी भी चीज को, किसी भी साइन सिम्टम को इग्नोर नहीं करना है, और खासकर इसमें बुखार, बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, उल्टी, थकावट, बारिश के सीजन में इन सब को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। सिर्फ काउंटर से दवा लेके नहीं खानी है सर, बुखार अगर 24-48 घंटे है तो एक बार जरूर संपर्क करें डॉक्टर से। इसमें स्वस्थ रहने के लिए सबसे अच्छा है कि आप हाइड्रेशन मेंटेन करें।
1: जिस पर आजकल ध्यान नहीं होता क्योंकि लोग पंखे की हवा में होते
0: नहीं नहीं सर,
1: हैं, एसी में होते हैं, पानी जो है वो मोस्ट इग्नोर्ड चीज है।
0: डेंगू का ही मरीज है तो उसका हम क्या करते हैं, उसको आराम कराते हैं, उसका हाइड्रेशन मेंटेन करते हैं, और सिम्टम जो है उसकी बुखार वगैरह की दवा दे देते हैं।
1: जी
0: आप देखिए ज्यादातर बीमारी को कुदरत ही ठीक करता, आप सहारा दीजिए। डॉक्टर का काम यही होता है कि हम सपोर्ट कर दें, बॉडी को सपोर्ट कर दें, और नेचर अपने आप आपको क्योर करता है
1: जी
0: जब हम।
1: एक समस्या जो बहुत बड़ी है कि बुखार आया या जुकाम हुआ तो ओवर द काउंटर मेडिसिन लोग ले लेते हैं, घर पर पड़ी हुई है
0: हाँ
1: तो
0: हाँ बराबर है,
1: पैरासीटामोल उठा के ले लिया,
0: सही बात
1: है
0: है,
1: ना? तो ये जो चीजें हैं इनसे सावधान कैसे करें लोगों को? इतने सालों से ये बात चली आ रही है पर ओवर द काउंटर दवाओं का इस्तेमाल रुकता नहीं है।
0: ये बहुत बड़ी समस्या है सर। खासकर एंटीबायोटिक्स जो हम लोग मिसयूज गए और उठा के ले आए। यहाँ तो बड़े शहरों में तो ठीक है, जल्दी मिलता नहीं है, बाकी जगह तो आप जाइए और लेके आ जाइए। एक बुखार आया तो एक टैबलेट मान लिया, ठीक है सुदूरवर्ती क्षेत्रों में है, दूर है, एक क्रोसिन ले लिया। लेकिन अगर बुखार 24 घंटे से ज्यादा का है तो एक छोटा सा ब्लड रिपोर्ट तो करना ही चाहिए आज के सिनेरियो में। कोई भी एक्सपर्ट इसीलिए बनाए भी जाते हैं, डॉक्टर्स इसीलिए हैं। और अभी तो बहुत सुविधाएं हैं सर, अभी तो ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत समय लगेगा, बहुत अभी तो हर जगह स्वास्थ्य केंद्र है,

0: बताऊं कि जब हम मेडिकल में पढ़ते थे 2006 तक की बात बताऊं, तो उस वक्त था कि 10 20 25 रुपए के एंटीबायोटिक में आदमी ठीक हो जाया करता था। आज की तारीख में सर जो रेजिस्टेंस जो हो रहा है, लोग बोलते हॉस्पिटल का बिल आ रहा है, अरे एक दिन का एंटीबायोटिक की दवा की कीमत ही हो जाती है 10,000। हायर एंटीबायोटिक्स इतने, क्योंकि ये वही अब हमने यूज कर करके, मिस यूज करके, यूज नहीं करके, हमने मिस यूज करके उसका इतना रेजिस्टेंस बढ़ा दिया है,
1: कि दवाएं असर ही नहीं करती।
0: असर ही नहीं कर रही है। आपको हायर एंटीबायोटिक्स पे जाना पड़ रहा है, वो महंगी है, और प्लस जान के लिए कितना खतरा है एंटीबायोटिक। हमको भी लिखने से पहले 2 बार सोचना पड़ता है, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन रहता नहीं है, जान बचाने के लिए लिखना पड़ता है। लेकिन ये बहुत गलत है और आने वाले जनरेशन के लिए बहुत ही डिजास्टरस हो सकता है अगर हम अभी नहीं सुधरे। ये अभी भी वक्त है सुधर जाए, नहीं तो सिर्फ 1929 में पेनिसिलिन, उसी वक्त पेनिसिलिन आई थी जिसने सारी सृष्टि को बचा लिया था, वो स्थिति फिर आने वाली है ऐसा लगता है। जिस तरह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ रहे हैं, वो ही स्थिति अगर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नहीं होते तो अभी तक सृष्टि खत्म हो चुकी होती। तो वो स्थिति हम फिर इंसान लोग पैदा ना करें।
1: ये रेजिस्टेंस क्यों होता है, एक आम आदमी को एक आम भाषा में जरा समझाइए।
0: देखिए रेजिस्टेंस का आपको वो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है और वही एंटीबायोटिक चल रही है तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसका इन्फेक्शन नहीं है, किसी और का इन्फेक्शन है, दवा कुछ और ले रहे हैं, तो धीरे धीरे बैक्टीरिया अपने आप को इस तरह से मजबूत कर लेता है कि सिर्फ नॉर्मल एंटीबायोटिक फिर उस पर काम ही नहीं करती है, उसको आप वक्त दे देते हैं। ये नॉर्मल भाषा में समझाने के लिए कि आपने जैसे अधमरा सांप ना छोड़ते नहीं है, बाद में आपको वो डसने वाला है, वो बैक्टीरिया का वही हाल है। आपने उसको हाफ ट्रीटमेंट पार्शियल ट्रीटमेंट करके छोड़ दिया, वो फिर बाद में जब रिबाउंड करता है ना, तो वो एक नॉर्मल, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ लोगों को कि बाबा खुद से एंटीबायोटिक थेरेपी तो बिल्कुल मत कीजिए, आप
1: जी,
0: किसी स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ के निरीक्षण नहीं कीजिए उसको।
1: तो इस बीच में जो बातें हुई उसका सार ये है कि किसी भी मेडिकल स्टोर पर, केमिस्ट पर जाकर एक तो ओवर द काउंटर दवाएं अपनी तरफ से इलाज ना करें,
0: ना करें, ना
1: और
0: करें,
1: दूसरा ये है कि बिना बात के एंटीबायोटिक आधी अधूरे कोर्स कर
0: बिल्कुल
1: लेने
0: नहीं,
1: से जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है वो हम सब इंसानों के लिए बहुत खतरनाक
0: बहुत
1: बनता चला
0: बहुत
1: जाता
0: बड़ा
1: है।
0: इंसानियत के लिए वॉर से ज्यादा खतरनाक ये बैक्टीरिया होने वाले हैं, जिस तरह से ये हमारे सामने आ रहे हैं चीजें।
1: जी
0: इंटेंसिव केयर यूनिट पे हम देखते हैं कि ये बैक्टीरिया है, तो सब पैन रेजिस्टेंस के, कोई एंटीबायोटिक काम ही नहीं कर रही, एक काम कर रही है सिर्फ। सपोज आने वाले समय वो भी नहीं काम किया
1: तो कुछ भी काम नहीं
0: तो क्या
1: करेगा।
0: करेंगे हम? ये एक बड़ी भयानक स्थिति होने वाली है अगर हम सही समय पे हम नहीं सुधरे तो।
1: जी डॉक्टर साहब, अब यहां एक गाने की जगह बनाते हैं,
0: हाँ हाँ बहुत
1: तो अब
0: सीरियस
1: आपकी
0: बात।
1: पसंद का अगला गाना कौन सा होगा?
0: एक कर्ज फिल्म का ओम शांति ओम।

0: डॉक्टर संदीप वर्मा से बातचीत हो रही है। ये जो आईसीयू के विशेषज्ञ हैं और अलग अलग मुद्दों पर बातें चल रही हैं। डॉक्टर साहब, वापस एक खतरनाक जो
1: हेलो। हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
3: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
4: उस स्थिति में फिर आपका दिमाग नहीं काम करता है
0: जी।
4: तो स्ट्रेसफुल कंडीशन होती, पैनिक से हम लोग नहीं मतलब बचते हैं कि भाई, क्योंकि अभी हमको, हमारे पास टारगेट सामने है कि भाई इसकी जान बचानी है। जितना हमने सीखा है, जितना हमने पढ़ा है, उसका सही उपयोग करके इस आदमी को इस कंडीशन से बाहर निकालना है। फिर हमारी एक विशेषज्ञ की टीम होती है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे किडनी का है तो किडनी के स्पेशलिस्ट को, ब्रेन का है तो ब्रेन के स्पेशलिस्ट को, और फिर हम एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार करते हैं कि स्टेबलाइज करते हुए इसकी वजह निकालनी, क्यों इस कंडीशन में पहुंचा। ट्रीट द कॉज हर का रहता है कि भाई इन्फेक्शन हुआ तो कहां से आ रहा है, यूरिन से आ रहा है, ब्लड से आ रहा है, लंग्स से आ रहा है, वो पता लगाना, फिर अकॉर्डिंग टू दैट उसको ट्रीट करना। यही बेसिकली इंटेंसिव केयर ही होता है कि आप

0: पहले तो उसको स्टेबलाइज किया, उसके ऑक्सीजन को, उसके ब्लड प्रेशर को, उसके हार्ट रेट को, फिर पता लगाया एंजियोग्राफी करके भाई किस जगह से क्लॉट है, उसको वहां से दूर किया। उसमें भी स्टेजिंग होती है, वो तो बात की चीजें हैं, बट रिवार्डिंग भी बहुत है सर। जब आपका मरीज अच्छा होता है तो उससे अच्छा आपको कुछ, फिर वो पैसा दे ना दे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो जब हंस के उसके परिवार वाले बोलते हैं ना सर आपने बचा लिया,
1: जी
0: तो
1: जी
0: उससे बड़ा रिवार्ड हम डॉक्टर्स के लिए कुछ नहीं होता है, और
1: बिल्कुल
0: बहुत अच्छा लगता है ऐसा। हमेशा स्ट्रेसफुल नहीं, जब वो रिजल्ट मिलता है ना उसका, तो वो बहुत अच्छा भी लगता है।
1: बिल्कुल, मैं समझ सकता हूं। आपने अलग अलग शहरों के छोटे बड़े हॉस्पिटल्स में काम किया है और एक बड़ा अनुभव आपके साथ है, तो अपने करियर की कुछ दिलचस्प घटनाएं हमारे साथ शेयर कीजिए जो इस वक्त आपको याद आ रही हो।
0: 26/11 हुआ था, बहुत दुखद हादसा था, और हम लोग उस वक्त बॉम्बे हॉस्पिटल में थे।
1: ओहो, बिल्कुल आप उसी
0: हाँ,
1: इलाके में थे।
0: उसी में थे। तो इंटेंसिव केयर में हमारे कई कमांडोज भी आए थे। तो एक कमांडो ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, उनके सीने में बहुत सी गोलियां लग गई थी। तो हमने उनसे जब छुट्टी हो रही थी तो हमने पूछा, सर कैसा रहा? कहा, सर उतना दर्द तो गोली से नहीं हो रहा जितना दर्द आप जब गोली निकाल रहे थे तब हो रहा था। हमने कहा, सर आप गोली से नहीं, कहे सर उसके लिए हम यूज टू हैं। जैसा आपने पूछा पैनिक की, का वो जब सामने से तब हमारा डर खत्म हो जाता है, हमको लगता है अभी इसको टारगेट है, ये हमारे देश का दुश्मन है, इसको खत्म करना है, तो उस वक्त हमको दर्द नहीं महसूस होता। यहाँ पे फिर हम नॉर्मल इंसान बन जाते हैं। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग घटना थी। वो मुझे लगा कि यार, हमने पूछा कि सर आप गोलियों से नहीं डरे, आप ये जरा से टांकों से डर रहे हैं? क्या डर नहीं रहे, लेकिन आपको बड़ा मजेदार एक वाक्य सुनाता हूँ।
1: जी,
0: मैं इंटेंसिव केयर में नाइट ड्यूटी में था और रवि साहब एडमिट थे। मुझे,
1: संगीतकार रवि की बात
0: हाँ
1: हो रही
0: हाँ
1: है।
0: जो फेमस मुझे डायरेक्टर,
1: जी,
0: तो रात का वक्त था और मैं उस वक्त अपने ट्रेनिंग में था। तो 1-2 बजे का वक्त था, तो मैं नोट्स डाल रहा था, और जैसे इंडियन लोग थोड़ा हमिंग करते हैं ना, ला ला ला ला ला ला ला, ऐसा करके मैं डाला। तो रवि साहब बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब ये गाना आपको बहुत पसंद है। कहा हाँ, बहुत अच्छा, क्या कंपोजिशन सर, पहले के कंपोजर क्या कंपोज करते थे, आपको पता है किसने कंपोज किया है? हमने कहा हाँ, एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे रवि साहब, हैं मतलब रवि साहब। आपने मेरा नाम पढ़ा क्या, बोर्ड पे नाम लिखा होता? हमने देखा, देखा हाँ आपका भी सेम नाम है। मैं सेम नहीं, मैं ही रवि साहब हूँ।
1: अरे गजब, क्या बात है।
0: तो बड़ा अच्छा लगा उनसे, और बहुत सी बातें बताई उन्होंने, बड़े बड़े, जो हम तो सिर्फ जो सपनों में सोचते थे। जब रफी साहब, लता जी, आशा जी, हमने पूछा जब ठीक हो गए तो कभी फंक्शन वगैरह में आते थे, तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। तो बड़े जिंदा दिल इंसान थे।
1: कमाल के इंसान, मेरा भी उनसे एक नाता रहा है और
0: अच्छा,
1: वो बहुत दिलचस्प किस्से सुनाया
0: हाँ
1: करते थे।
0: हाँ
1: उनके पास एक से बढ़ के एक किस्से थे और खुद गाने भी गाया करते थे।
0: अरे अरे, बहुत कमाल के
1: अभी
0: कलाकार
1: जब
0: थे।
1: गाने की बारी आएगी तो रवि जी का गाना सुना जाएगा। अभी अपनी बातों को आगे बढ़ाया जाए। आपने बताया कि एक कमांडो आए थे, जब कोई बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति में घायल व्यक्ति, एक्सीडेंट विक्टिम्स हों या बर्न विक्टिम्स हों, इस तरह के लोग आते हैं जो बहुत विभत्स स्थिति में भी होते हैं,
0: अपने
1: उनको
0: एक,
1: कैसे संभालते हैं?
0: मैं सफदरजंग के बंस यूनिट में था जब सरोजनी नगर बम कांड हुआ था।
1: ओ,
0: वो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा हादसा था वो।
1: जी
0: और उस वक्त हमको याद है कि हम ड्यूटी खत्म करके, हमारे 3 या 4 बजे के करीब हम निकल गए थे एक दिल्ली में। हम ड्यूटी खत्म करके अपना कनॉट प्लेस में थोड़ा घूमने घामने गए थे। फिर अचानक फोन बजने लगा, हमारे सर का फोन, तुम लोग कहाँ हो? तो उस वक्त हमको ये पता नहीं था कि ये बम विस्फोट हो चुका है। अंदर से कहा, हमारी ड्यूटी खत्म हो गई, कुछ तो ऐसा हुआ होगा तभी सर कॉल कर रहे हैं। मैं, क्या हो गया सर? बोले, जहां भी हो, जितने भी दोस्त हो, सब भाग के सफदरजंग आ जाओ, जो जहां भी है, जो सबको फोन करो कि बहुत डॉक्टर्स की जरूरत है इस वक्त। फिर समझ में आया कि भाई बहुत बड़ा बम कांड हुआ है। मेरे ख्याल से, मुझे भी याद नहीं है, बट 200-300 लोग की डेथ हुई थी। और उस वक्त जब बॉडी सर आ रही थी ना, तो मतलब हमारा एक दोस्त था, वो देख नहीं पाया, डॉक्टर हो के वो वहां पे फेंट कर गया।
1: ओहो,
0: और किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, मतलब वो इतना विभत्स, वो मेरे, मतलब आज भी जब मुझे याद करता हूं तो मेरे से रोंगटे खड़े आती है। और वो क्या सीन था, मतलब कैसे कैसे करके। और बट ये हमारे बड़ी अच्छी चीज है हिंदुस्तान में कि सब लोग, आसपास के सभी लोग, सभी हॉस्पिटल के बगल में एम्स था और मौलाना आजाद, जो भी डॉक्टर जब भी सुना, जिधर से आया वो गाड़ी मोड़ के आ गया। और उस वक्त वो सीन अभी भी नहीं उतरता, कभी भी हम याद करते हैं ना कि वो जो हादसा जो हुआ था, वो बम विस्फोट, वो अभी भी मेरे दिमाग से नहीं उतरता है।
1: ऐसे मुश्किल हालात में भी डॉक्टर जो है अपना संतुलन बना के और लोगों को बचाने का काम करते रहते हैं।
0: ड्यूटी है सर। लेकिन हाँ अच्छा लगता है। मैंने बताया जब हमारा मरीज अच्छा होके जाता है, जब कोई ठीक हो जाता है, तो बहुत रिवार्डिंग है सर, उससे बड़ा इनाम और क्या मिलेगा।
1: बिल्कुल, आपने ये

0: डॉक्टर संदीप वर्मा, अब मुंबई में आप अलग अलग हॉस्पिटल से जुड़े रहे हैं और आईसीयू यूनिट में लगातार काम कर रहे हैं। ये जो नया दौर है, इसने आईसीयू यूनिट को किस तरह से बदला है और आपके काम करने की प्रणाली को किस तरह से बदला है?
1: टेक्नोलॉजी का तो सर बहुत जबरदस्त फायदा हुआ है, बहुत बहुत फायदा हुआ है। अब काफी एडवांस हो गए हैं हम लोग, मतलब हर फील्ड में, रेडियोलॉजी हो, ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो, वेंटिलेटर्स की क्वालिटी हो, और मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है हर फील्ड में। इवन हम स्ट्रोक का हम वाकया आपको बताएं कि एक हम जब बॉम्बे हॉस्पिटल में थे, एक बैंक के कर्मचारी थे और वो कुछ साइन कर रहे थे और अचानक वो हाथ से पेन गिर गया उनके। तो उनको लगा कि शायद कुछ हुआ होगा, हर आदमी एक पहली बार में कैसे सोच लेगा कि वो स्ट्रोक है, लेकिन वो बॉम्बे हॉस्पिटल के पीछे ही था वो कार्यालय उनका। तुरंत वो लेके आया और उनका वो पूरा राइट साइड पूरा काम नहीं कर रहा था। लेकिन मैंने बताया कि जो वक्त की कीमत,
0: बिल्कुल,
1: तो सही समय पे वो आ गए सर और बिल्कुल 100% रिकवर हो गए। अगर वो सही समय पे नहीं आते सर तो वो हाथ उनका हमेशा के लिए चला जाता
0: जी।
1: तो ये है वक्त, फिल्म की बात की आपने, ये है वक्त पे सही समय पे सही जगह पहुंचने का ना, ये है।
0: ये जो क्रिटिकल टाइम है किसी भी गंभीर बीमारी के मरीज को बचाने के लिए, जो एक शुरू के 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का ये जो वक्त होता है, पूरे देश में आम जनता ये कार्यक्रम सुन रही है। एक इंटेंसिव केयर यूनिट से जुड़े हुए डॉक्टर के तौर पर आप हमें ये समझाएं कि किस तरह से बिना पैनिक हुए फौरन भागना चाहिए और किस तरह से मरीज की मदद करनी चाहिए।
1: आज के सिनेरियो में एक ब्रेन का और एक हार्ट का दो चीज में आपको बहुत, क्योंकि इसमें अगर वक्त आपने जाहिर कर दिया तो काफी देर हो जाता है। ब्रेन का तो मैंने जैसे जिक्र किया कि कोई भी कहीं भी आपको कमजोरी लग रही हो, बात करने में जुबान लड़खड़ा रही हो आपकी, स्लरिंग जिसको बोलते हैं, विजन में दिखने में कोई दिक्कत हो रही है, ये सब लक्षण को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें सर।
0: मरीज तो ठीक है, लेकिन जो मरीज के साथ
1: वाले, वो उनको
0: पास पड़ोस के लोग हैं।
1: हाँ हाँ, और ये जो हमारे यहाँ गुडविल में ही रहता है, जो अपनी पहले थेरेपी, फिर दादा दादी नानी की थेरेपी, फिर बगल वाले दुकानदार की थेरेपी, फिर फोन पे कहीं और से थेरेपी, इसमें जब हम 3.5-4 घंटे निकाल देते हैं जो क्रिटिकल टाइम होता है बचाने का, तो वो बिल्कुल ना करें सर।
0: तुरंत
1: जिस चीज के एक्सपर्ट के पास जाएं, इसके लिए बनाया गया। और अब मैं तो जैसे पहले भी बोला आपके इस इंटरव्यू में कि अब गवर्नमेंट ने स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुत बढ़ोतरी कर दी है, आप कहीं भी तुरंत संपर्क में आ सकते हैं। आजकल तो व्हाट्सएप है, मोबाइल है, कहीं आप डॉक्टर को फोन करें
0: बजाय इसके कि नुस्खे अपनाने,
1: हाँ,
0: की
1: नुस्खे
0: बजाय।
1: वो ठीक है, वो थोड़ा सा छिल गया, थोड़ा सा कट गया, थोड़ा सा पेट खराब हो गया, उसके लिए ठीक है, लेकिन जो इस तरह के वाइटल साइन है, चेस्ट पेन हो रहा है, पसीना हो रहा है,
0: झाग वाग निकल रहा है,
1: हाँ, वो तो मिर्गी या सीजर या जो भी लोग समझ, वो उसमें टाइम नहीं खराब करना है सर। और कभी आप डिजीज वाइज इमरजेंसी में कभी आप रखिएगा कि भाई ब्रेन के लिए अलग, तो मैं आपको डाटा दे दूंगा कि भाई इस वक्त ये मोटा मोटा समझाने के लिए, जैसे मैंने बोला कि भाई
0: मान लीजिए कि किसी मरीज को, किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हुआ है, तो अमूमन तो पता नहीं चलता ना कि ये हार्ट अटैक है, तो ये जो आजू बाजू के लोग हैं, जो उसके पास मौजूद लोग हैं, मान लीजिए कोई सड़क पर ही जा रहा है और ऐसी कोई परिस्थिति होती, तो कैसे पहचाने कि ये हार्ट अटैक हो सकता है और फौरन ले जाए?
1: देखिए, जो सबको पता है चेस्ट पेन, लेकिन सिर्फ चेस्ट पेन ही नहीं, जॉ पेन, ईयर पेन, पसीना आना, और खासकर डायबिटिक पेशेंट इस बात का ध्यान रखें, जो क्रॉनिक डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना सर, उनको वो पेन वो टिपिकल महसूस नहीं होता है। जो भी डायबिटीज से सफर कर रहा है ना, तो वो बीच बीच में अपनी जांच करते रहे, अगर उसको पसीना आ रहा है, डिस्कम्फर्ट लग रहा है, लेकिन उसको टिपिकल हो सकता है डायबिटीज पेशेंट को वो टिपिकल चेस्ट पेन ना हो जो कि नॉन डायबिटिक पेशेंट को होता है, तो वो थोड़ा एक ट्रिकी पॉइंट है जो भी डायबिटीज सफर कर रहे हैं लोग उनके लिए। लेकिन कोई भी ऐसी जो चेस्ट डिस्कम्फर्ट, चेस्ट पेन, जॉ पेन, पसीना आना, आंखों के सामने अंधेरा छाना, ये सब चीजों को कभी भी, टिंगलिंग हाथ से बाएं हाथ में, बट आप राइट साइड पेन को भी इग्नोर ना करें। हमको पता नहीं कि लेफ्ट का ही पेन हार्ट का है, वो कभी कभी बैक पेन भी हार्ट का होता है, और यूजुअली अगर आप टिपिकल देखेंगे तो पेशेंट पेन जो है एक जगह लोकलाइज नहीं होता, वो रेडिएट कर रहा होता है। ऐसा नहीं वो नहीं हो सकता, हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं रह गया अभी, अभी बीमारियां काफी अपना स्वरूप बदल के भी आ रही हैं, लेकिन मोटा मोटा है कि पेन अगर रेडिएट हो रहा है जॉ की तरफ पीछे की तरफ तो ये अलार्मिंग साइन है, हार्ट से जुड़ी ये अलार्मिंग साइन। उसमें और भी बहुत सी बीमारियां होती हैं
0: जी,
1: उसको कभी लेंगे, लेकिन इस तरह की चीज अलार्मिंग है, आपको तुरंत शीघ्र अतिशीघ्र एक चिकित्सक जो भी डॉक्टर है जो इससे जुड़ा हुआ है उससे संपर्क करना चाहिए।
0: स्ट्रोक से जुड़ी हुई क्या सिग्नल्स होते हैं?
1: जैसे कोई भी वीकनेस, कोई भी हाथ पर कहीं भी वीकनेस महसूस हो रही है, कमजोरी हो रही है, आप किसी चीज को पकड़ नहीं पा रहे हैं, आपका अगर चेहरे की सिमेट्री आपको जो है चेंज लग रही है, फेशियल डिविएशन, कोई एंगल माउथ
0: टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है,
1: टेढ़ा मोड़, आप जो आपने पहले जिस आदमी को देखा है और आपने नोटिस किया कि यार उसका चेहरे में कुछ तो विरूपता आ रही है, सिमेट्री कहीं भी जाती है ना सर,
0: तुरंत समझ जाना चाहिए। हाँ,
1: कहीं भी सिमेट्री जो नेचर के जो बनी हुई सिमेट्री है वो अगर डिस्टॉर्ट हो रही है, डिविएट हो रहा है, आंख ऊपर की तरफ जा रही है, आपको दिखने में दिक्कत हो रही है, ब्लरिंग हो रहा है, दो चीज दिख रही है, ये सब जो भी साइन है इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना है सर, शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचना है डॉक्टर।
0: इन दोनों परिस्थितियों में कितना वक्त होता है मरीज के पास, कितनी जल्दी पहुंचाना चाहिए?
1: देखिए जितनी जल्दी पहुंच जाए उतना अच्छा है, क्योंकि आप टाइम खराब करते हैं, फिर फोन किया, उससे बात किया, उसने बताया फलाने को हुआ था, तो ऐसे नहीं, नहीं बाबा आसपास पहले वहां पहुंच जाए, आप एक्सपर्ट के पास पहुंच जाइए, वो आपको गाइड करेगा ना, वो किसी भी रास्ता भूल जाते हैं, अगर पुलिस वाला कोई खड़ा है सिग्नल, वो सबसे अच्छा बताता है ना हमको, आप अनजान शहर में है और एक पुलिस वाले आप रास्ता भटक गए उससे पूछे, आम आदमी डॉक्टर तो नहीं होता है, आप साइन सिम्टम आपको जैसे ही लगे कि बाबा ये कुछ तो मेरे साथ एबनॉर्मल है, ऐसा पहले नहीं होता, उस पर मत डालिए कि मैं यार आज खाना भूल गया, आज नींद नहीं हुई, उस पर मत, ठीक है भगवान करे वही हो, मैं भी चाहता हूँ, डॉक्टर भी चाहते हैं भगवान ही नॉर्मल ही हो, लेकिन 99 में एक भी अब नॉर्मल है तो आपके लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ना सर।
0: बिल्कुल, बहुत ही जरूरी बातें डॉक्टर साहब आपने बताई हैं, और यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।
1: हाँ हाँ बिल्कुल,
0: तो कौन सा गाना होगा?
1: यहाँ पे हम रफी साहब का एक गाना सुनेंगे।
0: ठीक है,
1: आज मौसम बड़ा बेईमान।
0: क्या बात है, आप गुनगुनाते हैं तो इस बार फिर मैं चाहूंगा कि आप गुनगुनाएं।

0: डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें मेडिकल से जुड़ी हुई हुई। एक बहुत ही दिलचस्प बात जो मुझे पता है और वो ये है कि हनुमान अंश फिल्म के जो निर्देशक हैं वो आपके साथ मेडिकल कॉलेज में थे।
1: हाँ हाँ, डॉक्टर विशाल चतुर्वेदी हमारा दोस्त भी है, हमारा जूनियर भी है, और उसके लिए बहुत खुशी है। उस बच्चे ने बहुत ही मेहनत किया है और बहुत शानदार उसने ये फिल्म बनाई है। और लोग बोलते हैं कि सफलता सफलता उसने जो, आज हम उसकी सफलता देख रहे हैं। उसने जो 20 साल मेहनत की है उसका ईश्वर ने उसको रिवॉर्ड दिया है। और बातें मुलाकात होती है, बट आपके माध्यम से भी हम उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे। बहुत बेहतरीन काम किया है उसने।
0: क्या बात है।
1: और इंटरेस्टिंग बात है कि मुझे मुंबई लाने वाला विशाल ही था।
0: अच्छा अच्छा
1: मैं दिल्ली में था और मजा नहीं आ रहा था काम करने में, तो कहा चलो बस मुंबई चलते हैं। मैं भी गा फिर लेता हूँ, वो मजाक मतलब चलो आपको कुमार सानू बना दूंगा यार, आप चलो तो मैं तो कंपोजर हूँ ही।
0: अच्छा, अब वो तो म्यूजिक डायरेक्टर बनने आए थे।
1: हाँ जी, हाँ जी, जी। और वो गाने लिखता भी था, कॉलेज में भी बहुत अच्छा, हमारा एक छोटा सा म्यूजिकल बैंड टाइप का था।
0: अच्छा,
1: तो पहले वो हर जैसे यंग बच्चे के होते ना, रॉक स्टार बनना है बस, गिटार वगैरह बजाना, गाने लिखना। और वहां से वो क्रिएटिविटी तो थी, लिखता भी था, गाने भी बनाता था, स्केचिंग भी बनाता था। और हम सभी बहुत खुश हैं उसके लिए कि आज उसको वो मुकाम मिला है जिसको वो जो डिजर्व करता है।
0: क्या बात है। तो मतलब एक डॉक्टर साहब से बातचीत करते हुए दूसरे डॉक्टर साहब का जिक्र निकल आया
1: क्या?
0: क्या बात है। अच्छा, इंटेंसिव केयर यूनिट के बारे में हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं। एक चीज जो मुझे लगता है कि शायद इस पर बात करनी चाहिए, और वो आईसीयू में जो मरीज भर्ती होते हैं, जाहिर है कि परिवार जो है वो बहुत पैनिक होता है, बहुत चिंता में होता है, पर आईसीयू एक खास तरह के बर्ताव की उम्मीद करता है। वहां का एक खास अनुशासन और संयम होना चाहिए जो अमूमन देखने को नहीं मिलता है। आप इस बारे में क्या कहेंगे?
1: मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, दिक्कत क्या होती है कि वो जो जोन होता है उसको सबसे हमारा रहना है कि उसको इन्फेक्शन फ्री रखना चाहते हैं। अक्सर मैं आपका पॉइंट समझा कि रिलेटिव्स को मिलने नहीं दिया गया, बात सही है कि कोई स्ट्रेस में है अंदर भी और आईसीयू के बाहर भी, बट वो फॉर द टाइम बीइंग ना हमको उसको शांत रखना है, उसको स्ट्रेस फ्री रखना है, और सबसे भी ज्यादा हमको इन्फेक्शन फ्री रखना है।
0: बिल्कुल, सबसे बड़ी जिम्मेदारी,
1: सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो हम बोल भी देते हैं कि यार सेफ्टी फर्स्ट। अगर छोटा बच्चा आग छूना चाहे तो माँ उसको छूने नहीं देती है ना। वो बच्चा रोएगा, बट ठीक है, हमको पता है छू देगा तो उसका नुकसान है। वैसे ही कुछ हमारा रहता है कि भाई हम मानते हैं आपको बुरा लग रहा है कि आपको मिलने नहीं दे रहा हूं, लेकिन आप उस कंडीशन, हमारी प्रायोरिटी है वो मरीज की सेफ्टी है,
0: उसकी जान बचाना है,
1: उनकी जान बचाना है। आपको देखिए वो इमोशनल होगा या आप उसको देखिए इमोशनल होंगे, आपके सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, उसके लिए भी अच्छा नहीं है। और जो कुछ है हम आपको बीच बीच में अपडेट करते रहते हैं, बीच बीच में बताते रहते हैं क्या है क्या नहीं। बट हाँ, आपकी बात सही है कि हर आदमी देखना चाहता है कि भाई किस अवस्था में मेरा मरीज है, वो उसके भले के लिए। जैसे माँ अपने बच्चे को आग नहीं छूने देती ना,
0: लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि डॉक्टर्स अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं
1: और
0: आईसीयू में खास तरह का बर्ताव किया जाए। जैसा डॉक्टर्स कह रहे हैं वैसा मान के बाहर रुका जाए
1: और
0: इंतजार किया जाए।
1: डॉक्टर कम्युनिटी से मैं ये भी कहूंगा भाई थोड़ा पोलाइट रहते हैं, पोलाइट, कभी कभी दिखे हम इंसान ही है।
0: जी जी,
1: कभी कभी हो सकता है कि हमने जो है बहुत, जो उम्मीद थी उनसे जितने प्यार से बात करना चाहिए शायद मैंने बहुत प्रोफेशनल तरीके से बात किया, तो वो कभी कभी हो जाता है क्योंकि हम लोग भी बहुत स्ट्रेस में होते हैं, तो कभी कभी हो जाता है कि जितने प्यार से वो उम्मीद कर रहे थे कि डॉक्टर बोलेंगे, शायद उतने प्यार से नहीं बोला मैंने, लेकिन इंटेंशन कभी हमारा वो नहीं होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर संदीप वर्मा, बहुत दिलचस्प बातें हुई और आपने कुछ बहुत जरूरी मुद्दे हमारे श्रोताओं को समझाए आज की इस बातचीत में। विविध भारती के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया।
1: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हम सबको मौका देने के लिए, और एक डॉक्टर की तरफ से आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें,
0: शुक्रिया।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संदीप वर्मा से यूनुस खान की ये बातचीत। कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
3: मेरा साया साथ होगा।
4: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
5: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
4: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
6: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
4: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: जब जिद

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 5 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

बुझी शाम भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है, होके मायूस यूं ना आने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं विचारों के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं युवाणी, मैं हूँ कंचन रोशन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की बात से। दोस्तों, चारों तरफ जगमगाती अलग अलग तरीके की बत्तियाँ, बाजारों की रौनक और हवा में घुली अलग तरीके की महक, यानी कि त्योहारों का मौसम आ चुका है। हम सब युवाओं के लिए बाजारों की ये रौनक न सिर्फ सड़कों पर ही बल्कि हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर भी उतनी ही तेजी से चमक रही है। दोस्तों, हमारा इशारा है युवाओं में बढ़ती ई कॉमर्स की आदत को लेकर। जी हाँ, दिन ब दिन वो बढ़ते हुए ही दिखाई दे रही है। पहले त्योहारों का मतलब होता था माँ पिताजी के साथ हाथ पकड़कर बाजार जाना, घंटों दुकानों पर अलग अलग प्रकार की चीज़ों को इकट्ठा करना, भारी झोले को उठाकर घर लाना। लेकिन फ्रेंड्स, आज की हमारी हम सब की जो युवाओं की जो पीढ़ी है, उनके लिए त्योहारों की शॉपिंग का मतलब बदल चुका है। अब तो बस स्क्रॉल करो, कार्ट में डालो और स्वाइप करो और ऑर्डर कर दो। इस प्रकार की अलग अलग तरीके की जो हमारी आदतें बढ़ते हुए जा आ रही हैं, और हम उसी प्रकार की शॉपिंग को भी बढ़ावा दे रहे हैं। दोस्तों, महा बचत सेल, फेस्टिवल धमाका और 90% तक की छूट, इन भारी भरकम शब्दों के जाल में हम सब इस कदर उलझ चुके हैं कि ये अब सिर्फ ज़रूरत ही नहीं बल्कि एक ई कॉमर्स की लत के रूप में, यानी कि एडिक्शन के रूप में बदलता हुआ नज़र आ रहा है। रात के किसी भी समय हो, जब दुनिया सो रही होती है, हम सब हाथ में फ़ोन थामे फ्लैश सेल का इंतज़ार कर रहे होते हैं। इसे आजकल एक नया नाम भी मिला है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि कहीं मैं पीछे ना छूट जाऊं। दोस्तों, इसकी रील्स देखना, इन्फ्लुएंसर्स के इस प्रकार के अनबॉक्सिंग वीडियो देखना और बिना सोचे समझे बाय नाउ पर क्लिक कर देना, इस प्रकार की लत आम हो चुकी है और हर एक में हम आसानी से देख सकते हैं। निश्चित रूप से सिक्के का दूसरा पहलू भी है दोस्तों, जहां एक तरफ ई कॉमर्स ने हमारी ज़िंदगी को आसान बनाया है, घर बैठे दुनिया भर के ब्रांड्स हमारे दरवाजे पर ला दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ इस लत के कारण युवाओं की जेब खाली हो रही है और मानसिक तनाव भी बढ़ रहा है। बाय नाउ लेटर, अभी खरीदो बाद में चुकाओ जैसे विकल्पों ने हम सबको क्रेडिट कार्ड के जाल और कर्ज में धकेलना भी शुरू कर दिया है। त्योहारों की असली खुशी अपनों के साथ वक्त बिताने में है, ना कि हर दिन कुरियर वाले का दरवाज़ा खटखटाने में। बिल्कुल दोस्तों, इस प्रकार की जो हमारी संस्कृति है, उस पर भी अगर हम थोड़ा सा गौर डालेंगे तो निश्चित रूप से यही पाएंगे कि इस प्रकार की थीम हमारे यहाँ नहीं थी, जो आज हम अपनाने को आगे बढ़ रहे हैं। त्योहारी सीजन में हमारी निश्चित रूप से इस प्रकार की चर्चा का यही उद्देश्य है कि हमें दूसरे पहलू पर भी नज़र डालनी होगी और थोड़ा विचार करने की ज़रूरत है। शॉपिंग जरूर कीजिए, लेकिन अपनी ज़रूरत के लिए, किसी लत या दिखावे के लिए नहीं। स्मार्ट बनिए, सिर्फ अपने फ़ोन को स्मार्ट मत रहने दीजिए। अपनी जेब और मानसिक शांति का भी बजट पहले बनाइए, क्योंकि अगर वो बिगड़ता है तो निश्चित रूप से हम किसी प्रकार से खुश नहीं रह सकते। निश्चित रूप से इस प्रकार की थीम और हमारी ये चर्चा सबके लिए एक अलग दिशा और ये सोचने का विचार भी तैयार करेगी। इसी बात के साथ अब हम चलते हैं संगीत की दुनिया में, सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: दोस्तों बात करते हैं खेल जगत की। भारतीय पुरुष टीम घरेलू मैदान पर वेस्ट इंडीज के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज खेल रही है। भारत ने इंदौर में खेले गए तीसरे T20 मैच में वेस्ट इंडीज को 14 रनों से हराकर सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाई। इस मैच में सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने मात्र 30 गेंदों में 69 रनों की धुआंधार पारी खेली। साथ ही हरमनप्रीत कौर की कप्तानी पद से हटने के बाद स्मृति मंधाना को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की नई कप्तान भी नियुक्त

किया गया है। घरेलू क्रिकेट में राजस्थान और तमिलनाडु के बीच मैच में राजस्थान मजबूत स्थिति में है, वहीं रणजी मैचों में बेहतरीन प्रदर्शन कर खिलाड़ी भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की करने की दावेदारी उठा रहे हैं। साथ ही दोस्तों, हम एशियन गेम्स की बात करें तो जापान में आयोजित हुए एशियन गेम्स का समापन 4 अक्टूबर को हुआ। भारत ने इस बार कुल 85 पदक जीते, जो पहली बार निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा आंकड़ा है, और 2023 की 106 पदक से अगर हम तुलना करें तो बेहतरीन है। खेल मंत्रालय बेहतर प्रदर्शन न करने वाले और टॉप फंडिंग पाने वाले एथलीटों के प्रदर्शन की समीक्षा भी इसी रूप में करेंगे। साथ ही अगर हम टेनिस और बैडमिंटन की बात करें तो टेनिस में चीन की ओलंपिक चैम्पियन ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने फ्रेंच ओपन विजेता मीरा एंड्रीवा को 7-5, 6-4 से हराकर पहली बार चीन ओपन का खिताब जीतने वाली चीनी खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया है, किनवेन जेंग जिनका नाम है। साथ ही बैडमिंटन में भारत की अनमोल खरब ने हमवतन आकर्षी कश्यप को हराकर महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों, हमारी बातें आगे भी जारी रहेगी, पहले सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

0: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
1: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
2: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
3: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: सीपी ग्राम्स सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम,
5: ये है हर भारतीय नागरिक की शिकायत पर त्वरित कार्यवाही की गारंटी का पोर्टल। सीपी ग्राम्स एक ऐसी विश्वसनीय प्रणाली जो प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाती है
4: और सुशासन के हर स्तर पर अधिकारियों के जवाबदेही सुनिश्चित करती है। सीपी ग्राम्स, संवेदनशील, असरदार, जवाबदेह। आज ही लॉग इन करें सीपी ग्राम्स।
6: दोस्तों, हम बात कर रहे थे खेलों की। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जो है, ये प्रतियोगिता 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक लॉस वेगास यानी अमेरिका में आयोजित की जाएगी, जिसमें दुनिया भर के 600 से अधिक युवा पहलवान भाग ले रहे हैं। साथ ही दोस्तों, भारत के घरेलू खेलों में नई दिल्ली में 8 से 11 अक्टूबर तक 65वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का भी आयोजन किया गया। इसके साथ एशियन पैरा गेम्स भी इस महीने 16 से 23 अक्टूबर के बीच जापान में एशियन पैरा गेम्स का आयोजन भी होने जा रहा है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं खेलो इंडिया योजना की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ की संयुक्त वित्तीय परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना तथा राष्ट्रीय खेल गेम जो महासंघ है उनकी बढ़ी हुई सहायता को मंजूरी दी है। दोस्तों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य जमीनी स्तर पर खेल भागीदारी को प्रोत्साहित करने से लेकर उच्च स्तरीय जो प्रतिस्पर्धाएं हैं उनके लिए अवसरों का सृजन करना, जिससे कि खेल को युवा विकास, राष्ट्र निर्माण और भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के एक प्रभावी माध्यम के रूप में बनाया जा सके। इसके साथ ही ये कार्यक्रम खेलों को शिक्षा, फिटनेस, प्रौद्योगिकी और उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण के साथ एकीकृत करते हुए खेलो भारत नीति 2025 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य कर रहा है। ये कार्यक्रम प्रतिभा पहचान, वैज्ञानिक प्रशिक्षण, नियमित प्रतिस्पर्धाओं, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के साथ ही ओलंपिक तैयारियों को सम्मिलित करते हुए खिलाड़ियों के लिए एक संरचित विकास मार्ग की भी तैयारी कर रहा है। इसमें जमीनी स्तर की प्रतियोगिताओं के द्वारा खेलो इंडिया कार्यक्रम और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम तक प्रगति का प्रावधान भी शामिल है। दोस्तों, इसके तहत अलग अलग प्रकार के प्रयास सरकारी स्तर पर भी किए जा रहे हैं, उनका भी हम डिस्कशन करेंगे। पहले सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

दोस्तों, हम बात कर रहे थे खेलो इंडिया योजना की। ये देशव्यापी खेल पारिस्थितिकी तंत्र, राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र खेलो इंडिया उत्कृष्टता केंद्र, साथ ही भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्रों और मान्यता प्राप्त खेल अकादमियों, खेलो इंडिया केंद्रों, साथ ही सशस्त्र बलों की युवा खेल कंपनियों को सम्मिलित करते हुए विकसित किया जाना है। इसके साथ अगर हम बात करें नवीन खेलो इंडिया फीडर स्कूल और खेलो इंडिया उत्कृष्ट विद्यालय खेलों को शिक्षा प्रणाली के साथ एकीकृत करने की, तो वहीं इमर्जिंग खेलो इंडिया एथलीट श्रेणी के माध्यम से संरचित एथलीट पूल का लगभग 10 गुना तक विस्तार भी किया जाना प्रस्तावित है। दोस्तों, फिट इंडिया मूवमेंट का विस्तार सक्रिय और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने, महिलाओं की खेलों में भागीदारी बढ़ाने, सीमावर्ती और दूरस्थ क्षेत्रों तक

0: खेल सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने, मादक द्रव्यों के सेवन के विरुद्ध खेल आधारित पहलों को प्रोत्साहित करने के लिए भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यह पैरा एथलीटों स्वदेशी खेलों को सामुदायिक विकास को भी समर्थन प्रदान करेगा। इस प्रकार के कार्यक्रम जब ही सफल है जब हम इनको जमीनी स्तर पर स्वयं के लेवल पर भी क्रियान्वित करते हैं और कुछ अपने प्रयास भी एक आहुति के रूप में समर्पित करते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से गवर्नमेंट द्वारा प्रयास किए जाएंगे किए जा रहे हैं, लेकिन जब हम सब भागीदारी उसी रूप में लेते हैं तब वो सफल हो पाते हैं। दोस्तों इसी के साथ हम रुकते हैं ब्रेक के लिए।
1: अरे मीहा, तू इतनी रिलैक्स लग रही है आजकल, क्या सीक्रेट है यार?
2: सीक्रेट नहीं, स्मार्ट मूव है। मैंने लिया है LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान।
1: ओह रियली, क्या स्पेशल है इसमें?
2: देख, छोटी बचत से बड़ी सेविंग होती है और इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। इसमें गारंटीड एडिशंस मिलते हैं, एडिशनल सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलता है 3 अट्रैक्टिव ऑप्शंस के साथ, और तो और ऑटो कवर भी है। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये प्लान केवल महिलाओं के लिए है, एक्सक्लूसिव।
1: वाह, मुझे भी लेना है यार LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान।
2: तो अभी विजिट करें LIC.in या अपने नजदीकी LIC शाखा में संपर्क करें। LIC, हर पल आपके साथ।
3: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
4: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
3: हाँ।
4: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
3: हाँ।
4: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
3: हाँ? पता नहीं।
4: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
5: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
0: दोस्तों अब समय हो चला है कार्यक्रम की समाप्ति का। आपकी दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम महिला जगत।

महिला जगत सुनने वाली सभी सखियों को रेडियो सखी डॉक्टर सुनीता का प्यार भरा नमस्कार। सखियों लेकर हाजिर है आपका अपना मन भावन कार्यक्रम, और आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं चर्चा से। आज है विश्व आर्थराइटिस डे, और विश्व आर्थराइटिस दिवस जो मनाने के पीछे जो शुरुआत हुई वो 1996 में हुई, ARI आर्थराइटिस एंड रूमेटिज़म इंटरनेशनल द्वारा सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी। जागरूकता फैलाना इसका सबसे पहला उद्देश्य था, क्योंकि जो गठिया है वो एक ऐसा रोग है जिसकी जल्दी से पहचान नहीं हो पाती है, और कई बार हमें लगता है कि कमज़ोरी से हमारे जो है पेन हो रहा है और जो हड्डियां हैं उनमें हमें दिक्कत हो रही है, जबकि जो दिक्कत होती है वो गठिया की वजह से होती है। अगर शुरुआती दौर में गठिया का पता लग जाए तो इस रोग का जो इलाज है वो बहुत आसान हो जाता है। आंकड़े बताते हैं कि विश्व स्तर पर करोड़ों लोग गठिया से प्रभावित हैं। भारत में भी बुज़ुर्गों के साथ साथ कम उम्र के लोगों में भी यह जो समस्या है ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि जागरूकता भी नहीं है, और जो आज का जो है स्वस्थ खानपान जो है नहीं है। वजन नियंत्रण इसके लिए सबसे पहला कदम है।

तो हमें चाहिए कि हम हमारा संतुलित वजन बनाए रखें और जोड़ों पर अतिरिक्त दबाव कम रखें, नियमित व्यायाम करें। हल्का जो व्यायाम होता है वह जोड़ों को सक्रिय रखता है। आहार में विटामिन डी, कैल्शियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड को हमें शामिल करना चाहिए। और अगर ऐसी समस्या हमें दिखे, जोड़ों में जकड़न दिखे, तो हमें तुरंत इसका उपचार करना चाहिए। चर्चा रखेंगे जारी, आइए कराते हैं आपका मनोरंजन और सुनाते हैं प्यारा सा गीत।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई। मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें। कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
2: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
3: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
4: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सखियों, अब सुनते हैं भेंटवार्ता जिसका विषय है वायरल बुखार, कारण, लक्षण, बचाव और उपचार। इस विषय पर डॉक्टर अशोक झाड़वाल से भेंट कर रहे हैं मोहम्मद शरीफ छिंपा। आइए सुनते हैं।

0: सेहत है तो खुशियों का संसार होता है, स्वस्थ तन में ही सपनों का विस्तार होता है। श्रोताओं, सेहत इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। अगर शरीर स्वस्थ है तो जीवन में खुशियों के रंग है, अगर स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो दुनिया की तमाम दौलत भी फीकी लगने लगती है। आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं JLN राजकीय अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर अशोक जी झाड़वाल। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है और हमारे सुनने वालों की ओर से नमस्कार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आकाशवाणी सुनने वाले श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपके सामने आने का मौका मिला।
0: आज हम बात करेंगे वायरल बुखार, कारण, लक्षण, बचाव और उपचार विषय पर, साथ ही कुछ और बीमारियों पर भी चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, मौसम बदल रहा है जिससे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, वायरल संक्रमण जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। इनके शुरुआती लक्षणों को कैसे पहचाने और इनका क्या कारण है?
1: वायरल इन्फेक्शन जनरली टेम्परेचर चेंज होने की वजह से कॉमनली पेशेंट्स में मिलता है। बेसिकली वायरल इन्फेक्शन के लक्षण जुकाम, खांसी, सरदर्द, बदन दर्द, बुखार

0: वायरल इन्फेक्शन एक दूसरे से फैलता भी है, जैसे अपन पास पास बैठे हैं या फिर बार बार अपने हाथ और मुंह को छू रहे हैं, तो उस स्थिति में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं।
1: जी,
0: तो ज़्यादा चांसेस वायरल के हैं, टेम्परेचर में बदलाव के कारण।
1: इसका कारण क्या है डॉक्टर साहब?
0: वायरल में कॉमनली फ्लू जो बोलते हैं अपन, इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन मिलता है, उसकी वजह से मतलब वायरल इन्फेक्शन होता है। इन्फ्लुएंजा के अलावा और भी वायरसेस हैं जो अपनी बॉडी में इन्फेक्शन करते हैं, मौसम बदलाव की वजह से कॉमनली मिलता है।
1: डेंगू मलेरिया और जो होते हैं उसमें मौसमी वायरल संक्रमण के क्या क्या लक्षण होते हैं, कौन कौन से होते हैं?
0: डेंगू बेसिकली वायरल इन्फेक्शन है, मच्छर की वजह से ये फैलता है, प्लेटलेट्स स्पेशली इसमें कम होती है। लक्षण इसमें बुखार, बदन दर्द, सर दर्द और बॉडी एक, ये कॉमनली पेशेंट्स में मिलते हैं। जबकि मलेरिया भी मच्छर से फैलता है,
1: जी
0: ये मादा एनाफ्लीज मच्छर से फैलता है, और इसके भी लक्षण बुखार जो कि सर्दी लग के आता है, काफी तेज बुखार रहता है, और इसमें कई कई बार पेशेंट काफी सीरियस भी हो जाते हैं। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, आम नागरिकों को इन वायरल संक्रमण से कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए?
0: मेरा कहना यही है, अपने बॉडी में हाइड्रेशन अच्छा रखो और डाइट प्रॉपर लो। उसके अलावा अपने मौसम में बदलाव जब भी हो, जैसे मच्छर अगर मौसम बदलाव की वजह से अगर पनप रहे हैं तो उनको पनपने मत दो। जैसे आसपास अपने गंदगी हो
1: जी,
0: या स्वच्छ पानी भी कहीं इकट्ठा रहता है तो उसमें मच्छर पनपते हैं, तो उसको भी इकट्ठा नहीं रहने दें। कूलर में जैसे पानी इकट्ठा हो रखा है या गमले में कहीं है, तो उस स्थिति में अपन को क्या है कि उनको साफ सफाई रखनी है ताकि मच्छर पनपे नहीं और अपने बीमारी ना हो। ऐसे ही वायरल में पर्टिकुलर के भी अपने मौसम चेंज हो रहा है तो अपने आप पे ध्यान दें, हाइड्रेशन अच्छा रखें, और भीड़ भाड़ इलाकों में जाना पड़े तो उस स्थिति में थोड़ी दूरी बना के रखें।
1: जी, डॉक्टर साहब एक ज़रूरी बात है, कई लोग बुखार या दर्द होने पर बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयाँ और एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देते हैं, ये कितना नुकसानदायक हो सकता है?
0: ये चिंताजनक विषय है आने वाले टाइम के लिए। अभी अपन को नहीं पता चल रहा है, लेकिन आगे आने वाले टाइम के लिए बहुत बड़ी कठिन चीज है, क्योंकि अभी जैसे बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना एडवाइस के अपन एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं विदाउट कोई डॉक्टर को दिखाए हुए, तो उस स्थिति में क्या रहेगा कि आने वाले टाइम में इन एंटीबायोटिक्स का रेजिस्टेंस हो जाएगा,
1: जी,
0: तो सुपर बग बनेंगे। जो सुपर बग वो चीज है जो मतलब एंटीबायोटिक का बिल्कुल भी उन पे इफेक्ट नहीं आएगा। तो इससे अगर अपन को बचना है, अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखना है, तो जो भी क्वालिफाइड, जो भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनसे अगर अपन सलाह लेंगे और ट्रीटमेंट लेंगे तो ये अपने सेहत के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा।
1: स्वच्छ पेयजल और साफ सफाई का भी हमारे स्वास्थ्य पर कितना जो है प्रभाव पड़ता है, दूषित पानी से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं?
0: बिल्कुल, स्वच्छता जरूरी है। अपने प्रधानमंत्री जी भी स्वच्छता पे मतलब अभियान चलाया उन्होंने, और वो अपनी हेल्थ के लिए काफी अच्छा है। स्वच्छ जितना रहेंगे अपने पहनावे में, अपने आसपास में जो भी इलाके हैं, अपने घर में, तो इससे गंदगी कम होगी, इवन इन्फेक्शन का खतरा कम से कम रहेगा।
1: वायरल बुखार से बचाव और उपचार के बारे में बताएं हमारे सुनने वालों को डॉक्टर साहब।
0: वायरल का जो बचाव का तरीका है, जैसे मैंने पहले भी बोला है, जब भी टेम्परेचर या क्लाइमेट चेंज हो तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने कपड़े पहनो, अच्छे से शरीर में अपने पानी की कमी ना हो, हाइड्रेशन अच्छा रखो, और जब भी कोई क्राउड वाला एरिया हो या भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाना पड़े उसी स्थिति में अपने प्रॉपर दूरी बना के रखें, और साफ सफाई और खाने पीने में डाइट का भी ख्याल रखें, तो मतलब बचा जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर की, जिसे अक्सर साइलेंट किलर भी कहा जाता है। इनके लक्षणों को जो है बिना इसके लक्षण के भी शरीर को ये कैसे प्रभावित कर सकता है?
0: ब्लड बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर अपने शरीर के लिए काफी नुकसानदेह है। अगर पेशेंट लक्षण नहीं है और अपन को पता चले कि भी इनके बीपी बढ़ा हुआ है या
1: जी
0: नहीं,
1: जी
0: तो उस स्थिति में जनरली पेशेंट्स में इग्नोरिंग जो सिम्टम्स होते हैं, लाइट हेडेक, बॉडी एक, ये पेशेंट्स क्या डायग्नोस नहीं कर पाता, खुद को पता नहीं चलता। लेकिन जब डॉक्टर्स की कंसल्टेंसी अपन लेते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, कई पेशेंट लेट किडनी डिजीज में डायग्नोस होते हैं कि उनके ब्लड प्रेशर है,
1: जी,
0: क्रिएटिनिन लेवल काफी हायर साइड चला जाता है, फिर डायग्नोस होता है। तो लॉन्ग रन में बढ़ा हुआ बीपी काफी नुकसानदेह है, गुर्दों के लिए स्पेशली हार्ट की मोटाई बढ़ा देता है, और बढ़ा हुआ बीपी लकवे के चांस भी बढ़ा देता है।
1: एक सामान्य व्यक्ति को कितने अंतराल पर अपना बीपी जांच करवाना चाहिए? क्या कम उम्र के लोगों को भी इसकी जांच करवानी चाहिए?
0: बिल्कुल, जरूर करवानी चाहिए। आजकल का जो स्ट्रेस का दौर है, खान पान है और अपनी जो लाइफ स्टाइल है सिडेंट्री, जिसमें काम

0: कम है और मतलब बैठा रहना का काम ज्यादा है, इवन सिडेंट्री, बहुत ज्यादा सिडेंट्री, तो उस स्थिति में बीपी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो कम उम्र में भी अपन चेक करवा सकते हैं, इवन एटलीस्ट 40 के आसपास आपको रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। हर 6 महीने पे टेस्ट वगैरह, बीपी हर मंथ पे आप चेक करवा सकते हैं। और अगर हाई रिस्क है, अपने फैमिली में किसी को बीपी है या खुद को ऐसे कुछ सिम्टम्स लग रहे हों जैसे
1: जी जी
0: हेडेक, वर्टिगो या नेक पेन वगैरह, तो आप कंसल्ट करके रेगुलर बेसिस पे बीपी आपको चेक करवाना चाहिए।
1: हार्ट को स्वस्थ तंदुरुस्त रखने के लिए खान पान, व्यायाम और दिनचर्या में कौन से बदलाव सबसे ज्यादा उपयोगी हैं?
0: मैं बेसिकली जो मैं पहले भी बात कर रहा था, लाइफ स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। रेगुलर एक्सरसाइज, एटलीस्ट 30 मिनट अपन को पैदल चलना चाहिए। उसके अलावा स्ट्रेस जो पार्ट है उसको अपन को कम रखना है। नींद अपनी पूरी होनी चाहिए, एटलीस्ट 7 से 8 घंटे।
1: जी,
0: उसके अलावा अपन खान पान में ध्यान रख सकते हैं। इसमें डेस डाइट होती है जो लो कोलेस्ट्रोल वाली, कार्बोहाइड्रेट कम, प्रोटीन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए और सैलेड, जो फाइबर डाइट है वो अच्छी होनी चाहिए।
1: आज इंटरनेट और सोशल मीडिया पर स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं, और आम आदमी कैसे पहचाने कि कौन सी जानकारी भरोसेमंद है? आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब?
0: इसमें मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी ऑथेंटिकेट साइट हो जिस पे आप जाके ये चीज देख सकते हैं, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट की या फिर अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें जो गाइडलाइंस मिलेगी आपको, या जैसे पर्टिकुलर कोई इंस्टीट्यूट की बात करें, एम्स की या फिर अपने राजस्थान गवर्नमेंट के जैसे कॉलेजेस हैं उनकी,
1: जी,
0: तो जो भी ऑथेंटिकेट साइट होगी उस पे आप विजिट करेंगे तो उसमें अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी।
1: अच्छा, ये तो बातें हो गई। अब हमने जो शुरू में बात की थी वायरल के बुखार के बारे में, बच्चों में भी ये ज़्यादा सिम्टम देखने को मिलेंगे, तो उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, बच्चों को, गार्जियंस को, माता-पिता को?
0: स्पेशली बच्चे स्कूलिंग के दौरान और खेल कूदने में जब भी गार्डन में या फिर उनकी गैदरिंग्स होती है, उस दौरान बच्चों में इन्फेक्शन फैलने के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं।
1: जी
0: जब
1: हाँ,
0: मौसम में बदलाव, पर्टिकुलर टेम्परेचर चेंज होता है तब,
1: बिल्कुल
0: तो उस दौरान अपन बच्चों का, जैसे मैं पहले भी बता रहा था, हाइड्रेशन इम्पोर्टेंस रखता है बॉडी में, और साफ सफाई, और उसके अलावा टाइम से खाना, और बच्चों की जो डेली हैबिट्स है स्नीजिंग की, जैसे खांसते हैं, तो ये चीजें बच्चों को बतानी होती है कि भाई अपन खांसे तो एटलीस्ट मुंह के रुमाल या अपना हाथ रखें।
1: जी,
0: जो अभी तक मतलब अपने इंडिया में काफी मतलब ये चीज फेस करनी पड़ती है, इवन पेशेंट आता है वो स्नीज करता है लेकिन उनको ये बेसिक स्नीजिंग के और कफिंग के एटिकेट्स नहीं पता, क्योंकि अपनी नेचर में
1: बिल्कुल
0: नहीं ये
1: सही
0: चीज।
1: बात है। चलते चलते नागौर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य संबंधी आप क्या सलाह देना चाहेंगे डॉक्टर अशोक झाड़वाल साहब?
0: बिल्कुल, मैं सभी नागौर वासियों को यही कहना चाहूंगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, हेल्थ सबसे प्रायोरिटी पे रखें। अगर अपन स्वस्थ हैं तो हर चीज का आनंद ले सकते हैं, अगर स्वस्थ नहीं हैं तो कोई भी चीज अपने सुख मिल जाए वो भी अपने लिए अच्छे नहीं है, तो
1: बिल्कुल
0: स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है।
1: डॉक्टर अशोक झाड़वाल साहब, आज आपने स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। उम्मीद करते हैं हमारे श्रोता आपकी इस बातचीत से जरूर लाभान्वित होंगे। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, बीमारी से बचना है तो जागरूकता अपनाइए। सेहत अनमोल नेमत है, इसकी कद्र कीजिए। डॉक्टर साहब, एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: सखियों, अब रिलेशन मशीनों से रखें, इंसानों से हम करें बातचीत। आज का दौर है, एआई का दौर है, और आज मशीनों ने हर जगह ले ली है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इंसानों की तरह भावनाएं, हमदर्दी और सच्चा साथ रखें, और मशीनें ये चीज़ें नहीं दे सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम रिलेशन ज़्यादा मशीनों से ना रखें, मशीनें वहीं उपयोग में लाएं जहां ज़्यादा ज़रूरी हो। मशीनें सिर्फ निर्देशों पर ही चलती हैं, जबकि इंसान हमारी

खुशी में हंस सकता है और हमारे दुख में हमारा दुख बटा सकता है। मानसिक सुकून भी हमें इंसानों से बात करके ही मिलता है। तो आइए अब कराते हैं आपका मनोरंजन और सुनाते हैं एक और प्यारा सा गीत।

सखियों, नवरात्रे चल रहे हैं और रेडियो सखी डॉक्टर सुनीता आप सबको बधाई और शुभकामनाएं नवरात्रों की देने के साथ साथ ही जो घड़ी की सुइयां हैं वो कार्यक्रम समाप्ति के समय की ओर इशारा कर रही हैं। तो दीजिए इजाज़त, अगले कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला जगत। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं, एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बज रहे हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में आज दिल्ली संवाद 2026 को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत में युवाओं की संख्या अधिक है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और दृढ़ संकल्प उन्हें केवल भारत की विकास यात्रा का उत्तराधिकारी ही नहीं बल्कि इसका निर्माता भी बनाते हैं। युवा देश को अधिक समृद्ध भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की 16वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। इस बैठक का उद्देश्य साझा व्यापार और आर्थिक प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाना था। श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। नई दिल्ली में आज भारतीय सेना और भारतीय खाद्य निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत अब अपनी रक्षा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा देश में ही तैयार कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर में पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रतिबंध लगाने के बजाय जन जागरूकता और स्वैच्छिक भागीदारी का अधिक असर होगा। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि प्रतिबंधात्मक आदेशों को लागू करना जमीनी स्तर पर मुश्किल हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि न्यायालय धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा। पीठ ने पटाखों के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत बताई। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक

0: अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक से गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे बड़े वायदे किए हैं।
1: हमारे संविधान ने हर नागरिक को सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये उन लोगों की आवाज बनता है जो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते। आयोग शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना भी खुद कार्रवाई कर सकता है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और देश की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि चुनाव में हार के बाद कांग्रेस कभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तो कभी निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाती है। दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कल होने वाले ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम 2026 के मद्देनजर यातायात परामर्श जारी किया है। पुलिस ने बताया कि नई दिल्ली स्थित होटल ताज पैलेस में आयोजित होने वाले इस फोरम के कारण कल सवेरे 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजन स्थल के आसपास की प्रमुख सड़कों पर यातायात प्रतिबंधित और मार्ग परिवर्तन लागू रहेंगे। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष अमरीका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 103.7 MHz पर यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमिट चैनल। शाम के 6:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म आज का अर्जुन से, आवाजें लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की है। गीत अनजान का, संगीत बप्पी लाहिड़ी का।

इसी गीत के साथ हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यही संपन्न होता है। एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमे चैनल। शाम के 6:20 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं माटी के स्वर। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं बुद्धा राम खिमताणा और साथियों की आवाज़ में कुछ लोक संगीत। तो प्रस्तुत है ये पहला गीत।

0: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: आप सुन रहे हैं माटी के स्वर कार्यक्रम और इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं बुद्धाराम खिमताणा और साथियों की आवाज में लोक भजन।

0: प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।
1: अभी आप सुन रहे थे माटी के स्वर कार्यक्रम। इसमें आज आपने सुना बुद्धा राम खिमताणा को। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हो रहे हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद होगी जिले की चिट्ठी, तत्पश्चात आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। इन समाचारों को हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वार हर भारतीय नागरिक के लिए खुले हैं। प्रदेश में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता, राज्य सरकार मांग से अधिक आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के मौसम में बदलाव, 15 अक्टूबर तक कुछ स्थानों पर हल्की बरसात के आसार। और खेलो राजस्थान 2026 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण जारी, 1 दिसंबर से प्रतियोगिताएं प्रस्तावित।

0: समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक को गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं।
1: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पिटीशन, किसी भी, कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
0: दिल्ली पुलिस ने विरोध और धरना प्रदर्शन के लिए 3 नए स्थान निर्धारित किए हैं। इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का सीबीडी मैदान शामिल है। दिल्ली पुलिस आयुक्त की ओर से जारी आदेश के अनुसार जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने नागरिकों के विरोध प्रदर्शन और धरना आयोजित करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त वैकल्पिक स्थानों की पहचान के लिए एक समिति बनाई थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का फैसला लिया गया है। पुलिस ने बताया कि तीनों नए निर्धारित स्थलों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रियाएं SOP जारी की जाएंगी। राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अनधिकृत भीड़भाड़ को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर की सीमाओं, रेलवे स्टेशनों, बस टर्मिनल और अन्य संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस बीच कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन किया। उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर चुनावों की निष्पक्षता को लेकर भी चिंता जताई। वहीं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने आज नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU की छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी मणिपुर से कांग्रेस सांसद डॉक्टर अंगोमचा बिमोल अकोइजम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बीते कुछ सालों से रक्षा क्षेत्र को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसमें हथियारों और तकनीक से लेकर वर्दी, उपकरण तथा प्रशिक्षण तक सभी क्षेत्र शामिल हैं। रक्षा मंत्री आज नई दिल्ली में भारतीय सेना और भारतीय खाद्य निगम के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर समारोह में बोल रहे थे। श्री सिंह ने कहा कि भारत अब अपनी रक्षा जरूरतों का बड़ा हिस्सा देश में ही तैयार कर रहा है।
2: आज आर्मी और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक पार्टनरशिप MOU की साइनिंग भी और नेशनल सिक्योरिटी को इन्हांस करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। आज के युद्ध केवल फ्रंट लाइन पर नहीं जीते जाते, युद्ध के पीछे सप्लाई चेन की मजबूती, स्टोरेज की क्षमता, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और टाइमली रिप्लेसमेंट की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।
0: भाजपा के पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की पार्थिव देह पुलिस ने परिजनों को सौंप दी। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया। भरतपुर IG प्रीति चंद्रा ने बताया कि बीती रात जिले के वैर स्थित भोंडा गांव में ग्रामीणों ने खनन लीज विवाद को लेकर पूर्व विधायक पर हमला कर दिया था, जिसमें पूर्व विधायक और उनके अंगरक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। श्री भड़ाना को नाजुक हालत में जयपुर रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद इलाके में स्थिति तनावपूर्ण किंतु नियंत्रण में है। पुलिस ने 40 लोगों को चिन्हित किया है, जिनकी तलाश जारी है। वहीं कुछ संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि राज्य सरकार खरीफ सीजन में मांग से अधिक उर्वरकों की आपूर्ति कर रही है। रबी सीजन में भी किसानों को मांग के अनुसार DAP और यूरिया उपलब्ध करवाया जाएगा। कृषि मंत्री ने बताया कि DAP की 5,10,000 मीट्रिक टन मांग पर 5,44,995 मीट्रिक टन DAP उपलब्ध करवाया गया। इसी तरह यूरिया की 11 लाख मीट्रिक टन मांग के मुकाबले 17 लाख मीट्रिक टन से अधिक यूरिया की आपूर्ति की गई। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग 18 दिन के लिए डीएपी और 35 दिन के यूरिया का स्टॉक उपलब्ध है। कृषि मंत्री ने कहा कि उर्वरक वितरण में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जमाखोरी, कालाबाजारी और यूरिया के डायवर्जन में लगे विक्रेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। 128 फर्मों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं, वहीं 25 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। नीम लेपित यूरिया नीम के तेल से कोटेड यूरिया है, जिसे खास तौर से कृषि उर्वरक के रूप में उपयोग के लिए विकसित किया गया है। नीम की परत यूरिया के नाइट्रीकरण को धीमा कर देती है, जिससे मिट्टी में पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़ता है और भूजल प्रदूषण भी कम होता है। एक रिपोर्ट।
3: नीम कोटेड यूरिया किसान के हित में महत्वपूर्ण पहल साबित हुई है। इससे यूरिया के गलत इस्तेमाल और डायवर्जन पर रोक लगी है, साथ ही बिचौलियों पर भी लगाम लगी है। केंद्र सरकार ने सभी देशी निर्मित यूरिया पर 100% नीम कोटिंग अनिवार्य कर दी है। उर्वरक निर्माताओं को इससे जुड़ी लागत को संतुलित करने के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य यानी MRP पर अधिकतम 5% तक बढ़ोतरी की अनुमति दी गई है। नीम कोटेड यूरिया पारंपरिक यूरिया होती है, जिसे नीम के तेल से संसाधित किया जाता है। नीम का तेल नाइट्रिफिकेशन अवरोधक के रूप में काम करता है और मिट्टी में नाइट्रोजन के रिलीज को धीमा कर देता है। ये नाइट्रोजन पोषक तत्वों की हानि को कम करता है और उर्वरक के अधिक उपयोग को घटाता है। इससे किसान यूरिया की खपत कम कर सकते हैं। नीम कोटेड यूरिया को अपनाने से मिट्टी की सेहत में सुधार होता है। इससे फसल की पैदावार, यूरिया की आवश्यकता और अन्य कीटनाशक खर्चों में भी कमी से फसल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। न्यूज डेस्क से सलेहा गाजी।
0: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बांसवाड़ा कोर्ट परिसर में ट्रैप कार्रवाई करते हुए आज अदालत के रीडर और एक वाहन चालक को गिरफ्तार किया। इन पर परिवादी से 40,000 रुपए की रिश्वत राशि लेने का आरोप

0: आरोप है। एसीबी के अनुसार परिवादी को जमानत मिलने के बाद उसकी जमानत खारिज नहीं करवाने तथा अदालत में विचाराधीन प्रकरण में मदद करने के एवज में रिश्वत की ये मांग की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि रिश्वत रीडर के कहने पर वाहन चालक की मार्फत मांगी गई थी। पश्चिमी विक्षोभ के असर से बीते 24 घंटों में बीकानेर संभाग में कहीं कहीं गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज भी राज्य के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। कल से 15 अक्टूबर तक एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से उत्तर पश्चिमी और उत्तरी भागों में तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं हल्की बरसात हो सकती है। बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के जिलों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। विभाग ने कल चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर जिलों के लिए बरसात का येलो अलर्ट जारी किया है। एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने के आसार हैं। आज विश्व आर्थराइटिस दिवस है। ये दिन जोड़ों में बार बार होने वाले दर्द, अकड़न और सूजन यानी गठिया से जुड़े लक्षण सहित जोड़ों से संबंधित बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इसके माध्यम से रूमेटिक और मस्कुलोस्केलेटन बीमारियों से जूझ रहे लोगों को सक्रिय जीवन जारी रखने में सहयोग देने के प्रयास किए जाते हैं। जयपुर के एसएमएस अस्पताल की गठिया रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मधुलता अग्रवाल ने बताया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस उम्र बढ़ने के साथ अधिक आम होता है। वहीं सूजन संबंधी गठिया युवाओं को भी प्रभावित कर सकता है। ऐसे में सेल्फ मेडिकेशन से बचें और डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। उचित इलाज और व्यायाम से जोड़ों की कार्यक्षमता जीवन भर बनाए रखी जा सकती है।
1: हमें केवल कुछ ही बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। एक तो हमें हमेशा मोबाइल रहना, आपको अच्छी डाइट लेनी है, एक्सरसाइज करते रहना है ताकि आपके जॉइंट्स के अराउंड जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग रहें, और आपको साथ ही साथ ये देखना है कि आप बार बार अगर किसी जॉइंट से चोट लग रही है तो तुरंत आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। अगर आपको जॉइंट से संबंधित कोई भी आपको सिम्टम्स हैं जैसे दर्द है, सूजन है, तो तुरंत आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। ऐसे पेन किलर्स लेकर आप उस बीमार को बढ़ाइए नहीं। तो आपको हमेशा अपने सिम्टम्स के प्रति सतर्क रहना है ताकि आप अर्ली सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज कर सके। इस बीमारी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि हम इसको अर्ली पकड़े ताकि हम इसका बेहतर इलाज कर सके।
0: शारदीय नवरात्र की शुरुआत के साथ ही प्रदेश भर में श्रद्धा और भक्ति का माहौल बना हुआ है। नवरात्र के दूसरे दिन आज मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना की जा रही है। शारदीय नवरात्र पर और ब्यौरा समाचार कक्ष से।
2: शारदीय नवरात्र के शुभारंभ के साथ ही कल घरों, मंदिरों और गरबा पांडालों में घट स्थापना की गई। राजधानी जयपुर के आमेर स्थित शिला माता मंदिर, सीकर के प्रसिद्ध जीण माता मंदिर, डूंगरपुर के आशापुरा धाम और गलियाकोट के शीतला माता मंदिर सहित प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों में विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं और माता के जयकारे गूंज रहे हैं। विभिन्न स्थानों पर पारंपरिक गरबा और डांडिया का उल्लास छाया हुआ है। वहीं रामलीलाओं का मंचन भी किया जा रहा है। कोटा के प्रसिद्ध दशहरा मेले की भी शुरुआत हो गई है। नवरात्रि के दौरान नए वाहनों की खरीद को लेकर भी लोगों में उत्साह है। वहीं लोग निवेश के बेहतर विकल्प भी तलाश रहे हैं। समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर।
0: खेलो राजस्थान 2026 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण किए जा रहे हैं। इन खेलों में भाग लेने के लिए 16 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। ये खेल प्रतियोगिताएं इस साल 1 दिसंबर से 15 जनवरी 2027 के बीच प्रस्तावित हैं। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की ओर से ग्रामीण और शहरी प्रतिभाओं को अवसर देने के लिए इन मुकाबलों का आयोजन किया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वार हर भारतीय नागरिक के लिए खुले हैं। प्रदेश में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता, राज्य सरकार मांग से अधिक आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के मौसम में बदलाव, 15 अक्टूबर तक कुछ स्थानों पर हल्की बरसात के आसार। और खेलो राजस्थान 2026 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण जारी, 1 दिसंबर से प्रतियोगिताएं प्रस्तावित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से बारा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक

0: हैं लक्ष्मी चंद नागर। माँ दुर्गा की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र कल से शुरू हो गए हैं। बारां जिले की प्रमुख माता मंदिरों सहित अन्य मंदिरों में विशेष आयोजन हो रहे हैं। पहले दिन शुभ मुहूर्त में मंदिरों और घरों में घट स्थापना की गई। इस दिन माँ दुर्गा के स्वरूप शैलपुत्री की आराधना की गई, साथ ही अनुष्ठानों का दौर शुरू हुआ। जिले के विभिन्न मंदिरों में अखंड रामायण पाठ भी प्रारंभ हो गए हैं। मंदिरों में सुबह से ही दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी रहता है। रामगढ़ स्थित कृष्णाई माता मंदिर, अंता के सोरसन स्थित ब्रह्माणी माता मंदिर, छबड़ा की गुगोर माता और शाहबाद स्थित नगरकोट माता मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज दूसरे दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आराधना की जा रही है। जिले में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की घोषणा हुई। इसके साथ ही जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई, जो चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगी। यहां तीसरे और चौथे चरण में चुनाव होंगे। तीसरे चरण के चुनाव की समय सारिणी में संशोधन किया गया है। नई समय सारिणी के अनुसार तीसरे चरण में 2 नवम्बर को मतदान दलों की रवानगी होगी, वहीं जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के लिए 3 नवम्बर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। सरपंच पद के लिए 4 नवंबर नामांकन प्रक्रिया की तारीख रहेगी, जबकि 5 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मतदान समाप्ति के तुरंत बाद ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मतगणना होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पंचायती राज चुनाव की तैयारियों के तहत जिले की सभी पंचायत समितियों में प्रत्याशी प्रबोधन कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी बालमुकुंद असावा के निर्देशन में आयोजित कार्यशालाओं में रिटर्निंग अधिकारियों, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों और जिला तथा ब्लॉक स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के संभावित प्रत्याशियों को नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया, निर्वाचन संबंधी नियमों और दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई। साथ ही नामांकन प्रक्रिया के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों और निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में बताया गया। जिले में शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने और पात्र युवाओं के मतदाता पंजीयन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में बालिकाओं ने लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी निभाने और अपने परिवार तथा समाज को मतदान के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया। कोई भी योग्य मतदाता न छूटे थीम पर जिले में पात्र युवाओं का मतदाता सूची में शत प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी शिक्षण संस्थाओं में 2 दिवसीय विशेष मतदाता पंजीयन शिविरों का आयोजन हुआ। इनमें युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया सीखी और अपना ऑनलाइन पंजीयन कराया। जिले में नगर निकाय चुनाव पिछले दिनों संपन्न हुए। 12 नगर परिषद चुनाव के परिणाम में पहली बार आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी शीतल राठौर सभापति बने। अंता नगर पालिका में कांग्रेस के प्रदीप कुमार विजयी हुए। अटरू में कांग्रेस की निशा नगर पालिका अध्यक्ष विजयी हुई, जबकि छबड़ा नगर पालिका में भाजपा की रीना सुमन अध्यक्ष निर्वाचित हुई। साथ ही मांगरोल नगर पालिका में भी भाजपा के भूपेंद्र कुमार अध्यक्ष बने। सिसवाली नगर पालिका में कांग्रेस के पीयूष चेयरमैन बने। जिले भर में 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर जिला मुख्यालय पर मिनी सचिवालय प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में गांधी जी के प्रिय भजनों की प्रस्तुति हुई। जिला कलेक्टर ने गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत पूरे जिले में स्वच्छता ही सेवा अभियान आयोजित किया गया। इसके अंतर्गत कई स्थानों पर स्वच्छता से जुड़ी जागरूकता गतिविधियां आयोजित हुईं। इसके साथ ही 12 जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत कहो, सुप्रीम कोर्ट रा दरुजा देश रा हर रहवासी सारू खुल्योड़ा है। प्रदेश माए खादरी पर्याप्त उपलब्धता। राज्य

0: सरकार मांग बत्ती पूर्ति तय कर रही है। प्रदेश का मौसम में बदलाव, 15 अक्टूबर तक कछे-कछे हल्की बरसात रा आसार। और खेलो राजस्थान 2026 सारू ऑनलाइन तरीका नाम मंडाया जा सके है। 1 दिसंबर होड़ा रो कार्यक्रम। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरबस समाचार विगतवार। सुप्रीम कोर्ट रा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत कहो है कि कानूनी हक रा उल्लंघन री सूरत में अदालता ने दखल देवणो चाहिए। आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग रा 33वां स्थापना दिवस रे मौके सीजेआई सूर्यकांत नई दिल्ली में कहो के संविधान देश रा हर रहवासी ने मान, बराबरी, आजादी और न्याय रो हक देवे है, जानी हिफाजत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करे है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत कहो के सुप्रीम कोर्ट रा दरवाजा सगला सारू खुलिया है।
1: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पटीशन किसी भी, कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
0: दिल्ली पुलिस विरोध और धरना प्रदर्शन सारू रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और उगनी दिल्ली रो सीबीडीटी मैदान तय किना है। दिल्ली रा पुलिस कमिश्नर कानून जारी हुकम रे मुजब जंतर मंतर ने प्रदर्शन सारू तय ठोणा ने लिस्ट हटा दियो चियो है। गृह मंत्रालय जनता रा विरोध प्रदर्शन करण और धरना देवण राहक ने तय करण सारू दूजी ठोणा ने पिछाण करण बाबत एक समिति बनाई ही, जिनरी सिफारिशा रा आधार जंतर मंतर ने प्रदर्शन रे ठोणा ने लिस्ट हटावण रो फैसलो करी चियो। पुलिस रे मुजब धरना प्रदर्शन सारू तय करी जी 3 ही नुवी ठोड़ा नुवी मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी करी जावेला। इबीच देश की राजधानी में हिफाजती इंतजामात और कड़ा कर दिया गया है और भीड़ भाड़ रोकण और कानून व्यवस्था बनाई रखण सारू शहर री सरहद, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और दूजी ठोड़ा सुरक्षा और बधा दे रिची है। इबीचे लोकसभा में विपक्षरा नेता राहुल गांधी आज नई दिल्ली में खबरनवीसा सागे बातचीत कीनी। वे सुप्रीम कोर्ट रा मुख्य न्यायाधीश ने कागज लिखकर चुनाव निपक्ष तौर करावण जुड़ी चिंता जताई। दूजी कानी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा री ओर आज नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करी चियो। इस दौरान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU री छात्रावां सागे कथित यौन उत्पीड़न रा आरोपित मणिपुर कांग्रेस रा सांसद डॉक्टर अंगोमचा बिमोल कोईजम रे खिलाफ कार्रवाई री मांग करी ची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहो है कि लाडला कुछ वर्षा माए रक्षा हलका ने एकदम नुओ और खुद रे पाण उबो बनावण माथे खास ध्यान दियो जा रियो है। आमाय हथियारा और तकनीक उनलेर वर्दी साजो सामान और सिखावण ताई सगला हलका शामिल है। वे आज नई दिल्ली माय फौज और भारतीय खाद्य निगम बीच एक करार सारू राखी जा जलसा माय बोल रहा है। श्री सिंह कहो कि भारत रक्षा जरूरतों रो मोटो हिस्सो अब देश माय तैयार कर रहे है।
2: आज आर्मी और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक पार्टनरशिप MOU की साइनिंग भी और नेशनल सिक्योरिटी को इन्हांस करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। आज के युद्ध केवल फ्रंट लाइन पर नहीं जीते जाते, युद्ध के पीछे सप्लाई चेन की मजबूती, स्टोरेज की क्षमता, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और टाइमली रिप्लेसमेंट की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।
0: पहली वाला विधायक और भारतीय जनता पार्टी रा नेता अतर सिंह भडाना री पार्थिव देह पुलिस वाना परिवार वाला ने सौंप दीनी है। ये पाछे हरियाणा रा फरीदाबाद माए मारो दाग करियो जा रियो है। भरतपुर रेंज री IG प्रीति चंद्रा बतायो के लाडली रात भरतपुर जिला माए वैर कने भोंडा गांव माए कुछ लोग खनन लीज रा झगड़ा माए भडाना माथे हमलो कर दिनो हो, जिनरे कारण भडाना और मारो अंगरक्षक घना जख्मी फेंक्या है। ये पाछे भड़ाना ने नाजुक हालत में जयपुर रेफर करी जिया, जठे इलाज रे दौरान मारी मौत वेगी। ये वाकया पाछे हल्का माय हालात तनातनी वाला है पर काबू माय है। पुलिस 40 जना री पिछाण कैर वन हेर रही है, जद कुछ लोगों ने हिरासत में लिया जिया है।

0: कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कहो है कि राज्य सरकार सियाणू साखा री बुआई सारू मांग बत्ता खाद री पूर्ति कर रही है। वे बतायो कि डीएपी खाद री 5,10,000 मीट्रिक टन मांग बत्तो 5,44,995 मीट्रिक टन खाद मुहैया कराई चियो है। यूरिया खाद री 11,00,000 मीट्रिक टन मांग रे मुकाबले 17,00,000 मीट्रिक टन बत्ता यूरिया री पूर्ति करी ची। डॉक्टर मीणा बतायो कि प्रदेश में करीब 18 दिन री मांग रे मुजब डीएपी और 35 दिन री मांग रे मुजब यूरिया रो स्टॉक मौजूद है। वे कहो कि खाद रा वितरण में किनी भांतरी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं करी जावेला और जमाखोरी और कालाबाजारी करण वाला रे खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जा रही है। मंत्री बतायो कि 128 फर्मा रा लाइसेंस निरस्त करी चिया और 25 जना रे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई ची है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। नीम लेपित यूरिया खाद रा दाना माथे नीम रा तेल री परत चढ़ाई जावे है जिन्हें खास तौर खेतीबाड़ी माए काम लेवन सारू विकसित करी चियो है। नीम री परत यूरिया रा नाइट्रीकरण न मंदो करते हुए है जिन्हों मिट्टी माए पोषक तत्व बत्ती तादाद माए अवशोषित हो सके है और जमी हेठे पानी कम गंदो हुए है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: नीम कोटेड यूरिया किसान के हित में महत्वपूर्ण पहल साबित हुई है। इससे यूरिया के गलत इस्तेमाल और डायवर्जन पर रोक लगी है, साथ ही बिचौलियों पर भी लगाम लगी है। केंद्र सरकार ने सभी देशी निर्मित यूरिया पर 100% नीम कोटिंग अनिवार्य कर दी है। उर्वरक निर्माताओं को इससे जुड़ी लागत को संतुलित करने के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य यानी MRP पर अधिकतम 5% तक बढ़ोतरी की अनुमति दी गई है। नीम कोटेड यूरिया पारंपरिक यूरिया होती है जिसे नीम के तेल से संसाधित किया जाता है। नीम का तेल नाइट्रिफिकेशन अवरोधक के रूप में काम करता है और मिट्टी में नाइट्रोजन के रिलीज को धीमा कर देता है। ये नाइट्रोजन पोषक तत्वों की हानि को कम करता है और उर्वरक के अधिक उपयोग को घटाता है। इससे किसान यूरिया की खपत कम कर सकते हैं। नीम कोटेड यूरिया को अपनाने से मिट्टी की सेहत में सुधार होता है। इससे फसल की पैदावार, यूरिया की आवश्यकता और अन्य कीटनाशक खर्चों में भी कमी से फसल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। न्यूज डेस्क से सलेहा गाजी।
0: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बांसवाड़ा कोर्ट परिसर में आज अदालत रा रीडर और एक ड्राइवर ने गिरफ्तार कर लीनो। वहां माथा एक जनाऊ घूस रा तौर 40,000 रुपया लेवन रो आरोप है। ब्यूरो मिली जानकारी रे मुजब शिकायत करने वाला ने कोर्ट जमानत मिलिया पाछे वारी जमानत खारिज नहीं करावन और कोर्ट माए चल रहा मामला माए मदद करने री एवज माए घूस री आ रकम मांगी ची ही। शिकायत माए रीडर रा कहम पाछे ड्राइवर रे मार्फत घूस लेवन रो आरोप मांडी चियो हो। अरबे मौसम। बीकानेर संभाग माए लाडला 24 घंटा माए कठे कठे बादलां री गाज सागे हल्की मझला दर्जा री बिरखा भी। मौसम विभाग रे मुजब काल 15 अक्टूबर ताई उत्तराध आतुणी और उत्तराध हलका माए जोरदार बायरो बजन सागे कठे कठे हल्की बरसात रा आसार है। बीकानेर संभाग और शेखावाटी हलका रा जिला माए गरज सागे हल्के मझला दर्जा री बिरखा रा आसार है। मौसम महकमो काल चूरू हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिला माए बरसात रो येलो अलर्ट जारी कीनो है। आज विश्व आर्थराइटिस दिवस है। ओ दिन जोड़ बार बार दुखन अकड़न और गठियाओं जुड़िया लक्षणा समेत जोड़ाओं जुड़ी बीमारियां ने बारा माए जाग जगावन सारू मनायो जावे है। जयपुर रा सवाई मानसिंह अस्पताल माए गठियारी बीमारी री जानकार डॉक्टर मधुलता अग्रवाल बतायो कि उम्र बधवा सागे गठियारी बीमारी भेवणु आम बात है पर सूजन जुड़ी गठियारी बीमारी नौजवाना माथे असर कर सके है। डॉक्टर मधुलता बतायो कि बीमारी रा हालात माए खुद दवाई लेवणु बचनु चाहिए और डॉक्टर री राय जरूर लेवनी चाहिए। वे कहो कि जरूरी इलाज और कसरतों जोड़ा ने जिंदगी भर काम करने लायक बनाया जा सके है।
2: हमें केवल कुछ ही बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। एक तो हमें हमेशा मोबाइल रहना, आपको अच्छी डाइट लेनी है, एक्सरसाइज करते रहना है ताकि आपके जॉइंट्स के अराउंड जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग रहें, और आपको साथ ही साथ ये देखना है कि आप बार बार अगर किसी जॉइंट से चोट लग रही है तो तुरंत आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। अगर आपको जॉइंट से संबंधित कोई भी आपको सिम्टम्स हैं जैसे दर्द है, सूजन है, तो तुरंत आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। ऐसे पेन किलर्स लेकर आप उस बीमार को बढ़ाइए नहीं, तो आपको हमेशा अपने सिम्टम्स के प्रति सतर्क रहना है ताकि आप अर्ली सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज कर सकें। इस बीमारी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि हम इसको अर्ली पकड़े ताकि हम इसका बेहतर इलाज कर सकें।
0: खेलो राजस्थान 2026 में भाग लेवन सारू 16 नवंबर ताई ऑनलाइन तरीका नाम मंडाया जा सके है। ए खेल होड़ा इन साल 1 दिसंबर आवता साल 15 जनवरी बीच कराई चावनी है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स री भांत राज्य क्रीड़ा परिषद री ओरों कराई जावन वाली आ होड़ा माए 12 पारंपरिक और नुआ खेल शामिल करिया जावेला। खेलो राजस्थान रा तहत ग्राम पंचायत ले राज्य स्तर ताई होड़ा राखी जावेला। आखिर माए खास समाचार एक और फेर सुन ली रहो। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत कहो सुप्रीम कोर्ट रा दरूजा देश रा हर रहवासी सारू खुल्योड़ा है। प्रदेश में खाद री पर्याप्त उपलब्धता, राज्य सरकार मांग उम्बत्ती पूर्ति तय कर रही है। राज्य रा मौसम में बदलाव, 15 अक्टूबर ताई कठे कठे हल्की बरसात रा आसार। हर खेलो राजस्थान 2026 सारू ऑनलाइन तरीका नाम मनाया जा सके है। 1 दिसंबर होड़ा नो कार्यक्रम। इसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
3: एफ एम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 7 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी।

खेतीबाड़ी सुनने वाला सही किसान भैया ने कसा ने बेना ने छोटा ने टीगरा टावरा ने और अंपारा जगह कसा भाई जगह खेत के मई ने खड़ा है माने सब ने आपके ओम दून वाल का घणार घणा राम राम। देखो भैया की चौपाल पर जद भी आवा नहीं तो देखो नई नई जानकारी यहाँ पर ले परा रहा किरिया करा और जानकारी भी यहाँ पर किसान भैया वास्तर एडी लावा कि खेती के महीने यानी कि आप उन्नत कृषि किया कर सका खेती के महीना पर कहीं सुधार कर सका और भी खेतियों आप कितो मुनाफो कमा सका। सब पहली बात है कि खेतियों मुनाफो किया कमा सका बी की बात है जो कि आप चौपाल के मार पर तो क्रिया क्रिया करा और आपा हमेशा आ सोचा क्रिया करा कि आपा का जगह किसान भाई है ना जक्का हमेशा जमीन जरूरा जक्का है आपकी मेहनत को है जो फल है जो जरूर माने मिलना चाहिए। और ज्ञान यहाँ पर बात करा तो अभी जो को मौसम चाले है अभी जो को महीनो चाले है बीर अनुसार अगर आप बात करा तो देखो सौंफ की जगह उन्नत खेती के बारे में बात करा सौंफ और सौंफ कहते हैं जो सबके दिमाग में सब किसान भाइयों के दिमाग में जो है कि कहो ही कहीं और सौंफ की खेती है जो कि देखो ज़्यादातर है जो कि राजस्थान के महीने बढ़िया आमदनी भी पैदावार क्रिया किया करे और नागौर के आसपास की जो कि क्षेत्र की जो कि जमीन है ना बीज यह है जो कि पैदावार है जो कि बढ़िया है अटे की जो कि मिट्टी है बुआई को जो समय है सिंचाई रोग नियंत्रण बस सगड़ा मत अगर आप ध्यान देवा और बार अनुसार अगर आप खेती करा तो सौंफ की खेती है जो कि आपा के वास्त्र है जो कि फायदेमंद है। तो अभी आप बात करा कि भाई सौंफ की खेती तो कर लेवा पर भी वास्त्र खेत के मार मिट्टी केड़ी होनी है तो बीक वास्त्र आप बात करा तो सौंफ की खेती के वास्त्र सब पहली तो आप देखनी चाहिए कि बढ़िया में बढ़िया जल निकासी की क्षेत्र होना चाहिए दोमट या बलू दोमट मिट्टी हुआ करे बीक महीना आ जाएगी सौंफ है जाएगी ज़्यादा हुआ किया करे। और जलवायु की बात करा तो जलवायु देखो अभी जो को मौसम है ना जो सौंफ के वास्त्र उपयुक्त है बीम कह सका आप कि ठंडी और शुष्क जलवायु की जगह फसल है जबकि एक महीने बढ़िया पैदावार दिया किया करे। अब किसान भाई कही कि भाई अब तो सगड़ी बात आके भी पर आप इन खेती कद करा यानी बुआई कद कराएं कि तो बिक वास्त्र आ है कि राजस्थान के महीना आप समय नहीं त्यों देखा तो अक्टूबर ले और नवंबर के महीने के बीच के महीने अगर आप की बुआई करा और वो समय भी को सही है क्योंकि देखो इस टाइम अभी गर्मियाँ भी कौन रात का है जो कि ठंडक भी पड़ने लगी हुई है दिन का थोड़ी बहुत गर्मी रहे पर रात का है जो कि अभी रात का उठ किसान भाई है जगह ध्यान भी है तो पंखों भी बंद करना पड़ सके तो इस मतलब आप देखा कि

0: बिहेजे की शुरू होगी। ई मौसम के महीना अगर आप ये खेती करा तो वो मौसम सब उपयुक्त है। और फसल की आप अवधि की बात करा तो मेरी अवधि है कि एक तो किस्म देखो आप की टाइप की बो रिया हो, किस्म और मौसम के अनुसार अगर आप बात करा तो 140 ले और 180 दिन के बीच के महीने है जकि फसल की अवधि है जकि रिया करें और एक महीना है जकि सौंफ की है आप बढ़िया पैदावार है जकि ले सका। अभी बात करा कि सौंफ की उन्नत किस्म किसी किसी है, क्यों किस्म भी तो है, कई सौंफ के महीने देखो स्वाद में भी अलग है, कई जगह पर देखा सौंफ की अलग ही सुगंध आया करे। तो प्रमुख किस्म है कि एक तो है अजमेर सौंफ, दो यानी AF2 कह सका आप अभी ने जबकि अच्छी पैदावार है और बीरो जो जुलस रोग प्रतिरोधक क्षमता है जबकि बढ़िया है, यानी कि हर हास्बिंग रोग भी कोई कौन लागे। बिक बाद में आप बात करा कि अजमेर सौंफ 3 है जबकि मेन उपज है जबकि भी बढ़िया हुआ है। और एक महीना आप देखा कि एक RF है 281 नंबर की जकी आया किरिया करा एक ही कैटेगरी जकि राजस्थान के कुछ एक कृषि क्षेत्र के महीने अनुशासित किस्म है और आप आपके क्षेत्र में उपयुक्त पुष्टि क्रिया किरिया करें। और खेत की तैयारी आप की बात करा कि भाई खेत की भाई फसल तो आप खेती कर ले वहाँ पर खेत की तैयारी पहले क्या करें क्योंकि अभी जो को मौसम है वो उपयुक्त है। आप अगर जगह किसान भाई है जगह देखो पालियाँ भी बना रहा सब कुछ खे रिया किया है तो इर वास्ते देखो खेत की जकी है 2-3 बार जुताई है जकी कर परी और जकी मिट्टी यानी भी भुरभुरी कर लें क्योंकि कुछ क्षेत्र के महीने जान की अलग यानी कि मेड़ता पट्टी यहाँ पर देख ले या और की देख लें बट जकी मिट्टी है ना जकी है ढगड़ादार यानी कि मिट्टी का है जगह ढगड़ा बन उड़ा है बट ढगड़ा ने दौड़ पर भुरभुरी मिट्टी कर दिया यानी कि आप क्या करें एकदम पीस या बीर मत पार्टो फेर दो या और कुछ कर दो तो बा भुरभुरी टाइप की हो जाए बा एक तो तैयार कर लेनी। और खेत्र महीने बढ़िया एकदम सड़ी गोबर है यानी कि जगह देखो किसान भाई सबके गायें भैंसा हैं घर है तो बे देखो कि खाद है जबकि इकट्ठी किया करे भी खाद ने यानी भी गोबर ने है बढ़िया सड़िया सड़ा परा और भी खेत महीने जकी टाइम आप जुताई करा भी पहली भी ने पूरे गां मिला देवा। और पच बीक महीना आप देखा कि 4-5 किलो प्रति एकड़ यानी कि बीज है जो आप 4-5 किलो प्रति एकड़ बुआई करनी है तो बीक महीने कुछ बीज है जो खराब हो जाए कुछ है जो जानवर खा जाए तो कुछ बजे बीक महीना आपा की खेती है जो बढ़िया हो जाए। और बात करा तो कतार टू कतार यानी कि सौंफ की खेती एकदम लाइनबद्ध हो जा किया करे जन चावल की खेती में जो ही लाइन बंद हुआ करे इन मान्य आप देखा कि 45-60 सेंटीमीटर तक आप है जो कि दूरी रखा और इस दूरी के दरमियान अगर आप बोवा तो आप है जो कि एक ही उपज है यानी आप कह सका कि पैदावार है जो कि बढ़िया मिल जाए। तो एक वास्तव जगह किसान भाई सुन रहा है बन आई कहना है कि सौंफ की खेती के वास्ते अबार जो कुछ समय है वो बढ़िया है उपयुक्त है और इस समय के महीने आप खेती है जो कि कर लेनी चाहिए। और देखो सौंफ की खेती की तो बात करी है इनके साथ आपने काम की बात भी तो करनी चाहिए तो सुनो आ काम की बात।
1: अरे नेहा तू इतनी रिलैक्स लग रही है आजकल क्या सीक्रेट है यार?
2: सीक्रेट नहीं स्मार्ट मूव है, मैंने लिया है LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान।
1: ओ रियली क्या स्पेशल है इसमें?
2: देख छोटी बचत से बड़ी सेविंग होती है और इंश्योरेंस कवर भी मिलता है, इसमें गारंटीड एडिशंस मिलते हैं, एडिशनल सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलता है 3 अट्रैक्टिव ऑप्शंस के साथ और तो और ऑटो कवर भी है। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये प्लान केवल महिलाओं के लिए है एक्सक्लूसिव।
1: वाह मुझे भी लेना है यार LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान।
2: तो अभी विजिट करें LIC.in या अपने नजदीक LIC शाखा में संपर्क करें। LIC हर पल आपके साथ।
3: प्रत्येक मंगलवार गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
0: तो देखो भैया काम की बात तो सुनी है और जद भी चौपाल पर आया किया करा तो चौपाल पर आते ही आ है कि किसान भाइयों बातचीत भी कर पार और पच्चे देखो के आप खेती बाड़ी के प्रोग्राम के महीने है जबकि सुनाया किया किया करा और जट भी गाउंत्रो करा तो बटे गाउंत्रे के महीने आप का जगह किसान भाई है ना देखो जानकारी भी रखे कई खेती के संबंधी जानकारी रखे तो कई पशुपालन के महीने जानकारी रखे और कई पशुपालन खेती के साथ साथ आपका जगह यंत्र है खेती का यंत्र है बाकी भी जानकारी रखे। तो यानी देखो के गांव दौरो करियो फिड़ोद को और फिड़ोद गांव के महीने उन्नत किसान पढ़िया लिखा किसान है जिसका नाम है हनुमान राम जी बहु मेरी बातचीत हुई जकी थारते ही करा पूगती तो सुनो आ बातचीत।

0: तो देखो भैया, आज चालता चालता गांव फिड़ोद, और फिड़ोद निकली हाँ अतुणी कांकड़ में। तो एक किसान भाई है जगह, देखो ट्रैक्टर चला यार, माँ तो बांदड़ो जरूर, और खेती के महीने लागुड़ा है पूरा। तो आऊँ ट्रैक्टर रोकार और आऊँ हाथ ही कर रिया हाँ। राम राम सा,
1: राम राम सा, राम राम सा।
0: काई नाम है सा?
1: मारो नाम अडमान फिरदा है सर।
0: अडमान जी, देखो के अच्छा अडमान जी, फिड़ोद तो की गांव में फिड़ोद ज्यादा है?
1: हाँ, ज्यादा फिड़ोदार सिरोई दो ही जाते हैं, बाकी हम एक बार भी है और भी जाता है कई, ज्यादा है जगह फिड़ोदार सिरोई दो ही जाति का लोग।
0: फिड़ोदा नाम आती गांव रो नाम पड़ गयो।
1: बिल्कुल सर।
0: कितनी तो की बात बताइए। और देखो के जगह जट आपा जाया करा, आपा की पुरानी संस्कृति रेउड़ी है के भाई जट जकेर रिया करे, बीरी बा हैनानी रिया किया करे। और देखा के ट्रैक्टर चला रिया हो, और तो कितना बीघा खेत है, कहीं काम कर रिया हो अभी?
1: अट खेत आपको 70 बीघा है, वो एक एक ही दौर है, और अबार गंवार मूंग रे बाट बूट फिरी हुई यहाँ पे, कोई खेल जाए हेल जाए यहाँ के संगाना शुरू कर यहाँ पे। और
0: खेल दिया तो बार बेगी कौन का भी शुरू कर दी?
1: नहीं अब कहीं है कब खेल जाए, लगभग शुरू हुई कोई आधा या ट्यूबवेल है, आपको जो ट्यूबवेल हूँ जीरो हीरो और पावा जो भी जाव जाव वाली एक बार खेल जाए जी संगोली सही दिया करे।
0: जा और जगह सही दिया करे। तो
1: अभी
0: खेती में कहीं कहीं खेती ले जगह अभी ले ली?
1: मूंग है भाई, उड़ार गंवार भी हो और कहीं जवार भी ही, दावान निर्णय वास्ते जवार बेचारो बाजरी भी ही।
0: तो मूंग और गंवार किता कहीं हो गया?
1: अब के तो जमानो यहाँ मोड़ी हो 50-60 किला बीघा की हिसाब हूँ उठिया मूंग और गंवार जो ठीक है कुंटल के लगभग बीघा में बैठ गो।
0: अच्छा गंवार बढ़िया बैठ गया। तो गंवार का बार सुनने में आई है कि भाव भी ठीक आ रही है?
1: हाँ सुनिए, अब गवार ठीक चल रही है बात।
0: तो थे बराबर मंडी का भाव ध्यान रखो।
1: बिल्कुल साहब।
0: तो आज धान बेची थोड़ी है?
1: नहीं ध्यान अभी बेचे को नहीं, बार पीढ़ी है हाल।
0: कितना पीढ़ी लेके आओ?
1: मैं तो बीए करी हूँ।
0: अच्छा बीए करिए। देखो बीए कर पर फिर भी किसानी,
1: हाँ
0: तो तैयारी यारी की करी कौन?
1: तैयारी करी बनवानों ने करी का सहमत थोड़ी है।
0: ज़्यादा जाओ है देखो, खेती में तो जोर ज़्यादा है।
1: हाँ।
0: देखो क्या आप के किसान के वास्ते, देखो नौकरियों पहली तो खेती
1: बिल्कुल
0: है कि
1: बिल्कुल
0: नहीं? क्योंकि आप जट भी देखा कि सब पहली अन्नदाता है जो किसान ही हुए।
1: बिल्कुल
0: और किसान जन देखो खेत में उबो रहे नहीं, और खेत में पाणत कर तो लागे ही फूट रहे।
1: बिल्कुल सर।
0: और खेती के साथ साथ गायें भैंसा भी रखो?
1: हाँ गाय गाय है भैंस भी है।
0: दिनों भी रखो, मतलब
1: हाँ खेती वाला दिनों जरूरी है
0: दिनों
1: रखो।
0: जरूरी है। ज्यों तारो देखो के बात करी कि खेती खेती रहा है जो दिनों है जो जरूरी है। और दिनेर में इनसे बताइए, गायें भी है भैंसियाँ भी है, तो दूध घर पर तो रखो या बेचो?
1: की बेच दिया उबरे जो और बाकी घर पर तो घर काम मिल जाए ले जाए बाकी नहीं बेच दिया।
0: बेचो को डेयरी बेचो या
1: हाँ
0: फिर यान खुलो?
1: डेयरी डेयरी माते।
0: अच्छा डेयरी गांव में है?
1: हाँ गांव में है, छोटो भाई चला है
0: अच्छा
1: बुआ
0: अच्छा
1: डेयरी वाला है।
0: ओहो, जना देखो घर की डेयरी है,
1: हाँ
0: और घर की डेयरी में यानी कि जना गांव को दूजो दूध भी थांग डेयरी में आवे अटे?
1: हाँ बिल्कुल आवे, गांव का जगह पशुपालन में जगह करे बैठ डेयरी में दूध दे रहा है।
0: हनुमान जी बात बताई कि भाई डेयरी में जहाँ दूध आवे, दूध इतना हरा आवे, तो दूध गांव में सप्लाई करे काम है और भी कटी बारे भी सप्लाई करे?
1: अभी से अटूं डेयरी दूध कलेक्ट पूरो बेड़ो कर बजट हूँ, तब इन्हें बीएमसी है बढ़ जानता रहे।
0: अच्छा मतलब पड़ोसी गांव है जैसे मेरे भेज दो अगले पूरा पूरा। तो गाय भैंसा को काम तो देखो के थे खुद ही संभाल हो कहाँ बेचे, कोई ने राकुड़ है या फिर?
1: खुद ही हमारा लोगों के रणा लगे पता यहाँ रे हमारा।
0: ट्रैक्टर एकदम नई होती के तो खेती खातिर लियो है कहाँ पे?
1: हाँ खेती का तरीका खेती हुई जाए ठीक है।
0: तो एकदम नहीं हो लियो ट्रैक्टर?
1: नहीं सेकंड हैंड है, थोड़ा चल ही रहा है 1-2 साल।
0: अच्छा साल 2 साल चल उड़ो है। तो ट्रैक्टर में तैर ज्ञान अभी देखो के आपा के जगह सरकार है जबकि अनुदान भी दिया कि जगह है जहाँ ट्रैक्टर में तैर कृषिया में तैर, तो बीरू भी की फायदा उठाओ?
1: नहीं बीरो तो तैयार माते एक अनुदान लियो, बाकी ट्रैक्टर माते दाल कौन लियो अनुदान। तैयार है जगह 25,000 की सब्सिडी लगभग आवे जो तैयार सब्सिडी अनुदान वास्ते वो फॉर्म अप्लाई कीजिए।
0: अच्छा भी मिल जाएगी जगह?
1: हाँ।
0: और खेती माती जन देखो नहीं क्या हमने जगह सरकार है जो कि तार बंदी की है सब्सिडी देवे, तार बंदी के अलावा भी आजकल के जाड़ी करने रहा बेबी देवे, तो बेबी उठाओ या बे आज करूड़ी कौन क्यों धार तार बंदी जी खांचूड़ है तार, तो सब्सिडी ली का या कुन कन्नू ही लगे?
1: नहीं हाल तो कन्नू ही लगे रहा है, फॉर्म भेजो हाल वो आयो कौन।
0: तो खेती पूरी बारिश पर निर्भर रहो का टूबेल जियाँ टूबेल भी है थारे ओदे को जियाँ हम दिखे वो मोटो हारो बनोड़ो जियाँ तालाब टाइप रो
1: डिग्गी
0: डिग्गी
1: बनाईड़ी है,
0: बनोड़ी है।
1: बिल्कुल डिग्गी बनाईड़ी है। टूबेल बारी करी है, हाल साल 2 साल हुई है।
0: तो पानी मीठो है।
1: हाँ ठीक है पानी।
0: तो डिग्गी महीने जियाँ इन महीने कितो की स्टोरेज हुई जाओ पानी गोरिया
1: इनमें स्टोरेज लगभग में 2-2.5 लाख लीटर के समथिंग है।
0: अच्छा, तो इर महीने सरकार की अनुदान देवे का थार कनु ही बनाई।
1: अवैध है अनुदान वास्ते फाइल लगवी है आल हुई को नहीं।
0: अच्छा, पास धीरे धीरे हुए।
1: हाँ
0: तो जान थे खेती करो तो खेती महीने कहीं कहीं था नहीं आने जान अभी आगे उन्नड़ मौसम में भी कहीं तैयारी करो या फिर कहीं जाने आगे री के भाई पूर्व तैयारी किया ने का कहीं खेती ले आगे।
1: आगे अब जहाँ रबी की फसल वास्ते जीरा राइडार इन गौण वास्ते अब तैयार निकाला बाहर दो तैयार निकाल तो जाओ तैयार करा बाद में जीरो राइडार ए भाव
0: अच्छा पता ए भाव।
1: इसे बोल रहा है।
0: तो अच्छा खेती करो आप अडमान जी बताइए जहाँ के खेती भी करो गाय डंडा भी रखो और तो ढाणी के महीने तो ढाणी में रहो के गांव में रहो जहाँ ढाणी भी है खेत में देखो बनूड़ी है
1: हाँ
0: पर अट रहूँ तो कोई लागे को ना बा।
1: हाँ डाणी में रेवा तो कम ही है वह काम हो जाते डाणी में रेवा बाकी नहीं है
0: अच्छा
1: गांव।
0: गांव ही रहो।
1: हाँ
0: तो अट जाना करना कर देखो सड़क चले गाड़ी घोड़ा रहे देखो यूं की थारे खेती माते प्रभाव दुष्प्रभाव या की वह काम फिर मारे को सड़क को की फर्क कौन पड़े।
1: नहीं ज्यादा कोनी आवागमन नालो ज्यादा कोनी इशा को यानी रास्ता है ज्यादा कोनी।
0: तो खेती भी कर लो गाय डंडा भी रखो हो बाकी सामाजिक काम में भी थे भाग ले हो गाँव के महीने तो अबार थाने काई लागे एक जन अबार देखो लारे से एक जन मौसम खराब हुई और काले भी देखो मौसम हो जाओ कल खराब हो भी कने साइड में और जगह जगह हाँ जगह रूड़ो बताऊड़ो तो थारा रूड़ो थोड़ी आयो।
1: नहीं हल्को नहीं फिर भी क्योंकि कोई फलक देख लग जान है जरा दावो वो सारो कोई दावांगे वो डकेड़ो है भी यहाँ करूँगी है व्यवस्था पूरी।
0: तो जान आपन जान थे आगेरी मतलब पिडली क्या भी हो तो थे मौसम विभाग और सूचना लेता रहे हो या फिर थे मतलब आम पर हिसाबी काम करो।
1: आजकल मोबाइल को रंग तो मनो सोशल मीडिया में भी आप पता चल जाए वही मौसम क्या को कहीं रहना हो या गूगल और मैं कहीं से हम देख जा कहीं मौसम
0: थे तो जगह
1: को।
0: पढ़िया लिखिया भी हो और खेती भी उन्नत मतलब आम थाने कह सका कि भाई देख पढ़िया लिखिया साथ उन्नति खेती भी किया करो पर अभी आप जान देखो कि मौसम के अनुसार ही चाला करा पर चाला भी हाँ मौसम कभी कभी बिगड़ जाए नुकसान भी हुआ और भी मान देखो किसान भाई है जो उदास भी हो जाए करे पर देखो फिर भी हिम्मत नहीं आ रहे
1: बिल्कुल
0: और जान देखो कि आप बताइए कि भाई अनुदान अनुदान जन तोया मिली है जन देखो यंत्र है ना किसाना का और उन देखो कृषि यंत्र में देखो फायदो भी हुआ ना किसान देना करना वाना तो जन आप पर किसान भाई सुन दिया तो थे खेती बारे में पशुपालन के बारे में कहीं कहना चाहो कहीं राय देनी चाहो जो कि आप का किसान और आगे बढ़े।
1: मेरी तरफ आई राय देनी चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आजकल उन्नत बीज उन्नत तकनीकी में खेती करो ताकि कम खर्चा कम लागत में आप ज़्यादा से ज़्यादा उपज ले सकें। वास्ते किसान आजकल कहीं नई तकनीकियों उन्नत बीज बो करो और रासायनिक खाद की जगह आप देसी खाद डाल और ज़्यादा उपज प्राप्त होना
0: बिल्कुल चौकी फूटरी बात बताई अड़मान जी कि भाई रासायनिक खाद ना है जबकि यहाँ बंदी धीरे हटानी है और जबकि यहाँ पर देसी खाद है जितनी ज़्यादा हो सके भी काम लेनी है क्यों आने वाले टाइम में देखो कि बहुत ज़्यादा है जबकि आप खाद है जबकि ही पार पड़ना है क्यों क्योंकि जबकि आप रासायनिक खाद है कभी उनको बीमारियाँ भी फैल रही है
1: बहुत ज़्यादा।
0: तो इस वास्ते जितनी आप बताइए कि भाई जितनी हो सके उन्नत खेती के साथ जान उन्नत कृषि के महीना पर कहीं कहीं नहीं कर सका भी अनुसार अपने खेती करनी चाहिए।
1: बिल्कुल सर।
0: तो अभी खेती जान है आप कर रिया हो आगे तैयारी भी कर रिया हो और फिर भी गायें भैंसा भी रख रिया हो सारो कुछ जन खेती रो काम कर रिया हो इंग साथ साथ है पढ़ाई भी कर रिया हो या फिर अबार एक बार के भाई पढ़ाई कम कर खेती में ज़्यादा जोर है।
1: हाँ बार तो फिलहाल खेती में फिर भी हैं बाद में तैयारी करा बार तो खेती में तो जोर है।
0: बिल्कुल अरमान जी बहुत चौकी बात बताई और हमारे किसान भाई भी आप सुन लिया जब भी याद है क्या है कि भाई खेती में कहीं चल रही है कहीं नहीं हो रही है इस बारे में सारा देखो जहाँ आप बताइए कि भाई उन्नत खेती में ज़्यादा जोर दे पर उन्नत खेती की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और बहुत चौकी बात बताई इरा वास्त्र आपने बहुत बहुत धन्यवाद।
1: राम राम
0: राम राम।
2: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
3: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से

0: कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
1: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
2: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: तो देखो के फिरोद गाँव का उन्नत किसान अडमान जी कितनी चौकी बात बताई कि भाई देखो जान हर यंत्र जगह कृषि यंत्र है बेरमा, तो देखो के गवर्नमेंट घणो ही कुल्डो को सहायता कराए तो आंपा ने उठानो भी चाहिए जाए, क्योंकि देखो के आंपा का सारो कुछ है ना जो कृषि यंत्र पर भी आपा निर्भर करा, और भी मैं आपा ने गवर्नमेंट अगर सरकार है जो अनुदान दे देना दे पे कहो ही कहें यहाँ देखो काम की बात तो करता ही रहे वहाँ पर। देखो टाइम हुई है शाम की और अभी चल रही है नवरात्रा, और नवरात्रा तो सगले ही किसान भाई और सगले ही कहवे कि ओम भाई खाली बातें ही कर ही या फिर शाम की टाइम कुछ मनोरंजन भी करी। तो देखो मनोरंजन नहीं कह सका क्योंकि अभी चल रही है नवरात्रा और माता जी का चल रहा दिन, और सभी जगह भाई लोग है, किसान भाई है, सब कुछ है, जगह देखो व्रत भी राख रिया है और व्रत के साथ साथ जगह देखो के ध्यान भी कर रिया है, तो बारत ही है जगह कर रिया माता जी को भजन प्रस्तुत, तो जरूर सुनो।

तो देखो नवरात्रा चाल रहा है और नवरात्रा के महीने माँ करणी को देखो के की तो प्यारो भजन गायो। और देखो भजन कलाकार है जे कहा मोहम्मद अजीज एंड पार्टी रो गौड़ो, बहुत ही प्यारो भजन हो। और इन साथी देखो अभी काम की बात आगे बढ़ा तो देखो के जगह मंडी का भाव यानी कि आप किसान भाइयों तक हर बार मंडी का भाव जगह पहुँचे की जा करा। तो देखो के आज का जगह मंडी का भाव है जगह आप तो उपभोक्ता कर रही हैं। तो देखो के चमकी मूंग है जगह देखो के कम कम है जगह 8,800 ले और 9,300 रुपये तीन भाव रिया। और मूंगा का भाव है जगह 8,000 ले 8,700 तक रिया है। यानी देखा गंवार का भाव है जगह 7,000 ले 7,525 तक गया। और जीरे को भाव है जगह 20,000 ले और 26,000 तक रियो है। और सौंप की बात करें तो देखो 8,000 ले 14,000 का रिया है। और इस सब गुड़ है जगह 12,000 ले 17,300 तक गियो है। और यानी असाड़िए का भाव है जगह 6,000 ले 7,500 तीन रिया है। और दाना मेथी है जगह 6,000 ले और 7,200 तक रही है। सिंधी सुआ की बात करा जरा देखो 6,500 ले 9,000 रियो है। और तारा मीरियो है जगह 6,500 ले 7,200 तक रियो है। ज्वार है जगह 5,000 ले और 5,850 रुपये रिया है। और चना है जगह 6,000 ले 6,750 रुपये रिया है। मोटा की बात करें तो 6,000 ले 8,500 तक का भाव रिया है। और काला तिल है जगह 10,000 ले और 12,200 तक रिया है।

और सफ़ेद तिल है जगह 10,500 ले 12,800 तक रिया है। और सरसों की बात करा राइडे की तो वो है जगह अधिकतम है जगह 8,300 तक ही है। तो भावा में अगर किसान भाई अंदाज आवे तो आप नज़दीकी मंडियों संपर्क कर और भावों के अनुसार आप जींस है जगह बेचनी चाहिए और मुनाफो लेना चाहिए। और अभी देखो भया घड़ी हम ही देखा तो घड़ी आगे बोलने की इजाज़त भी नहीं दे रही है और घड़ी इशारो कर रही है कि आज को आपको तेवड़ो टाइम है जो हो रही हो पूरो। तो आपके ओम धूंद वाल ने दिरो सीख करा राम राम।

अभी आप सुन रहे थे खेती बाड़ी कार्यक्रम FM 103.7 MHz पर। यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 7:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सबदंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: सभी श्रोताओं को अजीत का नमस्कार। आइए श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं सुविचार, जिसे हमें भेजा है छत्तीसगढ़ मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं, जीवन में रास्ते कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर मन में विश्वास और कर्म में ईमानदारी हो तो मंजिल एक दिन खुद हमारा रास्ता पूछते हुए हमारे पास ही आ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं हमारे श्रोताओं के नाम और उनके प्यारे प्यारे संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। लिखा है, सादर नमस्कार विमलेश जी और अजीत जी। उमंग कार्यक्रम का मैं नियमित श्रोता हूँ। इस कार्यक्रम से मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। इतने सफल प्रसारण के लिए मैं उमंग परिवार की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। अगला संदेश हमें मिला है रामकुशल पटेल जी का छत्तीसगढ़ से। लिखते हैं, 15 सितंबर को हमने कार्यक्रम उमंग में पर्यावरण से संबंधित पेड़ पौधों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी सुनी। पेड़ पौधों का हमारे जीवन और पर्यावरण में कितना बड़ा महत्व है, ये जानकर हमें बेहद अच्छा लगा। ऐसी उपयोगी जानकारी देने के लिए एनसीईआरटी की पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा अनुरोध है कि उमंग कार्यक्रम निरंतर प्रसारित करते रहें। आपको बता दें कि उमंग कार्यक्रम हम पूरे परिवार के साथ नियमित रूप से सुनते हैं। कार्यक्रम हमें बेहद अच्छा और मनमोहक लगता है। मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक एवं रोचक जानकारियां भी सुनने को मिलती हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई इतनी उपयोगी प्रस्तुति के लिए। श्रोताओं, अगला संदेश हमें मिला है उरई कछार लोरमी छत्तीसगढ़ से वैशाली पटेल, हेमवर्षा पटेल, युवराज पटेल, देवराज पटेल, जगबाई पटेल और रमेश पटेल जी का। लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों और प्रतिभागियों को अपनी प्रतिभा दिखाने, कुछ नया सीखने और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का अवसर मिलता है। आपने आगे लिखा है, इस कार्यक्रम में जिस तरह से सभी प्रतिभागियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, वो बहुत ही सराहनीय है। ऐसे कार्यक्रम बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ उनकी रचनात्मकता और आत्मविश्वास को भी बढ़ावा देते हैं। कार्यक्रम का आयोजन करने वाली पूरी टीम का प्रयास प्रशंसनीय है। सभी ने मिलकर कार्यक्रम को आपने यादगार बना दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है माँ बमलेश्वरी धाम सांकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, दिवेंद्र प्रसाद साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू जी का। लिखते हैं, बहुत चर्चित उमंग कार्यक्रम का सफल संचालन करने वाले अजीत एवं बिमलेश जी को सादर बधाई एवं नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों की प्रस्तुति बेहद लाजवाब रहती है, सुनकर हम आनंदित हो जाते हैं। बड़ी मनोरंजक और ज्ञानवर्धक जानकारियां तो हमें सुनने को मिलती हैं। विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों से प्रसारित होने वाले उमंग कार्यक्रम के द्वारा हमें सच में बहुत ही लाभ होता है। आपके सभी कार्यक्रम

0: कार्यक्रम बहुत ही लोकप्रिय और मन भावन लगते हैं। महोदय, मैं 1983 में कक्षा 7वीं से आकाशवाणी से प्रसारित कार्यक्रम सुनता आ रहा हूँ। अब मेरी उम्र 61 साल की है। आकाशवाणी रेडियो का मैं दीवाना हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और अब सुनते हैं अगला संदेश जो हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, श्रीमती नंदा बोडखे और हनुमान बोडखे जी का। रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम सेजल साहू जी का। और उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से हमें संदेश मिला है मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अब्बान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। सभी श्रोताओं को हमारा धन्यवाद। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की। तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था आपसे कि सूर्योदय की भूमि किस देश को कहते हैं। तो इसका उत्तर सुन लीजिए। इसका उत्तर है सूर्योदय की भूमि जापान को कहते हैं। जापान का आधिकारिक नाम है निप्पॉन, जिसका मतलब है सूर्य के निकलने का स्थान। जापान एशिया के पूर्वी छोर पर है, जिसके कारण वहां से सूर्य सबसे पहले निकलता हुआ दिखाई देता है। तो श्रोताओं, हमारा आज का दूसरा प्रश्न था कि अब तक किन किन भारतीयों को किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका उत्तर जान लेते हैं। अब तक कुल 10 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। साहित्य में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, भौतिकी में सर सीवी रमन, चिकित्सा में डॉक्टर हरगोविंद खुराना, शांति का नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा, अर्थशास्त्र में डॉक्टर अमर्त्य सेन और डॉक्टर अभिजीत बैनर्जी, और शांति का नोबेल पुरस्कार श्री कैलाश सत्यार्थी जी। हमारा अगला प्रश्न था कि मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा और किन की स्मृति में दिया जाता है। तो आइए जानते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर है मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस देश द्वारा उनके लोकप्रिय राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाता है। और हमारा अगला प्रश्न था आपसे कि परमवीर चक्र पदक का डिजाइन किसने किया था। आइए इसका उत्तर भी जान लेते हैं। परमवीर चक्र पदक का डिजाइन श्रीमती सावित्रीबाई खानोलकर ने तैयार किया था। आपको बता दें कि श्रीमती सावित्रीबाई खानोलकर स्विट्जरलैंड में जन्मी। उनका मूल नाम इवरोन लिंडा था। वहां वे रॉयल मिलिट्री एकेडमी के भारतीय कैडेट विक्रम रामजी खानोलकर से मिली और उनसे विवाह कर भारत आ गईं। और हमारा अंतिम प्रश्न था श्रोताओं कि भारतीय साहित्य में ज्ञानपीठ पाने वाली पहली महिला कौन थी। तो इसका उत्तर है ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता पहली महिला आशा पूर्णा देवी थी, जिन्हें 1976 में बांग्ला साहित्य के लिए ये सम्मान मिला। तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, लिंक्डइन, फेसबुक और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आपको बता दें कि NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करने के लिए आप NCERT बुक्स PDF किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए, वेबसाइट पर दिए गए विकल्पों का अनुसरण कीजिए और मनचाही पुस्तक तक पहुंचिए। आप यदि इन्हीं पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप इस चैनल पर हमारे कार्यक्रम न सिर्फ सुन सकते हैं लेकिन उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम हम अनेक किंतु एक। कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता का ये एक सुंदर संगीत रूपक है, जिसमें भारत भूमि की भौगोलिक, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता में विद्यमान एकता की भावना का उल्लेख किया गया है। नमस्ते बच्चों।
1: नमस्ते सर।
0: कैसे हैं आप सब?
1: अच्छे हैं।
0: तो बच्चों, ये बताओ, आपको कविता पसंद है ना?
2: मुझे अच्छी लगती है।
3: मुझे बहुत पसंद है।
4: मुझे भी पसंद है।
5: मुझे बहुत पसंद है।
0: बहुत अच्छे, मुझे भी कविता बहुत पसंद है। तो बच्चों, आज हम एक कविता का पाठ करेंगे।
1: जी सर।
6: मुझे कविता बहुत अच्छी लगती है।
0: ठीक है,
1: ठीक है।
7: बहुत अच्छा लगा।
0: तो बच्चों, कविता का शीर्षक है हम अनेक किंतु एक। क्या है शीर्षक?
1: हम अनेक किंतु एक।
0: तो अब बच्चों, मैं इसका पाठ करूंगा और आप बोलेंगे मेरे पीछे पीछे। तो तैयार हैं आप सब?
1: जी।

0: तो शुरू करते हैं कविता। हैं कई प्रदेश के,
1: हैं कई प्रदेश के,
0: किंतु एक देश के,
1: किंतु एक देश के,
0: विविध रूप रंग हैं,
1: विविध रूप रंग हैं,
0: भारत के अंग हैं,
1: भारत के अंग हैं,
0: भारतीय वेश एक,
1: भारतीय वेश एक,
0: हम अनेक किंतु एक,
1: हम अनेक किंतु एक,
0: बोलियां हजार हैं,
1: बोलियां हजार हैं,
0: टोलियां हजार हैं,
1: टोलियां हजार हैं,
0: कंठ भी अनेक हैं,
1: कंठ भी अनेक हैं,
0: राग भी अनेक हैं,
1: राग भी अनेक हैं,
0: किंतु गीत बोल एक,
1: किंतु गीत बोल एक,
0: हम अनेक किंतु एक,
1: हम अनेक किंतु एक,
0: एक मातृभूमि है,
1: एक मातृभूमि है,
0: एक पितृभूमि है,
1: एक पितृभूमि है,
0: एक भारतीय हम,
1: एक भारतीय हम,
0: चल रहे मिला कदम,
1: चल रहे मिला कदम,
0: लक्ष्य के समक्ष एक,
1: लक्ष्य के समक्ष एक,
0: हम अनेक किंतु एक,
1: हम अनेक किंतु एक।
0: तो बच्चों कैसी लगी कविता?
1: मुझे बहुत अच्छी लगी।
0: अच्छी तो लगी। तो अब बताइए, अभी हमने सुना हैं कई प्रदेश के किंतु एक देश के, क्या सुना हमने?
1: हैं कई प्रदेश के किंतु एक देश के।
0: तो अब ये बताइए कि हम किस देश में रहते हैं?
1: भारत।
0: हाँ बच्चों, हमारे देश का नाम है भारत। तो ये तो देश हुआ, लेकिन प्रदेश क्या है?
2: हमारे देश में बहुत से प्रदेश हैं।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो किसी प्रदेश का नाम बताइए।
3: उत्तर प्रदेश में मेरी नानी रहती है।
4: असम में मेरे दादा रहते हैं।
2: और एक और मैं बताऊँ, पंजाब।
0: आपको तो भाई बहुत कुछ पता है। बच्चों, हमारे देश में कुल 28 प्रदेश या राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। तो अब जरा बताइए, क्या इसी कविता को गीत में सुनना चाहते हैं?
5: बहुत मजा आएगा।
6: हाँ, बहुत मजा आएगा।
0: तो चलिए सुनते हैं ये गीत, हम अनेक किंतु एक। क्या?
1: हम अनेक किंतु

श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम हम अनेक किंतु एक। हमें आशा है ये कार्यक्रम आपको जरूर जरूर बहुत पसंद आया होगा, तो आप अपनी प्रतिक्रिया हमें भेज सकते हैं। इस सुंदर गीत के बाद आइए अब अंत में सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है राइफलमैन संजय कुमार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में भारत पाक युद्ध के दौरान असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने वाले भारतीय सेना के बहादुर और पराक्रमी सैनिक संजय कुमार के शौर्य का वर्णन किया गया है। उन्हें भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: बेटा संजय अब सो जाओ, बहुत रात बीत चुकी है।
1: लेकिन चाचा जी आपकी वो वाली कहानी तो अभी पूरी भी नहीं हुई है।
0: वो वाली कहानी? कौन सी कहानी बेटा?
1: वही जो कल आप सुना रहे थे चाचा जी।
0: अच्छा अच्छा, वो सेना वाली कहानी?
1: जी चाचा जी, वही सेना वाली कहानी जिसमें आपने बताया था कि जब दुश्मन टैंक लेकर आ रहा था तो आप लोगों ने कैसे उस टैंक को तोप से उड़ा दिया था।
0: अच्छा, तो मेरे संजय बेटे को सब याद है।
1: हाँ चाचा जी, मुझे सब याद है, लेकिन आपने नहीं बताया था कि बाद में क्या हुआ।
0: क्यों भाई, क्यों नहीं बताया था? जरा ये तो हमें बताओ।
1: क्योंकि आपको नींद आ गई थी ना। तो अब आगे बताओ ना चाचा जी, क्या हुआ?
0: हाँ तो संजय बेटा, उन दिनों मैं सेना में नया नया भर्ती हुआ था।
1: अच्छा।
0: अचानक पाकिस्तान ने हमारे देश पर हमला कर दिया।
1: हमारे देश पर हमला कर दिया?
0: हाँ बेटा, लेकिन दुश्मन को क्या पता था कि हम किस मिट्टी के बने हैं। हमने उनके छक्के छुड़ा दिए, छक्के।
2: साथियों, ये वार्तालाप था बालक संजय और उसके चाचा के बीच। किसे पता था उन दिनों कि यही बालक अपने युवा होने पर अपने अप्रतिम शौर्य और असाधारण वीरता से इतिहास रच देगा और भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा जाएगा। कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई देने लगते हैं। भारत के रमणीक और सुरम्य पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एक छोटा सा गांव है, कलोल बकैण। कलकल करती नदियां, ऊंचे पर्वत और यहां की प्राकृतिक छटा सबका मन मोह लेती है।
3: इसी गांव में 3 मार्च 1976 को संजय का जन्म हुआ था। 3 बहनों और 2 भाइयों वाले इस परिवार में वो सबसे छोटे थे। उन्होंने 10वीं की परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलोल से ही पास की। उनका सपना बचपन से ही सेना में जाने का था।
2: मन में सेना में शामिल होने की इच्छा लिए वो दिल्ली आ गए और अपने व्यावसायिक करियर की शुरुआत एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में की। उनके सेना में भर्ती होने के 2 प्रयास विफल रहे, लेकिन तीसरी बार 1996 में उन्हें सफलता हाथ लगी। उन्हें जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन में प्रतिनियुक्ति मिली।

0: ये बात कारगिल युद्ध से पहले की है। उनके दस्ते को कश्मीर के सोपोर क्षेत्र में तैनात किया गया था। यह इलाका कश्मीरी उग्रवादियों की गतिविधियों का केंद्र बन गया था। संजय कुमार के दस्ते को आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने का काम सौंपा गया था। आतंकवाद निवारण अभियान में राइफलमैन संजय कुमार की भूमिका बहुत सराहनीय रही और अपनी यूनिट में वह एक समर्पित और जांबाज सैनिक के रूप में पहचाने जाने लगे।
1: फिर आया 1999 का साल, जिसमें जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों की घुसपैठ का पता चला। पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर सियाचिन, कारगिल, बटालिक, मुश्को, द्रास और काक्सर जैसे सामरिक महत्व के क्षेत्रों में घुसपैठ

0: करके वहां अपनी चौकियां बना ली थी।
1: ये भारत की संप्रभुता पर सीधा हस्तक्षेप था। इस विकट स्थिति का एक ही समाधान था और वो था सैन्य अभियान यानी युद्ध। उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थी जबकि भारतीय सेना ढलानों पर रहने के कारण असुरक्षित थी।
0: 4 जुलाई 1999 को राइफलमैन संजय कुमार को उनकी टुकड़ी के अन्य सदस्यों के साथ मुश्कोह घाटी के पॉइंट 4875 के एरिया फ्लैट टॉप पर कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।
1: संजय ने समझ लिया था कि ये युद्ध आसान नहीं था। पाकिस्तानी सेना की उस इलाके में मजबूत पकड़ होने की वजह से ये एक गंभीर हमला साबित होने वाला था।
0: संजय की टुकड़ी ने रात को आक्रमण करने की योजना बनाई। एक प्रकार से ये एक आत्मघाती कदम था, लेकिन वो ये भी जानते थे कि यही समय है भारत की माटी का ऋण चुकाने का, देश की बलिवेदी पर प्राणों के गरिमामय उत्सर्ग का। फिर क्या था, संजय कुमार ने अपनी टुकड़ी का नेतृत्व संभाल लिया।
2: कैसे हो वो लोग ऊंचाई पर?
3: साथियों,
2: बिल्कुल ठीक है।
3: आप सबको भली भांति पता है कि ये मिशन आसान नहीं होने वाला है। हमें इतना भी नहीं पता है कि हम कल का सूरज देख भी पाएंगे या नहीं।
2: आपने ठीक कहा संजय भाई, दुश्मनों की स्थिति बेहद मजबूत है। वो ऊंचाइयों पर जमे हुए हैं और बड़ी आसानी से हम पर हमला कर सकते हैं।
3: तुमने ठीक कहा रामलाल, इसलिए हम रात में आक्रमण करेंगे ताकि दुश्मन को हमारे आने का पता ना चले। हम रात के अंधेरे का फायदा उठाएंगे, बहुत धीरे धीरे छुपते छुपाते रेंगते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक हमला करें।
2: बिल्कुल ठीक, ये ठीक रहेगा संजय भाई, यही ठीक रहेगा संजय भाई।
3: तो ठीक है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, तब तक आराम कर लो।

0: तो शुरू करें?
1: हाँ भाई, लेकिन पहले गले तो मिल लें। पता नहीं फिर जिंदगी हो या ना हो, आगे मुलाकात हो या ना हो।
0: आजा मुकेश, आजा।
2: तो साथियों, 11 सदस्यीय रणबांकुरों की टोली सर पर कफन बांधे अपने सैन्य अभियान में निकल पड़ी। बला की ठंड, साए साए करती ठंडी हवा, निरंतर गिरता तापमान और विरल होती प्राणवायु,
3: सब कुछ विपरीत था। लेकिन बस एक ही बात थी जो विपरीत नहीं थी, और वो था इन महावीरों का अटूट मनोबल। लक्ष्य पर पहुंचे ही थे कि अचानक दुश्मन की ओर से भयंकर फायरिंग होने लगी।
2: शत्रु ऑटोमेटिक मशीन गन से गोलियों की बौछार कर रहा था। संजय कुमार की टीम के दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए। और 8 लोग घायल हो गए। फिर भी घायल सैनिकों ने युद्ध करना जारी रखा।
4: फायर कर,

0: राइफलमैन संजय कुमार को ये भान हो गया था कि अब उन्हें देश को अपना सर्वोत्तम देना है।
1: या तो हम मरेंगे या मारेंगे।
2: बिल्कुल ठीक।
1: आंख में आंख डाल के फायर करो, फायर।
3: शत्रु लगातार मशीन गन से गोलियां बरसा रहा था। वो भी डटकर दुश्मन का मुकाबला करने लगे और अपनी राइफल से दुश्मन के कई सैनिकों को मार गिराया। इसी बीच उनकी राइफल की गोलियां भी समाप्त हो गई।
1: कार्बाइन खाली हो गई है।
4: अब क्या होगा? इसे ठहरो ठहरो।
1: राइफल का बट ही काफी है इनके लिए। अटैक करेंगे।
3: वो तनिक भी नहीं घबराए और शेर की भांति निहत्थे शत्रु के बंकर में घुस गए और उन पर टूट पड़े।
0: आमने सामने की लड़ाई में उन्होंने राइफल की संगीन और बट से तीन शत्रु सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह एक बंकर का सफाया हो गया। उन्होंने दुश्मन के बंकर से ही एक भरी हुई मशीन गन उठा ली। इसी बीच उनके पैर में तीन गोलियां लगी, जिसके कारण उनका चलना फिरना कठिन हो गया। लेकिन उन पर मानो जुनून सवार था। वो चोट की चिंता ना करते हुए उसी जोश से फायरिंग करते हुए दूसरे बंकर की ओर बढ़े।
1: दुर्गा माता
0: और वहां भी दुश्मनों का सफाया कर दिया।
3: उनके रौद्र रूप और जुनून को देखकर दुश्मन के सैनिक भी बौखला गए और भागने लगे।
1: भाग रहे हैं जायर। और कहां भागते हो? और रुको, ठहरो, हिम्मत है तो सामने आओ। हमने साथियों, तुम्हें से कोई बचकर नहीं भागेगा। मारो।
0: राइफलमैन संजय कुमार के इस अपूर्व शौर्य को देखकर उनके साथी भी चौगुने उत्साह से भर गए और उन्होंने बचे खुचे पाकिस्तानी सैनिकों का भी सफाया कर दिया। संजय कुमार अभी भी मशीन गन लेकर मोर्चा संभाले हुए थे। दुश्मन या तो मारे गए थे या भाग चुके थे।
5: भाई जी, आप बहुत घायल हो गए। आपको तुरंत उपचार की जरूरत है। वो सामने वाला बंकर बिल्कुल
6: आपको वहाँ ले चलते हैं।
5: वहाँ चलते हैं।
6: गर्म पट्टी करवा लीजिए। कम से कम खून का बहना रुक जाएगा।
5: आओ भाई जी,
2: नहीं मानसिंह,
5: आओ तो सही।
2: चिंता मत करो, मैं यहीं ठीक हूँ। मैं तब तक ये जगह नहीं छोड़ूंगा जब तक पॉइंट फ्लैट टॉप पर हमारा पूरा पूरा कब्जा नहीं हो जाता।
6: लेकिन
5: मैं मशीन गन साधे यहीं डटा हुआ।
6: अरे
5: आप तुम साथियों के साथ एक एक बंकर को चेक करो।
6: आप सुनो,
5: छुपा हुआ ना
6: आप
5: कोई बचने ना पाए। जाओ चेक करो।
6: लेकिन कर
5: रहा हूँ मैं, खड़ा हूँ यहाँ पे। कुछ नहीं होगा मुझे।
0: ऐसा था असाधारण शौर्य राइफलमैन संजय कुमार का। वो तब तक युद्ध के मैदान में अडिग रहे जब तक मुश्कोह घाटी के पॉइंट फ्लैट टॉप पर भारतीय सेना का कब्जा नहीं हो गया। इसके बाद भारतीय सेना की चिकित्सा प्लाटून वहां पहुंची और घायल संजय कुमार को सैनिक अस्पताल ले जाया गया।
1: संजय भाई,

0: 이따라 오자. 야, 저 카드
1: 진짜 우리도 몰리네.
2: दुश्मन के आगे अपनी दृढ़ता और निर्भीक प्रयासों के लिए राइफलमैन संजय कुमार को युद्धोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर
3: श्रोताओ अभी आपने सुना कार्यक्रम राइफलमैन संजय कुमार और अब इसी कार्यक्रम के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु कुसुमलता चेतना अर्शद प्रसून और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सुमन संजय कुमार जी के साथ आज्ञा दीजिए नमस्कार
4: उमंग उमंग उमंग उमंग
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं रात्रि के 8 बजे हैं आइए अब सुनते हैं सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले हमें मैसेज मिला है मेहर अरोड़ा ममता अरोड़ा कीर्ति अरोड़ा भूमिकर अरोड़ा का आपने हमें मैसेज किया है पदमपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से आप सुनना चाहते हैं फिल्म कालिया का ये प्यारा सा नगमा तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत

प्रोग्राम दिल से के अंतर्गत अगली पसंद है पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से, और मैसेज किया है शिवा प्रेम कपिल शिवांश संगीता लिपि और दीपाली गोप ने। आप सुनना चाहते हैं फिल्म सड़क का ये गीत।

आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम दिल से, जिसमें अगली पसंद हमें प्राप्त हुई है शिवाजी चौक कटनी से अनिल, अमर, दिलीप, राजू, रज्जन, विपिन गुप्ता और इनके साथियों के नाम हैं और आप ताम्रकार परिवार हैं सारे। और आप सुनना चाहते हैं फिल्म चेतना का ये सुंदर सा नगमा।

और अब अगला जो मैसेज हमें मिला है वो आया है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला से। आप इसके लिए पसंद भेजी है रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरु शब्द सिंह, राहुल ने। आप सुनना चाहते हैं फिल्म अवतार का ये सुंदर सा नगमा, लीजिए सुनिए।

दिल से कार्यक्रम के अंतर्गत अगली पसंद है पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश के सुदर्शन पल्लवी प्रखर कुशल नीति सुरभि अश्विन मंगला बेन और राजेंद्र जी शाह की। आप सुनना चाहते हैं फिल्म मधुमती का ये सुंदर सा नगमा।

0: इस गीत के साथ हमारा सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम दिल से यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा। इसमें हम आपको आज सुनवा रहे हैं झलकी, हमने टीवी खरीदा।
1: अंदर है क्या?
2: कौन है भाई?
1: बड़ी मैं हूँ मलकानी गुप्ता जी। मैं
2: आइए आइए मलकानी साहब, कहिए सवेरे सवेरे कैसे तकलीफ की?
1: अरे बड़ी भाई साहब, आज संडे है नी, तो मिसेज ने कहा गुप्ता जी से पहले जाकर इनविटेशन मांग लो।
2: इनविटेशन? कैसा इनविटेशन?
1: बड़ी आपने टीवी खरीदा है नी, और आज संडे है, और पूरी पिक्चर चलेगी नी तो हम लोग आ जाए नी? तो बड़ी आप हमको इनवाइट करो नी
2: क्यों नहीं, मोस्ट वेलकम, आप जरूर तशरीफ लाए और भाभी जी को भी लेकर आए
1: शुक्रिया भाई साहब। तो मैं चलूं नी, शाम को आऊंगा।
2: जी हाँ जरूर।
3: ए जी, कौन आया था सुबह सुबह?
2: अरे वो मेरे साथ मलकानी काम करता है ना, वही आया था, कह रहा था वाह भाई साहब, आपने बहुत ही नेक काम किया जो टीवी खरीद लिया, आज सारे मोहल्ले में आपकी बड़ी तारीफ हो रही है। कह रहा था हम शाम को टीवी देखने आएंगे।
3: हाँ हाँ क्यों नहीं, वो तो आएगा ही, साथ में सारे मोहल्ले वालों को भी दावतनामा भेज दो। टीवी क्या खरीद लिया, सर दर्द मोल ले लिया।
2: अरे ये क्या कह रही हो, सिर दर्द तो बेचारे पड़ोसियों का है जो रात के 11 बजे तक छत पर खड़े खड़े टीवी देखने को चक्कर लगाते रहते हैं, और हम यहाँ ठाट से सोफे पर बैठकर टीवी देखते हैं। आहा, भला हो टीवी बनाने वालों का, क्या लाजवाब चीज बनाई है, घर बैठे दुनिया की सैर कर लो।
3: हाँ, और घर का पूरा सत्यानाश, ना कोई पढ़ता है ना लिखता है, किचन में सारा सामान बिखरा पड़ा है, घर की कोई सफाई ही नहीं होती, और उस पर आने जाने वालों के लिए चाय बनाओ नाश्ता बनाओ, घर एक अखाड़ा बन गया है, कोई चीज ठिकाने पर नहीं मिलती। बच्चों की तो खैर बात ही छोड़ो, तुम जैसे निठल्ले बड़े बूढ़े भी शाम 6 बजे जो अंदर जाते हो तो रात के 11 बजे तक बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेते हो।
2: देखो देखो भाई, अब जो हमें निठल्ला बूढ़ा कहा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तुम ही सोचो, टीवी हमने खरीदा है, हम ही इसे नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा, माल हमारा और गुलछर्रे उड़ाए पड़ोसी, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता।
3: लेकिन जब बच्चों का प्रोग्राम आता है तब तो बाहर आ जाया करो।
2: भाई वो क्या है कि अंग्रेजी के कुछ शब्द बच्चे समझ नहीं पाते तो उनको समझाने के लिए बैठना पड़ता है।
3: और वो जो महिलाओं का कार्यक्रम चलता है तब क्यों बैठा करते हैं?
2: वो क्या है कि हाँ भाई, ये देखते हैं कि आज की महिला ने कहां तक तरक्की कर ली है। अरे आज महिला एवरेस्ट चोटी तक जा पहुंची है, और सुना है अंतरिक्ष में भी तुम्हारा राज होने वाला है।
3: बातें बनाना तो तुमको खूब आता है। अच्छा ये बताओ, परसों शर्मा जी से क्या कह रहे थे?
2: शर्मा जी से क्या कह रहा था
3: बताऊं? तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था यार शर्मा जी, ये जो कार्यक्रम पढ़कर सुनाती है वो बड़ी खूबसूरत है।
2: वो क्या है कि वो तो मैंने यूं ही कह दिया था, इस पर तुम इतना नाराज क्यों होती हो?
3: मैं खूब समझती हूँ, टीवी वाली खूबसूरत लगती है और मैं बदसूरत लगती हूँ। ठीक है, मेरा फैसला भी सुन लो, मैं आज ही मायके चली जाऊंगी।
2: अरे सुनो तो सही, चली गई, भला हो इन औरतों की अक्ल का, टीवी पर कोई सुंदर चेहरा दिखाई पड़े तो उसकी तारीफ से भी इन्हें जलन होती है, वहम की दवा तो हकीम के पास भी नहीं। उस दिन फिल्म स्टार की खूबसूरती की तारीफ क्या कर दी, घर भर में तूफान खड़ा कर दिया। सारी रात घरवाली के पांव दबाता रहा पर वह नहीं मानी, सो नहीं ही मानी। भगवान खैर करे, ये टीवी कोई नया लंका कांड ना करा दे,

0: पापा पापा, आज मेरे सभी दोस्त टीवी देखने आएंगे।
1: क्यों, क्या इस शहर में सिर्फ हमने ही टीवी खरीदा है?
0: नहीं पापा, ये बात नहीं है, वो तो एक तरह का रिकॉर्ड होता है। पापा, हम कोई नई चीज खरीदते हैं तो लोग देखकर तारीफ भी तो करते हैं।
1: अच्छा अच्छा ठीक है, आने दो आने दो।
0: और पापा, रानी की भी सभी फ्रेंड्स आ रही है।
1: अच्छा, वे भी आ रही हैं? बहुत अच्छे। अब तुम्हारी मम्मी से भी पूछ लो, उनके मायके से भी कोई आ रहा है या नहीं।
2: कोई क्या, सभी लोग आ रहे हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, पप्पू पापा से पैसे लेकर बाजार चले जाओ।
1: क्यों, बाजार क्यों?
2: मेरे मायके वाले पहली बार मेरे घर आ रहे हैं, कोई बिना खाए पिए थोड़े ही जाएंगे।
1: लेकिन तुम्हारे मायके वाले क्या तुम्हारे घर का यानी कि बेटी के घर का खा लेंगे क्या?
2: क्यों नहीं खाएंगे जनाब, ये 20वीं सदी है, पुरानी परंपराओं को अब कोई नहीं मानता। ज्यादा से ज्यादा खाने के बदले 10-5 रुपये पकड़ा देंगे, और क्या।
3: अच्छे मायके वाले हैं तुम्हारे।
2: देखो जी, मेरे मायके वालों को कोसने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें 7 बार गर्ज हो तो बुलवाना, कौन निकम्मे बैठे हैं जो आएंगे। वो तो मेरी वजह से आ रहे हैं।
1: तुम्हारी वजह से नहीं, टीवी की वजह से आ रहे हैं।
3: तुम्हें देखते देखते तो मुझे टीबी हो गई है।
2: क्या,
1: वो क्या है, मेरा मतलब है, ठीक है, आने दो आने दो।
4: पापा पापा, अभी मुझे रास्ते में मुकुट अंकल मिले थे, कह रहे थे पापा से कहना कि आज हम सभी यार दोस्त टीवी देखने आ रहे हैं, घर पर ही रहना, कहीं बाहर ना जाना।
1: अच्छा, मुकुट मिला था, मेरे सभी यार दोस्त आ रहे हैं। भाई वाह, मजा आ गया, कई बरस हो गए उनसे मिले, चलो इसी बहाने मुलाकात हो जाएगी। भाई, इस टीवी ने आज स्नेह मिलन का आयोजन करवा दिया।
2: हाँ, और यह स्नेह मिलन आज ही होगा, लेकिन इसके लिए मुद्रा मिलन का भी तो आयोजन करो। इतने सारे लोगों के खाने पीने की व्यवस्था में घर के बजट का तो सत्यानाश ही हो जाएगा। पप्पू, हिसाब जोड़कर बताओ कुल कितना खर्चा हो जाएगा, और कुल मिलाकर कितने लोग हो जाएंगे।
1: अरे भाई, 150 खर्च भी हो गए तो क्या, आखिर मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है कि नहीं।
2: आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा श्रीमान जी।
1: अरे भाई, सभी लोगों को खाना थोड़ा खिलाना है, ऐसा करना चाय और नमकीन से सबको निपटा देना।
2: आहा, चाय और नमकीन से निपटा देना, मेरे मायके वालों को भूखा थोड़े ही जाने दूंगी। भैया और भाभी तो नॉनवेज खाएंगे, बाकी लोग हलवा पूरी।
3: क्या, हलवा पूरी?
0: और पापा, मैं तो मेरे दोस्तों को डिनर पर इनवाइट कर आया हूँ।
1: क्या,
4: फिर पापा मेरी सहेलियाँ कोई भूखे थोड़ी ना जाएगी।
3: अरे बाप रे,
2: और आप अपने दोस्तों को भूखा ही भेज देंगे, शर्म नहीं आएगी, दोस्तों में नाक नहीं कटेगी।
1: ओहो, नाक नहीं कटेगी, बनिए का हिसाब करते वक्त कौन सी बच जाएगी, वो लाला पैसों के लिए भरे बाजार में मेरी पगड़ी नहीं उछाल देगा।
0: पापा मम्मी सुन लो, सभी कुल मिलाकर 140 आदमियों का खाना बनेगा, इस पर 1000 रुपए का खर्च होगा।
3: मर गए, अरे ये टीवी देखने का प्रोग्राम बना रहे हो कि मेरी लुटिया डुबोने का।
2: लुटिया काहे डूबेगी, सभी लोग घर के ही तो हैं, बाहर का कौन है। फिर जब टीवी खरीदा है तो लोग देखने आएंगे ही।
3: देखो, तुम मेरा मुंडन संस्कार मत करो, इतने खर्चे में तो मैंने शादी की थी।
2: तो ये क्या हो रहा है, ये आपकी दूसरी शादी पर ही तो खर्च हो रहा है।
3: दूसरी शादी क्यों, बच्चों के सामने मेरा मजाक बना रही हो।
2: मजाक नहीं बना रही, सच्ची में ये आपकी दूसरी शादी नहीं तो क्या है, टीवी नहीं खरीदी, सौत ले आए हैं मेरी।
3: सौत?
2: और नहीं तो क्या, 6-6 घंटे जिसके साथ बैठे रहते हो वो मेरी सौत नहीं तो और क्या है। इतना वक्त आपने मेरे साथ कभी बिताया था, है याद तुम्हें?
1: टीवी को अपनी सौतन बतला रही हो, भाई वाह, महामाया तुम्हारा भी जवाब नहीं। पप्पू, बाहर बोर्ड लगा दो, हमने टीवी नहीं खरीदी है। और

0: अभी आप सुन रहे थे झलकी, हमने टीवी खरीदा। आइए अब सुनते हैं ये गजल।
1: हमारे पास मालो मताए दुनिया में से तो कोई चीज नहीं है जो आइंदा तुम्हारे काम आए, लेकिन हमारा सरमाया नाज कानून जबान है जिस पर हमारी जिंदगी और इज्जत का दारो मदार रहा है, जिसने हमें खाके मजिल्लत से आसमाने शोहरत पर पहुंचा दिया। उस दौलत के आगे हम सल्तनत आलम को हैच समझते रहे। तुमको भी अपने तरके में यही दौलत देते हैं। नाम है खस्ता हो आवारा हो बदनाम मेरे, एक आलम ने गरज मुझको कहा क्या क्या कुछ। एक महरूम चले मीर हमी आलम से, वरना आलम को जमाने ने दिया क्या क्या।

रूप कुमार राठौड़ की आवाज़ में आपने इस गज़ल को सुना। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 हो रहे हैं।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने ब्रिटेन के साथ आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करने का आग्रह किया। केंद्र सरकार महाराष्ट्र और कर्नाटक के गन्ना किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी। नई दिल्ली का जंतर मंतर अब विरोध प्रदर्शन का स्थल नहीं रहा। दिल्ली पुलिस ने 3 नए स्थल निर्धारित किए। वर्ष 2026 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमरीका के अर्थशास्त्री रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को, और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक तेज हवाओं के साथ तूफान का अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापारिक समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। यह अधिकांश भारतीय निर्यातों के लिए ब्रिटेन के बाजार में बिना शुल्क के पहुंच प्रदान करता है, साथ ही ब्रिटेन के निर्यातकों के लिए सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर खोलता है। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली संवाद 2026 में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का भी उल्लेख किया। श्री गोयल ने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत में युवाओं की संख्या अधिक है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे अंतर्राष्ट्रीय को सोच समझ कर निर्णय लेने में मदद मिलेगी, कीमतों और बिलिंग संबंधी शिकायतों को कम करने में सहायता मिलेगी और चिकित्सा एवं आयुष देखभाल के लिए एक विश्वसनीय गंतव्य के रूप में भारत की स्थिति और मजबूत होगी। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने कैंसर रोधी दवाओं पर लाभ को अधिकतम खुदरा मूल्य के 30% तक सीमित करने का निर्णय लिया है। केंद्र ने आज सर्वोच्च न्यायालय को इसकी जानकारी दी। न्यायालय ने दवा क्षेत्र में दवाओं की कीमतों की व्यापक समीक्षा करने का निर्देश दिया था। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायाधीश विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ को बताया कि सरकार उन कैंसर दवाओं की सूची को अधिसूचित करेगी जिन पर लाभ की सीमा लागू होगी। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। सरकार ने महाराष्ट्र

0: कर्नाटक के गन्ना किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए एक सप्ताह के भीतर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। आज नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया। समिति गन्ने की कटाई के समय वैज्ञानिक रिकवरी मापदंडों, आधुनिक प्रयोगशाला परीक्षण प्रणालियों और वजन की सटीकता से संबंधित हर तकनीकी पहलू की बारीकी से जांच करेगी। समिति निर्धारित समय सीमा के भीतर सरकार को अपनी सिफारिशें देगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन के लिए 3 नए स्थान निर्धारित किए हैं। इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का सीबीडी मैदान शामिल हैं। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से अब हटा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने नागरिकों के विरोध प्रदर्शन और धरना आयोजित करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त वैकल्पिक स्थानों की पहचान के लिए एक समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का फैसला लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि तीनों नए निर्धारित स्थलों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की जाएंगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। इंडिया ब्लॉक की मीटिंग की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी। उन्होंने कहा कि कल रात ही इसका जवाब दे दिया गया था और उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी।
2: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पिटीशन, किसी भी, कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और देश की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ आरोप लगाने के बजाय उनके समर्थन में सबूत पेश करने चाहिए।
3: 99 चुनाव हारने तक राहुल गांधी जी हर सीजन में ये देखते हैं कि किसके ऊपर आरोप लगाना है, कभी इलेक्शन कमीशन, कभी ईवीएम, कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो कभी कुछ और। और अब तो हालत ये हो गई है कि सड़क छाप भाषा का प्रयोग और निराधार आरोप लगाने का काम श्रीमान राहुल गांधी जी कर रहे हैं। राहुल जी, देश को शोर नहीं सच चाहिए, आरोप नहीं प्रमाण चाहिए। आप महामहिम राष्ट्रपति जी के पास गए, वहां पर भी आपको कहा गया कि शिकायत के साथ सबूत दीजिए, तो चुप्पी साध ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि एफडीआई नीति के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया गया है।
4: भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में पिछले एक दशक के दौरान कई बड़े बदलाव किए गए हैं। केंद्र सरकार ने देश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई प्रमुख क्षेत्रों में निवेश के नियमों को आसान बनाया है। इनमें रक्षा, दूरसंचार, बीमा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्र शामिल हैं। रक्षा क्षेत्र में 74%, जबकि दूरसंचार, बीमा और अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% तक विदेशी निवेश की अनुमति है। वर्ष 2014 से 2025 के बीच भारत में 748 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। इसके साथ ही भारत में निवेश करने वाले देशों की संख्या भी 89 से बढ़कर 112 हो गई है। नई दिल्ली में इस साल रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज दुनिया के 100 से अधिक देश भारत में निवेश कर रहे हैं।
5: वर्ष 2014 से पहले के 10 वर्षों की तुलना में भारत में 2.5 गुना से अधिक एफडीआई आया है और ज्यादा विदेशी निवेश का अर्थ है भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अनगिनत अवसर।
4: केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि भारत ने अंतरिक्ष, ड्रोन, रक्षा और बीमा सहित कई क्षेत्रों को विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए खोल दिया है।
6: वी आर नाउ ट्राइंग टू फोकस ऑन ग्लोबल वैल्यू चेन।
7: सबसे पहले हम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, हमने विदेशी निवेश के लिए अंतरिक्ष, अंतरिक्ष, ड्रोन, रक्षा और बीमा जैसे क्षेत्रों को खोला है। और प्रधानमंत्री ने परमाणु ऊर्जा उत्पादन को भी निजी क्षेत्र और विदेशी कंपनियों के लिए खोलने की बात कही है। और तीसरी बात, हम डीरेगुलेशन यानी नियमों में ढील की दिशा में काम कर रहे हैं, जिससे निवेश आसान हो जाएगा, चाहे वो घरेलू हो या फिर विदेशी।
4: केंद्र सरकार ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नियमों को आसान बनाया है। इनका मकसद भारत को निवेश का एक प्रमुख वैश्विक केंद्र बनाना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद आज अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। इनमें 506 ट्रांसजेंडर मतदाता भी शामिल हैं। अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या में 3.64% की वृद्धि हुई है। ये मतदाता आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली NCR में पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रतिबंध लगाने के बजाय जन जागरूकता और स्वैच्छिक भागीदारी का असर अधिक होगा। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि प्रतिबंधात्मक आदेशों को लागू करना जमीनी स्तर पर मुश्किल हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि न्यायालय धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC द्वारा आयोजित 11वीं, 12वीं और 13वीं सिविल सेवा परीक्षा, बाल विकास परियोजना अधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्तियां रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हो गई है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप News on AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस साल अमरीका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने कहा है कि उनके काम ने राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के सैद्धांतिक आधार को मजबूत किया। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिनों में तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल, आंध्र प्रदेश, केरल और माहे में भी ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद है। मराठी की वरिष्ठ अभिनेत्री और लावणी कलाकार मधु कांबीकर का आज पुणे में 72 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार पुणे में किया गया। लक्षद्वीप को पूर्ण साक्षरता प्राप्त केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने इसकी घोषणा की। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ब्रिटेन के साथ आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करने का आग्रह किया। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अब नहीं होंगे विरोध प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस ने 3 नए स्थल निर्धारित किए। वर्ष 2026 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमरीका के अर्थशास्त्री

0: रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को, और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक तेज हवाओं के साथ तूफान का अनुमान। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 103.7 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल को। रात्रि के 9 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं दर्द भरे गीत। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म आखिर क्यों से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और अमित कुमार की।

दर्द भरे गीत कार्यक्रम में अगला गीत आपके लिए फिल्म वो कौन थी सी, आवाज़ लता मंगेशकर की।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। आप सुन रहे हैं दर्द भरे गीत। अगला गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म जंगली से।

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 26वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, गुजरात से विश्व मंच तक 25 वर्ष की यात्रा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और रणनीतिक विश्लेषक अतुल अनिजा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2001 में गुजरात की कमान संभाली, तब लक्ष्य यही था कि गुजरात की अर्थव्यवस्था बेहतर हो, गुजरात का नाम भारत के साथ साथ विदेशों में भी पहुंचाया जाए। गुजरात से लेके विश्व मंच तक का सफर, उभरता भारत, विश्व मंच पे डटा भारत, आज इसी विषय पे चर्चा करने के लिए हम जुड़ रहे हैं दो बहुत ही खास विशेषज्ञों के साथ। मैं स्वागत करना चाहूंगी आकाशवाणी समाचार में अम्बेसडर अशोक सज्जनहार का और श्री अतुल अनिजा का। दोनों ही हमारे पैनलिस्ट स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पे अपनी बात बहुत ही बखूबी से रखते हैं। आप दोनों विशेषज्ञों का स्वागत है आकाशवाणी में। अम्बेसडर सज्जनहार, सबसे पहले मैं आपसे ही बात करना चाहूंगी। वाइब्रेंट गुजरात समिट की अगर हम बात करें तो साल 2003 में शुरू हुआ ये समिट, एक इन्वेस्टर समिट के रूप में शुरू किया गया था। बीते सालों में वाइब्रेंट गुजरात समिट ग्लोबली एक्लेम्ड प्लेटफॉर्म बन गया है जो सरकारों को, बिजनेसेस को, इनोवेटर्स, इन्वेस्टर्स और थॉट लीडर्स को एक प्लेटफॉर्म, एक मंच देता है, वहां पे सबको साथ लेकर आता है। अब इतने साल बीत गए और वाइब्रेंट गुजरात समिट सेमीकंडक्टर्स, एआई, एरोस्पेस जैसी नई तकनीकों पर भी बात करता है। अगले साल होने वाले वाइब्रेंट गुजरात समिट को जो उसका फोकस एरिया है वो डिसेंट्रलाइज्ड रीजनल ग्रोथ, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे बड़े बड़े विषयों पे चर्चा करेगा। और ब्रॉडर रूप से देखा जाए तो वो जो भारत का फोकस है विकसित भारत की ओर, उसकी तरफ भी चर्चा करेगा। मैं आपसे समझना चाहूंगी एम्बेसडर सज्जनहार कि आपको लगता है कि वाइब्रेंट गुजरात समिट ने देश को एक दिशा दिखाई कि भारत के ग्लोबल स्टेज पे राइज का एक ये शुरुआती तार जोड़ा है? आप वाइब्रेंट गुजरात समिट को वैसे देखते हैं?
2: जी, बहुत धन्यवाद दीक्षा मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, वाइब्रेंट गुजरात समिट का जैसे आपने अभी जिक्र किया, 2003 में इसकी शुरुआत हुई और हमें देखना होगा जो इसकी शुरुआत उस समय क्यों हुई, क्योंकि उससे पहले हमने देखा है जो 2002 में कम्युनल राइट्स हुए थे वहां पर गुजरात में हालात इतने अच्छे नहीं थे। उसके पहले हमने देखा है 2001 में भुज में बहुत ही भयानक वहां पर भूकंप आया था, उससे बहुत ही तहस नहस वहां पर हो गया था। गुजरात को एक नया प्रोफाइल देने के लिए नए इन्वेस्टमेंट्स लेकर आएंगे, उसकी शुरुआत की गई 2003 में और तब से नए नए जो कार्यक्रम थे, नए नए जो आइडियाज थे, चाहे वो पेट्रोकेमिकल्स हो या फिर वो ऑटोमोबाइल्स हो या फिर उस प्रकार के जो फॉरवर्ड लुकिंग तरीके बनाए गए हो, वो प्रधानमंत्री मोदी ने उस समय शुरुआत की। तो 2003 में इसकी शुरुआत हुई और फिर हर दो साल बाद उसको वहां पर आयोजित किया गया। तो अलग अलग तरीके से वहां पर एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी कुछ लेकर आए गए। 2003 के बाद 2005 को फिर से शुरुआत की गई। 2005 से 2007 में हर दो साल बाद इसका हुआ और अब अगर देखा जाए तो 2013 तक प्रधानमंत्री मोदी थे वहां पर, मुख्यमंत्री थे। तो उसके बाद हम देख रहे हैं जो केवल गुजरात में नहीं, अब हम देख रहे हैं जो और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं, उन्होंने भी ये सब नए नए वाइब्रेंट अपने यहाँ पर अपने स्टेट्स के लिए इसको आगे बढ़ावा देने का उन्होंने काम किया है। तो इसीलिए, और आपने जैसे अभी कहा जो आगे ले जाते हुए दो साल के बाद फिर से ये वाइब्रेंट गुजरात होगा, तो उसमें ये बिल्कुल तार है विकसित भारत 2047 में आगे चलने का। और इसमें जो नए नए तरीके आए हैं, क्योंकि शुरुआत तो पहले की गई थी इन सभी क्षेत्रों से, जैसे मैंने कहा ऑटोमोबाइल्स, पेट्रोकेमिकल्स वगैरह वगैरह, फिर धुलेरा का स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, दहेज का, वो वाले सब वहां पर किए गए, परंतु अब इसको और बहुत ही विस्तार किया जा रहा है, विस्तृत तरीके से किया जा रहा है। और इसमें हम देख रहे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या नए तकनीक जो हैं उनको भी साथ में लाया जा रहा है, क्वांटम कंप्यूटिंग को लाया जा रहा है साथ में, जिससे कि आगे चलते हुए जैसे अभी प्रधानमंत्री ने आह्वान दिया है जो हम 2047 तक अपना लक्ष्य पूरा करके रहेंगे विकसित भारत।

0: को हम अचीव करके रहेंगे, वही हमारा लक्ष्य है। मैं समझता हूँ जो वाइब्रेंट गुजरात की जो कड़ी शुरू हुई थी 2003 में, वो अभी तक चलती आ रही है और इसको बिल्कुल आगे ले जाते हुए न केवल गुजरात में परंतु पूरे देश में इसको हम आगे लेकर जा रहे हैं और पूरे देश को विकसित भारत की ओर अग्रसर करने में इसका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है।
1: अम्बेसडर सज्जनार, आपने काफी विस्तृत रूप से हमें समझाया। अब मैं आगे बढ़ते हुए मिस्टर अनेजा, मैं आपसे बात करना चाहूंगी। अगर हम G20 समिट की बात करें या G20 प्रेसिडेंसी की बात करें, तो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत ने G20 की प्रेसिडेंसी संभाली और 200 से ज्यादा मीटिंग्स भारत के 60 से ज्यादा शहरों में होस्ट की गई। G20 की अगर हम थीम की बात करें, तो G20 की थीम भी भारत की प्रेसिडेंसी में थी, वसुधैव कुटुंबकम। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, उससे पहले कि हम इसमें चर्चा करें, हम सबसे पहले आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 लीडर समिट को होस्ट करते हुए क्या कहा।
2: एक G20 रोड मैप बनाना चाहिए। फ्रेंड्स, रेजिलियंस कैन नॉट बिल्ड इन साइलोस। G20 को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी को बढ़ावा देना चाहिए, जो न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को जोड़कर एक मजबूत वैश्विक सुरक्षा बनाए।
1: मिस्टर अनेजा, G20 समिट ने भारत की डिसाइसिवनेस को एक गति दी है और ये भी दर्शाया कि हम इंक्लूसिव भी हैं और ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में भी हमें दिखाया गया है। तो इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं?
3: देखिए, G20 की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि भारत अपने आप को एक ब्रिज की तरह अपने आप को प्रोजेक्ट कर सका, जिसमें ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ को जोड़ना था। और ग्लोबल साउथ को जोड़ने की अगर बात करें, तो फिर जो है 56 देश जो अफ्रीकन यूनियन के हैं, वो सदस्य बने G20 के। तो एक तरह से प्रोग्रेसिव इंक्लूसिव फील या एक इमेजिनेशन प्रदान की गई G20 को। साथ में बात हुई है वसुधैव कुटुंबकम की, जो इसकी मेन थीम थी कि आप अगर जोड़ना चाहते हैं देशों को या लोगों को, डाइवर्स लोगों को, तो उसकी एक बुनियाद सोच है जो है कि एक दुनिया, एक विश्व, एक परिवार है। अगर परिवार है तो आपका उसमें दायित्व बनता है कि परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनको आगे लेके चले। तो एक तरह से एक आइडियोलॉजिकल ब्रेक थ्रू था ये G20 में जो दर्शाया गया, जिससे आप एक वसुधैव कुटुंबकम की बुनियाद पे आप ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ को आप जोड़ सकते थे। अगर हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए, उसके पीछे भी वसुधैव कुटुंबकम की जो G20 की थीम थी, वो भी अभी आएगी, चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो यूक्रेन या रशिया के बीच में हो, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हो। तो वे कॉमन थीम जो थी, जो शुरू होती है वाइब्रेंट गुजरात से और एक तरह से कल्मिनेशन पॉइंट या एक तरह से मेच्योर लेवल पे आती है G20 के अंदर।
1: अम्बेसडर सज्जना, G20 समिट में हमने देखा कि अफ्रीकन यूनियन को भी मेंबर बनाया गया और साथ ही साथ, जो मैंने पहले भी कहा, कि G20 को भारत ने दर्शाया कि हम ग्लोबल साउथ की आवाज को आगे लेकर जा रहे हैं। तो अम्बेसडर सज्जना, आपसे मैं यहाँ ये समझना चाहूंगी कि अफ्रीकन यूनियन को इस फोल्ड में लाने के पीछे प्रधानमंत्री की कौन सी दूरदर्शी सोच रही होगी।
0: देखिए, जब से ये G20 की शुरुआत हुई थी 2009 में, 2010 में, जबकि एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, तो तब से ये था जो अफ्रीका के जो देश हैं उनकी कोई भी वहां पर रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। केवल साउथ अफ्रीका एक देश था जो कि G20 का एक सदस्य था, परंतु तब से बहुत सालों से, हमेशा से अफ्रीकन यूनियन ये हमेशा कहता रहा जो उसको इसका सदस्य बनना चाहिए। हम जानते हैं जो यूरोपियन यूनियन सदस्य है, यूरोपियन यूनियन 27 देश हैं उसमें, परंतु अफ्रीका के जो हैं वो 54 देश हैं, परंतु उनकी कोई वहां पर रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। और प्रधानमंत्री मोदी ने, मुझे याद है, तब जब बाली का समिट हो रहा था, तो तब उन्होंने कहा था, हम गारंटी देते हैं जो हमारे जब अध्यक्षता होगी तो हम जरूर अफ्रीकन यूनियन को इसमें सदस्यता दिलाएंगे। और आपको याद होगा जो 9 सितंबर 2023 को, जब पहले दिन ही ये शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो उस समय पहले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी ने ये ऐलान किया, जो ये पूरी तरीके से सभी देशों को मान्य है, जो अफ्रीकन यूनियन को भी एक इसका सदस्य बनाया जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जिसे कहा जाए ग्लोबल साउथ, जो भी हैं विकासशील देश हैं, उनके जो भी क्षेत्र हैं, उनको सामने लाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए आपको याद होगा जो जब भारत ने इसकी अपनी अध्यक्षता संभाली थी 1 दिसंबर 2022 को, और उसके एक महीने के अंदर ही हमने जिसे कहा जाए तो एक वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट का ऑर्गेनाइज किया था प्रधानमंत्री मोदी ने 11-12 जनवरी को, जो 125 देशों ने, डेवलपिंग कंट्रीज थे, विकासशील देश थे, उन सब ने इसमें भाग लिया, इसमें शिरकत ली, और उसमें हर लेवल पर, चाहे वो राष्ट्रपति के स्तर पर हो, अलग अलग देशों ने उसमें सम्मिलित हुए, या फिर प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति या विदेश मंत्री या अन्य मंत्रियों के लेवल पर उन्होंने इसमें शिरकत की, और फिर जो भी उनसे पूछा गया जो उनकी क्या मंशाएं हैं इसमें, तो सभी के, चाहे वो डेट हो, चाहे उनका फूड सिक्योरिटी हो, चाहे एनर्जी सिक्योरिटी हो, ये सब चीजें जो हैं, चाहे वो विमेन लेड डेवलपमेंट हो, विमेन लेड ग्रोथ हो, ये सभी चीजें इसमें जो G20 की बातचीत हुई, जैसे आपने बिल्कुल ठीक बताया, जैसे अतुल जी ने भी बिल्कुल ठीक बताया, जो करीब 200 मीटिंग की गए, 60 शहरों में ये मीटिंग की गए, और ये जो सभी थे डेवलपिंग कंट्रीज के, विकासशील देशों के, इनकी जो प्रॉब्लम्स थी इनको सबको लेकर आया गया। तो मैं समझता हूँ जो भारत ने ये बताया है, जो विकासशील देशों की आवाज बनकर भारत उभरा है, हमारा जो इसमें थीम भी था वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वो था वसुधैव कुटुंबकम था, परंतु उसको और एक्सपैंड कर दिया गया, और इस हिसाब से हमने इसको आगे लेकर जाएगा।
1: मिस्टर अनेजा, G20 समिट को लेके एक मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अगर इस पूरे समिट के अचीवमेंट्स की बात करें तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को भी G20 के साइडलाइंस पे लॉन्च किया गया, और GBA यानी कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को काफी इंटरनेशनली पसंद किया गया, सपोर्ट मिला, और अब इसके 24 मेंबर्स हो गए हैं। तो मिस्टर अनेजा, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आखिरकार ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को लॉन्च करने के पीछे की सोच क्या थी?
3: दीक्षा, फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी पे, और कम से कम जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उसके ऊपर डिपेंडेंस कम से कम हो, ये एक ग्लोबल एक तरह से मिशन है भारत की, खास करके जो देश जिनके पास कच्चा तेल नहीं है, क्रूड ऑयल नहीं है, उनके लिए बहुत जरूरी है कि रिन्यूएबल एनर्जी और बायोफ्यूल्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए, और खास करके हम देख रहे हैं जो ईरान में युद्ध हो रहा है कि ये एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर और ज्यादा फोकस है। तो एनर्जी के ऊपर, बिना ऊर्जा के, बिना क्लाइमेट चेंज को रोकते हुए, रिन्यूएबल्स के बिना हमारी आगे एनर्जी सिक्योरिटी नहीं बनेगी, ये हमारी एक बुनियादी सोच है। G20 में जो वसुधैव कुटुंबकम या जो दो स्लोगन्स उसके आए हैं, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर या वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, अब अगर आप इनको देखेंगे तो इसके पीछे एक बड़ी आइडियोलॉजिकल सोच ये है कि भारत आइडियोलॉजी की बात करता है, अपनी विरासत की बात करता है, अपनी सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ जो है वो सामने आती है। तो मुझे लगता है कि ये जितनी भी एंगेजमेंट रही है G20 के अंदर, उसमें ये एक बड़ी खास बात थी कि भारत एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, और जब मल्टीपोलर वर्ल्ड में आप एक सिविलाइजेशनल स्टेट हो तो आपका एक खास दर्जा रहता है, और बाकी देशों को, खास करके ग्लोबल साउथ को जोड़ने में उसमें तो आसानी रहती है। तो मुझे लगता है कि कल्चरल एलिमेंट भी इसके अंदर गया था ये G20 के अंदर। साथ में मैं एक और जोड़ना चाहूंगा बात, अगर हम सिविलाइजेशनल स्टेट की बात करें तो भारत, आपको याद होगा इन्हीं दिनों में ये वर्ल्ड डेमोक्रेसी समिट होती थी, तो प्रधानमंत्री ने ये भी कहा उन समिट्स में एक से ज्यादा कि इंडिया इज अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी, वो भी हमारी जो डेमोक्रेसी है ये हमारा एक तरह से सिविलाइजेशनल हेरिटेज है, एक विरासत है हमारी। तो वो आप वेस्टर्न सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी से अलग होके आप डीपर जा रहे हैं, और आपकी अपनी सोच एक तरह से एक सिविलाइजेशन सोच और बढ़ रही है। और ये जो हमारी एंगेजमेंट्स, एक्सटर्नल एंगेजमेंट, G20 हो या जनरली फॉरेन पॉलिसी हो, ये एक नई चीजें जो है थे, शुरू हम फिर करते हैं वाइब्रेंट गुजरात से, और ये इवॉल्व होके अब एक क्लियर कट एक मॉडल बना है जो हमारा एक इंडिजिनस मॉडल है, जो आज की दुनिया के लिए बहुत जरूरी है, खास करके जो केओस हो रहा है दुनिया के अंदर, जिस तरह से डिवाइसिवनेस आ रही है, उसको जोड़ने के लिए बहुत मदद करेगा।
1: मिस्टर अनेजा, आपने काफी अच्छे से हमें समझाया पूरी जो इसके पीछे की सोच थी उसको। आगे बढ़ते हुए अब मैं आप दोनों ही विशेषज्ञों से बात करना चाहूंगी ब्रिक्स समिट के बारे में, और अम्बेसडर सज्जनार, सबसे पहले मैं आप ही की राय जानना चाहूंगी। ब्रिक्स इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, डेवलपमेंट, फाइनेंसिंग और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में अपनी रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने का एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म बन गया है और हमने देखा है कि भारत हर प्लेटफॉर्म पे अपनी आवाज को बुलंदी से रखता है और ब्रिक्स की अध्यक्षता करते हुए अभी दिल्ली में ही पिछले महीने 12 और 13 सितंबर को लीडर्स समिट दिल्ली में ब्रिक्स का होस्ट किया गया। तो आगे बढ़ने से पहले आइए सुन लेते हैं प्रधानमंत्री के कुछ इम्पोर्टेंट अंश जो उन्होंने

0: ब्रिक्स समिट में लीडर समिट को एड्रेस करते हुए बोला,
1: भारत में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता पीपल सेंट्रिक और ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच पर आधारित है। रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी हमारी प्राथमिकताएं रही हैं। इन प्राथमिकताओं के साथ हमने ब्रिक्स सहयोग को सामान्य जन से जोड़ने का विशेष बल दिया है। इसी सोच के साथ 350 से अधिक बैठकों का आयोजन किया गया। लगभग 30 शहरों में आपकी टीम्स का स्वागत करने का हमें अवसर मिला। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता को सफल बनाने में सक्रिय योगदान और समर्थन के लिए मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।
0: अम्बेसडर सज्जनार, ब्रिक्स की एक्सपैंडिंग मेंबरशिप और बदलते ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस के बीच भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करते हुए इस ग्रुपिंग को एक इफेक्टिव प्लेटफॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, और जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स जैसे लोकल करेंसी में ट्रेड और ग्लोबल साउथ के डेवलपमेंट जो हमने जिसकी बात भी करी कि प्रायोरिटीज को आगे बढ़ाएं, और इस प्रोसेस में भारत को किन कम्पीटिंग नेशनल इंटरेस्ट के बीच बैलेंस बनाना पड़ रहा है?
2: जी देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि मैं इसको ब्रिक्स समिट जो हुआ है 12 और 13 तारीख को सितंबर को, और जो इससे पहले G20 हुआ 2023 में, मैं समझता हूँ जो चुनौतियाँ भारत के लिए दोनों समय बहुत ही ज्यादा थी, बहुत ही अधिक थी, क्योंकि उस समय भी एक ऐसी ही चुनौती थी जब एक युद्ध हुआ था और उस युद्ध में बिल्कुल ही पूरा जो विश्व था वो अलग थलग दो धड़ों में डिवाइड हो गया था, क्योंकि एक तरफ उस समय रूस और चीन एक तरफ खड़े थे और दूसरी तरफ जो पश्चिमी देश हैं वो सब खड़े थे, और ये भारत के ऊपर सब कुछ मयसर हुआ जो हम दोनों को साथ में लेकर आए और एक प्रकार का जो यूनानिमिटी अग्रीमेंट वहां पर लेकर आ पाए। ऐसा ही यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इसमें जो एक्सपेंशन हुआ ब्रिक्स का, आपको मालूम है जो शुरुआत हुई थी 2001 में, पहली मुलाकात हुई 2006 में जब विदेश मंत्री मिले यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के साइडलाइंस पर, 2009 में सबसे पहली बार रूस के यहाँ पर शिखर सम्मेलन हुआ, परंतु अब पिछले कुछ सालों में क्योंकि हालात पूरे विश्व में इतने ज्यादा उथल पुथल हो गए हैं, जो बहुत देश चाहते हैं जो वो ब्रिक्स के सदस्य बने, और हमने देखा है जो 2023 में जोहानसबर्ग के समिट में, ब्रिक्स के समिट में यहाँ पर पहले 5 सदस्य थे, अब उससे 11 सदस्य हो गए हैं, और इसमें ये जो ब्रिक्स के देश हैं इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि अब और भी बहुत देश हैं वो अपना हेजिंग चाहते हैं, जितना ज्यादा सभी मिलकर ये देश मिलकर साथ में काम कर सके वैसा ही वो होना चाहिए। तो भारत ने ये ब्रिक्स का जो समिट है इसको बिल्कुल वैसे ही तरीके से जैसे कि G20 में हमने किया था, वैसा ही हमने अग्रीमेंट यहाँ पर लेकर आए हैं, और मैं समझता हूँ जो आगे चलते हुए ये भारत ब्रिक्स को भी आगे लेकर जाएगा और सभी देशों को साथ में मिलाकर इनको आगे ले जाने में सफल हुआ है और आगे ये सफल होगा। एक चीज मैं इसमें ये और कहना चाहूंगा, जो जब G20 की हम बात करते हैं, थोड़ा सा अगर मैं पीछे ले जाऊं तो वहां पर एक ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के अलावा हमने एक इंटरनेशनल मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी उस समय ये शुरुआत की, और मैं समझता हूँ जो कनेक्टिविटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक मुद्दा है जो कि सभी देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये वाले जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और सभी देशों को साथ में लाने में बहुत ही इनका अच्छा योगदान रहेगा।
0: अम्बेसडर सज्जनहार की बात को आगे बढ़ाते हुए मिस्टर अनीजा, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, जैसे कि अभी अम्बेसडर सज्जनहार ने जिक्र किया कि हम कनेक्टिविटी पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, और अगर कनेक्टिविटी और बाकी इसके अलावा अल्टरनेट रूट की भी तैयारी की जा रही है, और इस बात का मैं जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपने वेस्ट एशिया में काफी समय तक अपना करियर बनाया है, वहां पे आप रहे हैं, आपने रिपोर्टिंग करी है, तो अगर अभी जो हम हालात देख रहे हैं वेस्ट एशिया के, उसमें हम ये देख पा रहे हैं कि वहां से क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जब बंद हुआ तो काफी देशों को दिक्कतें आई, ना कि सिर्फ भारत को, तो अगर इस पूरे प्रकरण में भारत एक अल्टरनेट रूट और एक स्टेबल

0: सूट बना के दुनिया के सामने रख पाता है तो उससे भारत की जो इमेज है वो वर्ल्ड लेवल पे किस तरीके से ग्रो करेगी? और दूसरा प्रश्न आपसे अम्बेसडर सज्जनहार और मिस्टर अनेजा दोनों से आपसे मैं ये करना चाहूंगी बहुत ही संक्षेप में कि जो प्रधानमंत्री मोदी की अपनी पर्सनल केमिस्ट्री है वर्ल्ड लीडर्स के साथ वो कैसे ट्रांसलेट करती है जब हम किसी भी मल्टीलैटरल फोरम में देखें तो वहां पे निर्णय निकल के आते हैं या फिर किसी बायलैटरल मीटिंग में भी देखें तो काफी मुसीबतों का भी हल निकल कर आता है। इन दोनों ही प्रश्नों पे सबसे पहले मिस्टर अनेजा आपका जवाब चाहूंगे और फिर अम्बेसडर सज्जनहार का।
1: दीक्षा आपका सवाल बहुत ही दिलचस्प है। आप देखेंगे कि अभी इस वक्त जो है हम दो मेन मैरिटाइम चैनल्स हैं, एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और दूसरा बाबल मंदाब जो रेड सी और इंडियन ओशन को जोड़ता है। दोनों में ही एक तरह से जो ट्रेड होती है या वहां से जो शिप्स निकलते हैं सीवियर बाधा पड़ी हुई है इस वक्त। तो मुझे लगता है कि ये रूट्स का जो मैरिटाइम रूट्स के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो हमें देखना है कि ऑल्टरनेट लैंड रूट्स कौन से आ सकते हैं, यानी कि कॉन्टिनेंटल रूट्स की ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया क्योंकि आज हॉर्मुज है, बाबर मंदाब है और कल अगर स्ट्रेट ऑफ मलाका भी कुछ हो जाता है चीन और यूएस के बीच में ताइवान के ऊपर जिस तरह से टकरार है तो फिर हम कहां जाएंगे। तो इसलिए भारत की अल्टरनेटिव रूट्स जैसे अम्बेसडर सज्जनहार ने कहा कि एक तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर वो बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरा हमें देखना है कि INSTC का फाइनली अगर हम देखें उसका रूट ईस्ट वर्ड्स जाता है रशियन फार ईस्ट की तरफ व्लादिवोस्टोक की तरफ, वहां से नॉर्थ आर्कटिक रूट निकल रहा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहां से चैनल्स निकल रहे हैं। हमें वो ज्योग्राफी भी देखने की जरूरत है क्योंकि वो फिर ना मलाका को क्रॉस करते हैं ना ये हॉर्मुज या बाबल मंदाब वाली आपकी प्रॉब्लम आती है, और तीसरा जो है व्लादिवोस्टोक में चेन्नई। तो मुझे लगता है कि ये लैंड रूट्स और ये जो ओशनिक बॉडीज हैं जहां पर विवाद कम है वहां पर हमें ज्यादा जरूरत है इस वक्त, क्योंकि जो दुनिया के हालात है ये इन ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम जल्द से जल्द इनको एक्टिवेट करें। ये आप इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जब मैं दिल्ली में था ये बात होगी शायद 2000 या 2001 की, तब से बात चल रही है लेकिन अब एक अर्जेंसी आ गई है कि इन रूट्स को जो है पूरी तरह से कायम किया जाए, खास करके अभी जो रिसेंट हमारी प्रॉब्लम्स आ रही है हॉर्मुज को लेकर और बाबर मंदाब को लेकर, मुझे लगता है कि अभी ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ। दूसरी बात आपकी दीक्षा जो थी वो है पर्सनल केमिस्ट्री की प्रधानमंत्री की। ये एक बड़ा ही यूनिक एलिमेंट आया है कि पर्सनल केमिस्ट्री प्रधानमंत्री की जो कनेक्ट है चाहे वो लोगों के साथ हो चाहे बाकी वर्ल्ड लीडर्स के साथ, बहुत ही स्पॉन्टेनियस एक तरह से आता है और उसकी वजह से मुझे लगता है कि स्पेशली क्योंकि दुनिया में कई लीडर ड्रिवन डिसीजन होते हैं तो उसमें बहुत एक तरह से भारत के लिए बहुत फायदा है क्योंकि आपके जो टॉप लीडर्स के साथ जो है सिर्फ आपकी इंटरेस्ट से नहीं बट पर्सनल इक्वेशंस जो है वो बहुत अच्छी हैं, उसका मुझे लगता है कि हमें बहुत ही ज्यादा लाभ मिल रहा है। हम देख रहे थे इंडोनेशिया में भी विजिट हुआ, जिस तरह से वहां के राष्ट्रपति प्रभवो प्रधानमंत्री के साथ पूरे विजिट में साथ थे, रिसीव करने के साथ साथ जो भी पूरा विजिट था, जैसे हमने देखा कि इंडोनेशिया के अंदर जिस तरह से प्रधानमंत्री की गर्मजोशी से वेलकम किया गया प्रेसिडेंट प्रबोवो ने, तो मुझे लगता है कि वो पर्सनल एलिमेंट एक बीच में आके एक स्पेशल रिलेशनशिप बनाता है तो उसकी एक बहुत बड़ी एक भूमिका रहती है। और हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कि ये एक एलिमेंट जो है वो हमारी डिप्लोमेसी का एक अहम हिस्सा बन चुका है।
0: अम्बेसडर सज्जनहार, जैसे कि मिस्टर अनेजा ने कहा, मैं आपसे भी चाहूंगी कि आप अपने विचार इस चीज पे हमारे साथ साझा करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पर्सनल केमिस्ट्री है वो वर्ल्ड लीडर्स के साथ किस तरीके से ट्रांसलेट होती है और उसका कितना फायदा मिलता है भारत को डिप्लोमेटिकली।
2: जी देखिए, ये बहुत ही मेरे विचार से महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि लोग ये कहते हैं जो बेसिकली दो देशों के बीच में अगर जो रिश्ते होते हैं संबंध होते हैं तो वो उनके इंटरेस्ट पर होते हैं, वो उनके हितों पर होते हैं, वो उनके पर्सनल रेपो पर्सनल रिलेशन पर नहीं होते हैं। परंतु मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ क्योंकि हमने देखा है जो प्रधानमंत्री मोदी का इतना सहज तरीके से सभी जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनसे मिलना होता है और चाहे जो पूरे विश्व के जो नेता हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं दोनों देशों के बीच में अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो उसको अपने पर्सनल रेपो से पर्सनल रिलेशन से एकदम वो ठीक कर देते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ जो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है प्रधानमंत्री मोदी का जो वो सभी विश्व नेताओं के साथ अपने संबंधों को बनाकर रखते हैं। एक जो दूसरा आपने प्रश्न किया था, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं बताऊं जो कनेक्टिविटी के बारे में हम जो बात कर रहे थे। देखिए, हॉर्मुज में करीब पूरे विश्व का 20% जो तेल है वो वहां से जाता है और जब से ये युद्ध शुरू हुआ है 28 फरवरी को तब से हम देख रहे हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल निकलना बिल्कुल ही बंद हो गया है, और ये इसकी सबसे ज्यादा मुश्किल जो है उसका जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वो एक तो डेवलपिंग कंट्रीज को, जो विकासशील देश है उनको, और उनमें भी भारत जैसे देश को सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि भारत करीब अपना 85% जो तेल है वो बाहर से आयात करता है, और उसके अलावा अगर हम देखें जो गैस है, LPG है, LNG है, करीब जो भी हम जितना भी आयात करते हैं उसमें करीब 90% हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। तो इसीलिए यहाँ का जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए बन गया है, और इसको इधर से तेल का आना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, और इसीलिए भारत हमेशा यही कहता है जो बातचीत से इस मसले को हल करना चाहिए। यही बात बाबेल मंडेप की है, यहाँ पर से अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 20% तेल जाता है तो बाबेल मंडेप का करीब 12-15% तेल जाता है। तो इसीलिए ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण चोक पॉइंट्स हो गए हैं, और इसीलिए जो कनेक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, अब INSTC की बात हुई, IMEC की बात हुई, और फिर अब ये पोलर रूट की बात है, क्योंकि जो रूस के उत्तर से जो पोलर रूट जाता है, और इसीलिए इसका बहुत ही ज्यादा इसमें योगदान रहेगा, जो हमको और भी जो हर प्रकार के जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि मुझे याद है ये जो INSTC 1997 में जब मैं मॉस्को में हुआ करता था तब की हमने शुरुआत की, परंतु ये इसको आगे हम नहीं ले जा पाए क्योंकि हमेशा ईरान के ऊपर हमेशा सैंक्शंस बने रहे, परंतु अब हमको ये जरूर प्रयास करना है जो उसमें हो चाबहार को भी हमें डेवलप करना है, और जल्दी से इस क्षेत्र को बिल्कुल सभी मिलकर इसमें शांति लानी चाहिए, जिससे कि हम इसको आगे जो INSTC और चाबहार को और आगे ले जा सकें।
0: मिस्टर अनेजा, मेरे पास अभी दो और पॉइंट्स हैं जिन पे मैं दोनों ही विशेषज्ञों से आपकी राय जानना चाहूंगी। तो मिस्टर अनेजा, आपसे अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की, तो इसमें अगर देखा जाए तो इंडिया का इनिशिएटिव इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का फोकस दुनिया के 7 मेजर कैट स्पीशीज और उनके हैबिटेट्स के कंजर्वेशन के लिए है, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव से हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और ये सिर्फ डिप्लोमेसी की बात नहीं है, ये बायोडायवर्सिटी की बात है, ये वाइल्ड लाइफ की बात है। तो अगर इसके बारे में आप हमसे चर्चा करें तो इसके आउटकम्स आपके हिसाब से कितने इम्पैक्टफुल रहे हैं, और आगे आने वाले समय में इसको हम कैसे प्रोग्रेस करते हुए देखेंगे?
1: भारत की जो अप्रोच रही है पूरे विश्व के लिए वो एक होलिस्टिक अप्रोच रही है, और खास करके अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट में जो एक तरह से संतुलन की जरूरत है, जिसमें आपके जो ग्रीन कवर है, अमेज़न के फॉरेस्ट हैं जो लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, या वाइल्ड लाइफ है और जो ह्यूमन एलिमेंट है, इसके बीच में एक संतुलन लाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि तभी विश्व में बैलेंस रहेगा। और जिसका इफेक्ट अगर बैलेंस ना रहे तो फिर हम देखते हैं कि एक्सट्रीम वेदर से लेके जो है कॉन्फ्लिक्ट, एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ रहा है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ये संतुलन बनाए रखें, और यही अप्रोच भारत की रही है। जहां तक के सवाल आ रहा है बिग कैट अलायंस का, तो ये एक बहुत जरूरी उसमें एलिमेंट था। हमने देखा कि भारत के अंदर एक चीता जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुका था, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पर्सनल इनिशिएटिव था कि उसको रिहैबिलिटेट किया जाए। तो आपको याद होगा 2022 की शायद बात है कि जब हम चीता को बोट्सवाना से और साउथ अफ्रीका से लेके आए यहाँ पर भारत में, तो बिग कैट अलायंस का और उसके तरफ जो फोकस है वो उस बात से बिल्कुल दर्शाता है, मुझे लगता है। दूसरी बात ये भी है कि हम बिग कैट अलायंस हो या वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन हो, उसको टूरिज्म से भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बहुत इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट बन चुकी है सिर्फ भारत के टूरिज्म के लिए। अफ्रीका में देखा कि किन्या में जैसे और तंजानिया के बॉर्डर पे आप देखते हैं कि हजारों की तादाद पर लोग जाते हैं एनिमल माइग्रेशन को देखने के लिए।
0: मसाई
1: तो
0: मारा
1: एक तरह से मसाई मारा वही एलिमेंट है कि सिर्फ उसके कई पहलू हैं, एक तो जो बैलेंस की मैंने बात की है, और दूसरी एक जो बात है कि हम अपने एनवायरनमेंट और अपनी वाइल्ड लाइफ से ज्यादा और ज्यादा जुड़े। हम आजकल देख रहे हैं कि एलिफेंट कॉरिडोर जो है जो रोके जा रहे थे उनको भी खोला जा रहा है। तो इसलिए ये एक बड़ा मल्टी डायमेंशनल एक इनिशिएटिव है।
0: अम्बेसडर सज्जनहार, आखिर में चलते चलते मैं आपसे आपके विचार जानना चाहूंगी। हमने इतने बड़े मुद्दों पे चर्चा करी और अब मैं चर्चा को विराम देने से पहले एक बहुत ही सॉफ्ट पावर की तरफ आना चाहूंगी और वो है योगा डिप्लोमेसी। तो जैसे ही प्रधानमंत्री ने अपना कार्यभार संभाला प्रधानमंत्री के रूप में, उसी साल योगा डे यूएन ने डिक्लेयर कर दिया और

0: आज अगर हम देखें तो योगा सिर्फ एक शब्द ही नहीं है और ना ही सिर्फ एक व्यायाम का रूप है, बल्कि पूरे दुनिया में लोग योगा से प्रभावित हैं, उनके जीवन में काफी बदलाव आया है। तो योगा को एक सॉफ्ट पावर और एक सॉफ्ट डिप्लोमेटिक टूल के रूप में अगर हम देखें तो कैसे इसने पूरा एक रूप निभाया है। और योगा के साथ अगर हम कल्चरल डिप्लोमेसी को भी जोड़ दें, आप कई देशों में एम्बेसडर रह चुके हैं, तो ये सारी चीजें एक सॉफ्ट पावर के रूप में भारत के फेवर में कैसे काम करती हैं?
1: आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो जब प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला 2014 में, आपको याद होगा जो पहली बार वो सितंबर 2014 में वो गए थे वहाँ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को एड्रेस करते हुए, और तब मुझे याद है जो उन्होंने कहा था, और ये उनका ही था, आउट ऑफ द बॉक्स उनका ये थिंकिंग था, जो हमको कुछ ऐसा करना चाहिए, भारत की कोई ऐसी देन देनी चाहिए पूरे विश्व को जिससे कि वो पूरे विश्व को उसका फायदा होना चाहिए। और तब उन्होंने कहा जो हमको एक अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस हमें मनाना चाहिए। और मुझे याद है जो तब हमारे जो सभी वहां पर यूनाइटेड नेशंस में जो अपनी डेलीगेशन थी, उन्होंने कहा जो उनको बहुत ही ये ऐसा इसमें कोई इतना ज्यादा अट्रैक्टिवनेस नहीं लगा, परंतु फिर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नहीं, इसको हमको आगे लेकर जाना चाहिए। और फिर उसी साल हमने देखा है जो करीब पूरे विश्व के 193 देश हैं, परंतु उनमें से 177 देशों ने मिलकर इसको प्रमोट किया और इसको उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के जून को उन्होंने माना और पूरे विश्व ने इसको स्वीकार किया। और उसके बाद हम देख रहे हैं जो हर साल पूरे विश्व में ये मनाया जाता है और बहुत ही चाव से मनाया जाता है, बहुत ही एंथुजियाज्म से, बहुत ही एनर्जी से, इसको ऊर्जा से इसको मनाया जाता है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा जो ये सॉफ्ट पावर की हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान बनकर उभरा है और इससे पूरे विश्व में भारत का एक डंका बजता है जो केवल एक इसको एज एन एक्सरसाइज लिया जाए, परंतु ये बिल्कुल ही पूरी तरीके से एक होलिस्टिक तरीका है जो अपने को डेवलप करने का, अपने को आगे ले जाने का, और इससे पूरे विश्व में इसका भारत की जो छवि है इसको और भी और आगे लेकर जाया गया है। तो मैं समझता हूँ योगा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है पूरे विश्व में। और जो प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत की, यही मैंने पहले भी कहा था, जो प्रधानमंत्री मोदी का जो लीडरशिप है, जो विजन है, वो इन सभी चीजों में दर्शाता है जो कैसे हम जहां पर लोग नहीं सोचते जो कोई पॉसिबिलिटी है उसमें वो अपॉर्चुनिटीज निकाल लेते हैं, उसमें ही संभावनाएं निकाल लेते हैं, और उसी से पूरे विश्व में भारत का जो योगदान है उसको और आगे ले जाने में सफल रहे हैं।
0: अम्बेसडर सज्जनहा और मिस्टर अनीजा, दोनों विशेषज्ञों ने ही काफी विस्तृत रूप से सारे ही विषयों पे हमें जानकारी दी, और जो हमारा डिस्कशन रहा है आज उससे मेरे लिए तो काफी ही इनलाइटनिंग रहा है। आई एम श्योर जो भी लिसनर्स इस डिस्कशन को सुनेंगे उनको ये समझ में आएगा कि पिछले 25 वर्षों की जो प्रधानमंत्री की जर्नी रही है वो सिर्फ देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश में उन्होंने जो किया वो तो किया ही, उसके साथ साथ विश्व मंच पे कैसे भारत आगे जाए उस पे भी काफी काम किया गया है। आप दोनों ही विशेषज्ञों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी, आप दोनों ने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, उसके लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत धन्यवाद दीक्षा, बहुत धन्यवाद।
2: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 26वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, गुजरात से विश्व मंच तक 25 वर्ष की यात्रा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और रणनीतिक विश्लेषक अतुल अनेजा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लोक सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लोक सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम।